सुप्रभात। मीडियावेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 15, तदनुसार 5 मई सन 2026 आपके हमारे हम सब के लिए जीवन का एक और नया दिन, नया आज। आपका दिन मंगलमय और सफलता से परिपूर्ण हो, आप सभी को असीम शुभकामनाएं। श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 हो रहे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड का 483.1 मीटर 8621 किलोहर्ट्ज पर इस समय आइए सुनते हैं चिंतन।
1: मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है मानवता। मनुष्यता, मानवता, इंसानियत, ह्यूमिनिटी, पृथक पृथक शब्द होते हुए भी सबका अर्थ एक ही है, यानी मानव सेवा, मनुष्य की सेवा। यदि मनुष्य में ये गुण न हो तो वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। सारे धर्म मानव सेवा का यही संदेश देते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, देश में ही क्या, विश्व भर में अनेक धर्म हैं, और ऐसे ही पृथक धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कबीरपंथी इत्यादि। सभी धर्म के पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब एक ईश्वरवाद का संदेश देते हैं। सब एक ही जगह आकर मिलते हैं। रास्ते अलग अलग, किंतु ठिकाना तो एक है। सभी मानवता, सत्कर्म, सद्गुण का संदेश देते हैं। यही ईश्वर का संदेश है। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, किंतु कर्ता वही है। वही जन्मदाता, पालनकर्ता और संहार करता है। उसे हम महसूस करते हैं। हम सब में किसी न किसी रूप में वह विराजमान है। मानव सेवा से ही हम उसे पा सकते हैं। वही हमारी संतुष्टि है। यही ईश्वर का संदेश है। जन्म से ही मानवता का संदेश हम में प्रवेश करता है। जन्म से ही माँ जो हमें प्रदान करती है, वह मानव सेवा के अतिरिक्त और क्या है। वह हमें छोड़ नहीं देती, बल्कि बच्चे के लिए वह जो कर सकती है सब कुछ करती है। बच्चा वहीं से मानवता का संदेश पाता है और फिर

0: वह भी यही सीखता है कि उसे भी यही करना है। इसी तरह मानवता का संदेश तो बचपन से ही परिवार से ही शुरू होता है और आगे परिवार जैसे जैसे बढ़ता है यह संदेश जन्म और देश सेवा तक चला जाता है। इस प्रकार मानवता का यह संदेश जन्म से ही मिलने लगता है, किंतु आगे चलकर हम सब कितना इसे लागू करते हैं और सही दिशा में इसे लेकर चलते हैं यह हम पर निर्भर करता है। सभी धर्म ग्रंथ, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब आदि सभी का यही संदेश ईश्वरवाद है, यही ईश्वर की पूजा और सेवा है। ईश्वर सेवा से मतलब ईश्वर की पूजा या भगवान की पूजा का अर्थ भजन, कीर्तन या पूजा तक ही नहीं है, बल्कि हर जनमानस की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जिस किसी को जिस रूप में आवश्यकता हो उसके दुख दर्द को बांटना, उसमें सहयोग करना, पीड़ित की सेवा सब मानवता है, यही सत्कर्म और सेवा है। दुर्घटना के बाद पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाना, आवश्यकता अनुसार उसका उपचार करना या कराना, रक्त की आवश्यकता हो तो रक्तदान, आर्थिक कमी को पूरा करना आदि कई तरह से उसकी मदद की जा सकती है। किसी भूखे को अन्न दान, विद्यार्थी को विद्यालय या आर्थिक सहायता, भूकंप पीड़ितों की अनेक प्रकार से उन्हें मदद पहुंचाई जा सकती है। बाढ़ व सुखाड़ के समय लोगों को भरपूर मदद करना, इसकी कोई सीमा नहीं। भूकंप के बाद घर बार का बर्बाद हो जाना, उन्हें नए सिरे से बसाने की आवश्यकता होती है। रेल दुर्घटना आदि में सेवा करना, परिवार से बिछुड़ जाने पर उनके घर परिवार तक सूचना पहुंचाना, बिछुड़ों को मिलाना, ये सब अनेक प्रकार से मानव सेवा के उदाहरण हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है अब कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है पोषण वाटिका के लाभ।

किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से जिन सब्जियों से होती है और जहाँ पर उनको हम लगाते हैं उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियां, कुछ फल और कुछ अनाज, दूध, दही का प्रयोग करना चाहिए, तो ये साग सब्जियां जो हैं और फल जो हैं जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी होते हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार, पसंद इच्छानुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी रहती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती हैं। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें

0: जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए ताकि इसका प्रबंधन भली भांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जांच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरबी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियां लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें, गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर मिट्टी है उसमें ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें और आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। प्रत्येक क्यारियों में अलग अलग सब्जियां आप लगावें, जैसे किसी में आपने प्याज लगाया, किसी में लहसुन लगाया, किसी में मटर लगा दिया, किसी में टमाटर लगा दिया, किसी में भिंडी लौकी। तो इससे ये होगा कि आपको जो है हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ सब्जियां होती हैं जो एक साथ तैयार हो जाती हैं, जैसे कि गोभी है, तो आप एक ही दिन में पूरी क्यारी में गोभी की फसल अपनी नहीं लगावें, बल्कि 2-4 पौधे 2-3 दिनों के अंतराल पर लगावें ताकि लंबे समय तक आपको उससे गोभी की सब्जी मिलती रहे। तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके यदि आप पोषण वाटिका किचन गार्डन बनाते हैं अपने घर के अगल बगल जो खाली जमीन है उनका भी आप सदुपयोग कर पाएंगे और अपनी आमदनी में से कुछ पैसा भी बचा लेंगे। जो
1: पोषण वाटिका के लगा भी आपने ये वार्ता सुनी। इसके साथ आज का हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ। ये पटना है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और

0: डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर BJP की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है, श्रोताओं सुनिए वंदना भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। आइए करते हैं शुरुआत समेश्वर में एक देशगान के साथ।

पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं, तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। राधे कृष्ण से महसूस होता है, इसे धीरे धीरे याद करें तो राह दे कृष्ण, जिसका मतलब है हे ईश्वर मुझे वो दिशा दिखा जिससे मैं सही राह पे चल सकूं। आइए सुनते हैं एक और कृष्ण वंदना। कलाकार हैं ज्योति रघुवंशी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

पंडित राजन, क्षमा करें, पंडित राजन और साजन मिश्रा के गाए इस हनुमान आरती के साथ ही भक्ति संगीत का आज का हमारा एक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर अनुराधा पौड़वाल का है।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

0: अग्रवाल का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं डॉक्टर राकेश कुमार से ली गई भेंट वार्ता। विषय है बच्चों का आहार।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार, और हम इनसे बातें करेंगे बच्चों के आहार के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को, खासकर हमारी माताओं को, आप बताएं कि नवजात शिशु हों या बढ़ते हुए बच्चे हों, उनका आहार कैसा हो, कैसे वो समय के साथ बढ़ें भी उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो।
2: जी, एक बच्चा जो जन्म लिया है अभी तुरंत, तो एक घंटे के अंदर उसको माँ का दूध पिलाना, चाहे वो बच्चा कमज़ोर ही क्यों ना हो, और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर ही रखना चाहिए, बाहर का पानी भी नहीं देना चाहिए। जैसे हमारी WHO संस्था है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे बिहार सरकार है, इन सारे के रिकमेंडेशन यही है कि बच्चे को एक घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, उसके अलावा एक बूंद पानी भी नहीं मिलना चाहिए। उससे बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे अप्रोप्रिएट होता है और वो भविष्य के भी बहुत सारी बीमारियों से उनको बचाव हो जाता है और उनको बीमार कम पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको एज अप्रोप्रिएट आहार देना है, जिसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, जिससे उनका, अब क्या है कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो वो बैठने भी लगेगा, कुछ दिन में चलने भी लगेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उनका, और जो वजन बढ़ता है इतनी तेजी से, उनका पोषण माँ के दूध से नहीं हो पाता है। तो कोशिश ये करना है कि ऊपरी आहार देना शुरू करना है 6 से 8 महीने में, यूजुअली जैसे घर में ही बनाई हुई चीजें, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूजी, आलू, केला, मरगिल्ला, भात दाल, रोटी दाल, इनको आपको पीस कर करके उसमें थोड़ी घी डाल करके या नारियल तेल या रिफाइंड ऑयल, ये डाल करके टूथपेस्ट की तरह बना लेना है। ये स्टार्टिंग है आहार का, और इसके लिए बहुत हाई फाई चीजें नहीं चाहिए। घर में जितनी भी अवेलेबल चीजें हैं जो आप खाते हैं, उनको मुलायम कर करके और टूथपेस्ट की तरह बना करके आपको शुरुआत में 2 से 3 चम्मच, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 6 महीने से ही दांत आना शुरू हो जाता है, और बच्चे क्या होते हैं ना कि आप साथ में खा रहे हैं तो वो झपटते भी हैं, तो इसका मतलब वो बच्चा खाने के लिए तैयार है, तो आपको उस वक्त उसको खाना खिलाने की शुरुआत कर देनी है। फिर 9 महीने जब बच्चा का हो गया तो 2 से 3 चम्मच दिन भर में 3 से 4 बार हल्का मुलायम खाना, और वो अगर 3 चम्मच से ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते जब बच्चा 8 महीने का हो गया है तो लगभग आधा कटोरी, जो हमारी दाल की कटोरी हम लेते हैं, उतना हो जाना चाहिए। 9 महीने में बच्चे अपने ये थंब से और फोर फिंगर से चीज़ें पकड़ने लगते हैं, तो हाथ में पकड़ने वाली चीज़ें भी दे सकते हैं, मतलब अब बच्चा 9 महीने का हो गया है वो हाथ से पकड़ करके भी चीज़ें खा सकता है, तो घर की बनी हुई चीज़ें ही, लेकिन हाथ से पकड़ने में जैसे स्नैक्स जो होते हैं उसमें आप हल्का बटर लगा करके, और जैसे रोटी में ही आपने बटर लगा दे, वो हाथ से पकड़ करके उसको मंच करेगा और उसको खाएगा अपने टेस्ट के अनुसार, टेक्स्चर के अनुसार, या ब्रेड में ही आपने वो घी लगा दिया उसको खा लेगा, तो 3 से 4 खाना और लगभग 2 स्नैक्स अगर आप देंगे तो उसकी जरूरतें पूरी होंगे।
1: स्नैक्स को थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं।
2: जैसे स्नैक्स में क्या होता है, जैसे आपने आलू को थोड़ा हल्का बॉयल किया, हल्का बॉयल, और साथ में आपने उसको छान दिया तो वो हाथ में पकड़ने लायक हो गया, और उसको वो हाथ मुंह में ले करके थोड़ा मंच करेगा, क्योंकि बच्चे को काटने की आदत होती है तो वो कर सकते हैं, और वेज और नॉन वेज दोनों में ये चीज़ें आप लागू कर सकते हैं। ब्रेड हो गया, ब्रेड के ऊपर हल्का बटर लगा दिया तो उसकी एनर्जी वैल्यू बढ़ गई, है ना, और गेहूं का भी ब्रेड आता है, रोटी आता है, पराठे आते हैं, आप उस तरीके से बना करके हाथ में पकड़ने वाली चीज़ें आप दे सकते हैं, और बच्चे को खिलाने के तरीके में भी थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे चीज़ें थोड़ी गिराते हैं और थोड़ी खाते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान देना है कि हमने इतना अमाउंट देना था और मेरा बच्चा इतना ही खाया, तो हमको उसके लिए प्रोत्साहित करना है, और सतरंगी चीज़ें दे, आप ये नहीं सोचे कि ये बच्चे के खाने वाली चीज़ें नहीं है, ये ठंडा है, ये बच्चा कैसे खाएगा, ये गर्म है, ये बच्चा कैसे खाएगा, है ना, तो अंकुरित आप कर दिया, जैसे मान ली कि जितनी भी आपने दालें हैं वो अंकुरित कर दी, उसको पीस लिया और उसको आपने सुखा करके और फिर उसमें मिला करके खाने में, जो आपने खाना बनाया उसी में मिला दिया, तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाएगी और वो आप उन बच्चे को दे सकते हैं, और जब

0: आपका 14 महीने का हो गया, तो आपका ये ट्रेनिंग जो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपके घर में जैसे बड़े लोग खाना खा रहे हैं उस तरीके से वो सजा कर खा सके। और अगर आपने ये ट्रेनिंग खाने की नहीं दी तो बच्चे जो हैं, जब अगर मान लीजिए कि 2 साल के हो गए हैं और आपने ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी, तो बच्चे को आगे सिखाने में परेशानी आएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के आहार के बारे में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर।
2: बच्चों का आहार, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार से ली गई ये भेंट वार्ता सुनी। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब समाप्त होता है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है अब आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा सुबह 9:10। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे आप कार्यक्रम इनसे मिलिए। नारी जगत, श्रोताओं, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सीमा गुप्ता से उनकी वार्ता। विषय होगा आधुनिक जीवन शैली में योग से स्वस्थ और निरोग रहें। बुजुर्गों का कार्यक्रम अक्षय वट आप सुनेंगे दिन में 1:05 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर निहारिका से उनकी एक वार्ता। विषय होगा बुजुर्ग एवं वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 4:30 पर। मागधी, मघी भाषा का आज का हमारा एक कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे अनिल कुमार अकेला। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 और कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:00। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। कलाकार होंगे ब्रजकिशोर दुबे। रात्रि 9:30 पर समय होगा नाटक का। संगीत के कार्यक्रम में आपको बताते चलें श्रोताओं, सुबह 7:25 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पद्मा तलवरकर का शास्त्रीय गायन। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:00। लोक संगीत का ही अन्य कार्यक्रम आज हम आपको सुनवाएंगे गूंजे बिहार। प्रसारण समय होगा रात्रि 10:00। आज का हमारा एक कार्यक्रम श्रृंगार गीतों पर आधारित होगा। बजी का लोकगीत आप सुनेंगे शोभा कुमारी से। प्रसारण समय होगा सुबह 7:15। फिल्म संगीत, श्रोताओं, आप सुनेंगे हमारे केंद्र से सुबह 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में और रसमंजरी दिन में 10:00। साथ ही सुबह 11:00 और दिन में 1:30 पर रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
3: अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टी दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मित।

0: अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिमबंगालराज्ये भाजपादलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति। असमराज्ये सत्ताधारी भाजपानेतृत्वयुक्तेन एनडीएदलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि भाजपादलेन त्रिसप्ततिः आसनानि विजितानि। केरलम राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन ऊनशतम् आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन त्रिषष्टिः आसनानि विजितानि। पुदुचेरी इत्यत्र राष्ट्रिय प्रजातांत्रिक गठबंधनेन एनडीए इत्यनेन त्रिंशत् आसनेषु अष्टादश आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री टीएमसी नेत्रीम ममता बैनर्जी 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपादलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 6-200, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपादलस्य वरिष्ठनेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिमबंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलं राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपामुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतनप्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारतश्रेष्ठभारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20-अधिकेषु राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति, तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरी इत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरी इत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मल कुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीय मण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षक मण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20 प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है।

0: स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गए। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुद्दुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुद्दुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ। अली जी पेश है इस समय हाल चाल सूचना और कुछ नई एवं पुरानी जानकारी संग मनोरंजन भरे इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं

सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओ, आज हम देखेंगे ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 5 मई साल का 125वां दिन है। अभी साल में और बाकी हैं 240 दिन। दिन है आज मंगलवार।

अशो तो हर साल मई महीने में पहले मंगलवार के दिन पूरे विश्व में मनाते हैं हम लोग विश्व अस्थमा दिवस। वर्तमान समय में देखा जाए तो वायु प्रदूषण को देखते हुए अस्थमा के रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारे आसपास के प्रदूषणों को लेकर और अस्थमा बीमारी से तो छोटे बच्चों से लेकर के वयोवृद्ध तक प्रभावित हो रहे हैं होते हैं। अस्थमा विरोध की जागरूकता एवं शिक्षा हेतु इस दिन को संपूर्ण विश्व में हम लोग मनाते हैं। आज के दिन यानी मई माह में पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस। जरूरी भी है इसे याद करते हुए हमें अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा हमें अपने ही हित में ध्यान में रखते हुए पूरे जतन से करना चाहिए और औरों का भी इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। आइए सुनते हैं इस वक्त एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आज की बात करें यानी 5 मई की, तो आज के दिन सन 2003 में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू हुई थी और सन 2010 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से नई पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले साउंडिंग रैकेट की उड़ान का सफल परीक्षण किया गया था।

इसे इसरो द्वारा विकसित 3 टन भार वहन क्षमता वाला यह रॉकेट देसी रॉकेटों में सबसे भारी रॉकेट रहा। इसमें एयर ब्रीथिंग तकनीक युक्त स्कैमजेट इंजन मॉड्यूलर का इस्तेमाल किया गया था। और आज के दिन श्रोताओं, 5 मई को सन 1970 में समरेश जंग भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, उनका जन्म हुआ था। गुलशन कुमार, प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, सन 1956 में। मेजर होशियार सिंह परम वीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक, आपका जन्म भी 5 मई सन 1937 में हुआ था।

श्रोताओ, इस फिल्म गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम रसमंजरी, क्षमा करें हालचाल, अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए प्रस्तुत है अब लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ भज्जिका लोकगीत। कलाकार हैं शोभा कुमारी। पहले सुनते हैं, आइए इनकी आवाज में ये देवी गीत।

शोभा कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे पज्जी का लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पद्मा तलवारकर का शास्त्रीय गायन। प्रस्तुत है आपके गायन में राग जौनपुरी।

0: श्रोता भी सुन रहे थे पद्मा तलवरकर के शास्त्रीय गायन में राग जौनपुरी। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम

0: की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है।

0: अमेरिका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवी के की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी

0: दी है विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा, असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI, मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Keralam. Hung assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. 3 Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And now the news in detail. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, debutant Tamilaga Vetri Kadagam or TVK has emerged as the largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than 2/3 majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule. TMC trailed far behind, managing to win 80 seats in the first election after special intensive division of electoral rolls in the state. Out of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Our correspondent reports, Congress and Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPIM clinched 1 seat.
3: With a vote share of nearly 45.84%, the BJP has won 206 seats in West Bengal. Meanwhile, the Trinamool Congress's vote share dropped by almost 8 percentage points to 40.8 compared to the 2021 election when it bagged 48.5% votes. Several heavyweight leaders of the Trinamool Congress faced defeat. In this election, the BJP not only swept North Bengal but also gained a firm hold over almost all the South Bengal. Mamata Banerjee suffered a crushing defeat in her constituency, Bhavanipur. Shubhendu Adhikari defeated Banerjee by more than 15,000 votes. Adhikari also secured victory in the Nandigram seat. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
2: For the first time since 1972, West Bengal appears set to be governed by a party that is also in power at the center. In Tamil Nadu, actor turned politician Vijay's

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर क्यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाज अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरा पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआईएम एक सीट पर कामयाब हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 45.84% वोटों के साथ 206 सीटें जीती हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का वोट तकरीबन 8% कम होकर 40.8% रह गया, जबकि उसने 2021 के इंतखाबात में 48.5% वोट हासिल किए थे। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े रहनुमाओं को हार का सामना करना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने न सिर्फ शिमाली बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की, बल्कि तकरीबन पूरे जनूबी बंगाल में भी अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। ममता बनर्जी को

0: ने भवानीपुर हल्के में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अधिकारी ने नंदीग्राम सीट भी जीती है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय पिरम्बूर और तिरुची ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि टीवीके पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए वजीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असली जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने का होगा, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
1: आसाम में हुक्मरान बीजेपी के जेरे कयादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और राइजोर दल ने 2-2 सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज़े अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। इधर हुक्मरान एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। बीजेपी को इस मर्तबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हल्के से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इख्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आजाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इकतदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
3: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है।
3: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है।

0: भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: इधर बीजेपी के सदस्य नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तहत तशक्कुर का इजहार किया। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में पार्टी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। जनाब अमित शाह ने मगरबी बंगाल में पार्टी की जीत को डर, खौफ, खुशनूदी और दरअंदाजों को पनाह देने वालों के खिलाफ अवाम के जवाब से ताबीर किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार पार्टी में एतमाद का इजहार करने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया है। कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार रियासत की मईशत में नई जान डालने के लिए सनतकारी बुनियादी ढांचे के फरोग और सरमायाकारों के लिए साजगार पॉलिसियों के एक नए दौर का आगाज करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में यह इस तरह का पहला हमला है जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुकाम ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में 3 भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबूजबी में भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि वो मुतासर अफराद की खैर आफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि कल वहां आने वाले 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों का पता लगाया गया और उन्हें बीच में ही मार गिराया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: कल के हमलों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद से कायम निस्बतन पुरसकून माहौल का सिलसिला टूट गया है। 8 अप्रैल को ये जंगबंदी नाफिज हुई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुर्मुज से फंसे हुए कमर्शियल बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने यह वार्निंग दी है कि इस आबी गुजरगाह में दाखिल होने वाले गैर मुल्की फौजी फोर्सेस पर हमला किया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर ने जमैका के अपने हम मनसब कामिना जॉनसन और उनकी काबीना के दीगर वजरा के साथ एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने तालीम, सेहत, ज़राअत, डिजिटल सियाहत, खेल, तफरी, बुनियादी ढांचे, सलाहियत साजी और कसीर जहती उमूर के सिलसिले में ताल्लुकात को आगे ले जाने के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सनती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासत में पीने के पानी की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हर जिले के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी ताकि पानी की फराहमी के निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। कल सेक्रेटरिएट में एक जायजा मीटिंग के दौरान जनाब नायडू ने गाड़ियों के इंदराज के अमल को आसान बनाने के लिए इकदाम को भी मंजूरी दी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मुल्क के कई हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम के साथ साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। इधर शिमाली रियासतों के बाद हिस्सों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई भी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दिए गए 229 रन के निशाने को मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स

0: मुकाबला चेन्नई सुपर किंग से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कोनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात के नतायज से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, बंगाल में बीजेपी की तारीखी जीत, आसाम में भी वापसी। अखबार प्रताप की सुर्खी है, बंगाल, तमिलनाडु और केरला में इकतदार के किले ढह गए। अखबारात ने नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में वजीर आजम के कारकुनों से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बंगाल की जीत के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल की हुक्मरानी। अखबारात ने भारत और कनाडा के दरमियान एफटीए मुजाकरात का दूसरा दौर शुरू होने की खबर को भी अहमियत दी है। तकनीकी दौर में मुस्तकबिल के लिए तहकीक और सरप्राइज इंतहाई ज़रूरी, अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के ज़ेरे क़यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाज़ह अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमलों में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल, आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
4: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
3: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
4: नामांकन जेईई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट के आधार पर, अंतिम तिथि 5 मई 2026।
3: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी, उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहां के इंतजार में छी।
4: बीसी जानकारी खातिर विजिट करू bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रचा। असम में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की मौत। दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर आज भी आंधी और वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। इधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री करगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ डीएमके ने 59 सीटें हासिल की हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें तथा टीएमसी को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती जबकि उसकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने केरलम विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी पी के प्रवीण ने कुथु परम्बा सीट से विजय हासिल की है। पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राजद उम्मीदवार की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पार्टी की केरलम इकाई को बधाई दी है। गौरतलब है कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी श्री प्रवीण के समर्थन में कई सभाएं और रोड शो भी किए थे। इधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 18 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परिणाम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की जीत है।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
1: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम

0: गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना भी की। इस अवसर पर श्री नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह शानदार जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और समर्पण का परिणाम है।
2: जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन पांच राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम पांचों राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है।
1: विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विकास, सुशासन और जन कल्याण के कार्यों को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा की जीत पर कहा कि यह जीत जनसेवा, सुशासन और विकास के प्रति पार्टी नेतृत्व के अटूट समर्थन का परिणाम है। श्री चौधरी ने इसके लिए पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता के प्रति आभार जताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जीत का श्रेय गरीबों के मसीहा, कर्मयोगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में भगवा लहरा गया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का किला ध्वस्त हो गया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की शानदार और ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जनता ने टीएमसी के भय की जगह प्रधानमंत्री श्री मोदी पर भरोसा कर जनादेश दिया है।
3: पश्चिम बंगाल की जनता उनके 15 वर्षों के कुशासन से तंग आ चुकी थी, उनकी निर्मम सरकार से तंग आ चुकी थी, लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया और वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई।
1: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मेहनत का परिणाम है। वहीं लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। दिल्ली प्रवास के बाद कल पटना लौटे श्री चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री

0: नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार पर विमर्श किया। माना जा रहा है कि इस दौरान संभावित मंत्रियों के नामों और विभागों को लेकर भी चर्चा हुई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व के जिलों मधेपुरा, सहरसा, सारण एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर कल पटना, गया, सिवान, दरभंगा, अररिया और कटिहार समेत आसपास के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने से आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं इस बारिश से खेतों में लगी फसल के साथ आम, लीची और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले में 5, औरंगाबाद में 4 और गया जिले में विभिन्न घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन घटनाओं पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के जिला न्यायालय ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले का निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित पुरुष T20 प्रतियोगिता के तहत अलग अलग स्थानों पर खेले गए मैच में बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार की टीमों ने जीत दर्ज की है। बिहार यूथ फाउंडेशन महिला T20 क्रिकेट लीग का आयोजन करेगा। इसके लिए 10 मई को पटना के दानापुर में चयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रू स्थित एक लॉज में छापेमारी कर पुलिस ने हवाई फायरिंग के आरोपी विशाल कुमार उर्फ राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है। पिछले दिनों विशाल कुमार का पटना में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। इधर आगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदलाल छपरा मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो से अधिक गांजा के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, बंग भूमि में खिला कमल, केरल ने कांग्रेस को चुना। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर लिखा है, बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार। दैनिक भास्कर ने तमिलनाडु के चुनाव परिणाम का शीर्षक बनाया है, 2 साल पहले पार्टी बनाई और 64 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति की जड़ें हिला दी। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आज वर्षों की साधना सिद्धि में बदली, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रचा। असम में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना।

0: और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की मौत। दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर आज भी आंधी और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: किसान भाइयों एवं बहनों, अब सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना हुआ और भी आसान।
2: IVRS सुगम कॉल सेंटर के माध्यम से सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं यथा खाद्यान्न अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स सदस्यता एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।
1: कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत कॉल करें।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-3454-110 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहकारिता विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया भी 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

अभी आप सुन रहे थे अंजुमन, आज का हमारा ये उर्दू कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अब रसमंजरी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: संदेश के पहले श्रोताओं, आप सुन रहे थे उषा उत्तप को साथियों के साथ और फिल्म थी अरमान। लीजिए पेश है लता मंगेशकर का गाया गाना जिसे हमने लिया है फिल्म कारवां से।

संदेश के पहले श्रोताओं, आप सुन रहे थे उषा उत्तुप को साथियों के साथ, और फिल्म थी अरमान। लीजिए पेश है लता मंगेशकर का गाया गाना जिसे हमने लिया है फिल्म कारवां से।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म केदारनाथ के लिए अभी आपने सुना अमित त्रिवेदी को साथियों के साथ। आइए अब सुनते हैं अगला गीत है लता मंगेशकर किशोर कुमार साथियों का गाया हुआ, फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल।

0: फिल्म नटवरलाल के लिए गाए लता मंगेशकर किशोर कुमार साथियों के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का आज का हमारा एक कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेब 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पद्मश्री विमल कुमार जैन से सचिन कुमार की बातचीत। सुनते हैं छोटे से संदेश के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। श्रोताओं यह एक विशेष भेंटवार्ता कार्यक्रम है जिसके तहत हम ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा हासिल किया है और केवल अपने लिए ही नहीं समाज को देने के लिए भी उनके पास बहुमूल्य योगदान है और इस योगदान से हम सीखते हैं और पूरा समाज उससे लाभान्वित होता है। हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पद्मश्री विमल कुमार जैन जी को। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिव्यांगों के कल्याण के लिए और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रोताओं पद्मश्री विमल कुमार जैन वर्तमान में भारत विकास विकलांग न्यास के और दधीची देहदान समिति के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। महोदय कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी?
5: मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ और पिछले 50 सालों से पटना में रह रहा हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंगेर से हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून की पढ़ाई वो पटना विश्वविद्यालय से हुई।
4: जी,
5: जिस समय मैं पटना आया उस समय पटना जयप्रकाश आंदोलन एक शिखर पर चल रहा था, भ्रष्टाचार, शिक्षा में बदलाव, सामाजिक जीवन में बदलाव, आम आदमी के उत्थान के लिए प्रयास, इन सब विषयों को लेकर एक बड़ा आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा था। तो जयप्रकाश जी के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ा बदलाव करने का प्रयास पूरे देश भर में हुआ था। मैं उसी का एक सिपाही रहा और

0: चाहता था कि जिंदगी में अपने साथ साथ समाज के लिए कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ जो है हम अर्पित कर सकें। ऐसी एक भावना उस समय के आंदोलन के कारण मन में उपजी थी और उसी का प्रतिफल है कि हम कुछ कुछ करने के दिशा में लगातार चिंतित और प्रयासरत रहे हैं।
1: जी, तो हम मान सकते हैं कि जेपी आंदोलन जो 1974 में हुआ उसी से आपको प्रेरणा मिली सामाजिक कार्य के लिए।
0: जी,
1: तो दिव्यांगों के क्षेत्र में और अंगदान के क्षेत्र में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। करीबन 45,000 जी कृत्रिम हाथ पांव जो अंग होते हैं उन्हें प्रदान करवाया है आपने, उनके जीवन को बेहतर करवाया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: ऐसा है, आंदोलन के कारण मन में सत्ता नहीं समाज बदलना है, इसको लेकर एक बड़ा प्रयास जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था
1: जी।
0: तो उसमें कुछ लोग, अधिकांश लोग राजनीति में चले गए और कुछ लोग जो है समाज सेवा को अपना एक आधार बनाया कि हमारा योगदान समाज परिवर्तन के लिए होगा। उसी भावना को लेकर बिहार के अंदर संयोग की बात थी कि 1997 में पटना में एक 10 दिवसीय विकलांग कैंप लगा था। तो हमारे लिए वो कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट हो गया। पहली बार बिहार में एक कैंप में 2640 लोगों को हमने आर्टिफिशियल लिम्स दिए, कृत्रिम उपकरण दिए, और तब लगा कि बिहार में यदि गरीब है तो उसको तो जैसे कि जीने का अधिकार ही नहीं है, वो मर जाए, इतनी बुरी स्थिति उनकी रही है। एक बैसाखी की भी ज़रूरत, 300-250 रुपए में उस समय बैसाखी आती थी, यदि वो भी ज़रूरत है तो उसको दिल्ली या जो है जयपुर का मुंह देखना पड़ता था। तब लगा कि एक जो सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस क्षेत्र को चुना जा सकता है, क्योंकि जिनके पैर कटे हैं, हाथ कटे हैं, तो वो घर में अपाहिज है, अपंग है, घर के ऊपर बोझ है, घर वाले भी उसकी चिंता में परेशान परेशान हैं, गरीबी वैसे ही उनके लिए तकलीफ दी है, और जिन घरों में वैसी लड़कियां यदि हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा जीवन नर्क की तरह वो जीते होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तब हमें लगा कि जो है कुछ तो किया जा सकता है
1: जी।
0: तब 1999 में कंकड़बाग में एक छोटे से गैरेज में लिम्स बनाने का काम शुरू किया
1: जी।
0: कृत्रिम अंग उस समय जयपुर फुट के नाम से विख्यात था
1: जी, जी।
0: वो करना शुरू किया हम लोगों ने। तो एक धीरे धीरे धीरे धीरे आज 25 साल हो गए हैं, उस 25 सालों के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेवा अभी तक हम कर पाए हैं। आज 5 मंजिला अस्पताल है जहाँ से निःशुल्क ये सेवा होती है
1: जी।
0: मरीजों के आने, उनके रहने, खाने पीने की सब व्यवस्था वहाँ है। वो ठीक होकर जाए, वो अपने पैरों पर चल कर जाए, इसी का मन के अंदर संतोष होता है
1: जी।
0: सब कुछ हम नहीं कर सकते, पर तो जितना कर सकते हैं वो करने की एक मनस्थिति, मानसिकता और जो बेस्ट हो सकता है वो हम करने की स्थिति में रहते हैं। और आजकल तो पहले जयपुर फुट 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है
1: जी, जी।
0: हमने वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जर्मनी की है उसको एडॉप्ट किया आज से 6-7 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए की लागत से। और कोशिश है कि एक निर्धन व्यक्ति को भी एक संपन्न व्यक्ति की इच्छाओं के अनुरूप लिम्ब मिल सके, आर्टिफिशियल कृत्रिम पैर हाथ मिल सके, इसका प्रयास हमने किया है। और जर्मनी की टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के बाद उसी को निर्माण करके उनके नाप के मुताबिक बनाकर देते हैं। ये एक प्रयास है हमारा, और ताकि हीन भावना न हो मन के अंदर ये चलता है कि क्या निर्धन व्यक्ति को अच्छे लिम्स पाने का अधिकार नहीं है क्या। एक और जहाँ सरकार कहती है कि सबों को जीने का अधिकार है, तो एक स्वस्थ ढंग से जीने के आधार को प्रदान करने की हम कोशिश करते हैं
1: जी। बहुत ही सराहनीय कदम है, और जिस प्रकार से गरीबों के लिए और दिव्यांगों के लिए आपके मन में दया की भावना उपजी है, आपने कहा कि ये छोटी सी सेवा है लेकिन ये सेवा इतनी बड़ी नज़र आती है कि इसके सामने कई सेवाएं बौनी नज़र आती हैं। आप लगातार ये सेवा कर रहे हैं निःशुल्क, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है समाज।
0: आप कल्पना करें कि किसी का पैर यदि कटा है तो उसको जो लिम्स दिया जाता है वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का होता है।

0: जी
1: वो हम निःशुल्क देते हैं।
0: जी
1: और ये भी कि वो पूरी जिंदगी जब तक उसका जीवन है वो उसके साथ एक नाता बन जाता है, चूंकि कभी वो टूट गया और कोई उसके
0: समस्याएं आई। जी
1: घिस गया उपयोग
0: जी
1: करते करते, तो उसको फिर बदल कर हम भी हम देते हैं और निःशुल्क देते हैं।
0: जी
1: ये एक आनंद
0: बहुत ही
1: का
0: बड़ा
1: विषय है।
0: मैसेज है समाज के लिए। तो आप लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अंगदान के क्षेत्र में भी आपने एक मुहिम चलाया है जो दधीची देहदान समिति के रूप में नज़र आता है।
1: जी जी
0: तो दिव्यांगों की सेवा, उसके बाद अंगदान के तरफ आपका झुकाव, ये कैसे शुरू हुआ?
1: ये हम सब की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: हम सब लोग जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। हर सरकार की एक लिमिटेशन है, सीमा है, परंतु जो आप स्वयं कर सकते हैं वो तो करके समाज में अपना योगदान दें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें।
0: जी
1: हम हमेशा कहते हैं आपको, यदि आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब है और आपको एक यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, आप कैसे छटपटाते हैं कि मुझको अच्छा ब्लड भी मिल जाए और मेरे मरीज को चढ़ जाए। उस समय आप पैसा और बाकी चीज़ें नहीं देखते। जो 500 रुपये भी मिल सकता है, यदि 5,000 भी मांगे तो आप उस समय
0: जी
1: देते
0: सकते
1: हैं
0: नहीं
1: और
0: है।
1: अपने परिजन का जीवन बचाने का प्रयास करते हैं।
0: बिल्कुल
1: वैसे ही आपकी किडनी किडनी घर में खान पीन के कारण फेल हो जाती है, किसी कारण भी हो गई,
0: जी
1: किडनी है, लीवर है, लंग्स है,
0: जी
1: इन सब चीज़ों में, तो आप, हमने किडनी वाले मरीजों को तो देखा है, उनके परिवार के लोगों को देखा कि घर बार बेचकर भी किडनी मिल जाए,
0: इस आस में
1: इस आस में जो है पूरी जिंदगी बीत जाती है उसका, और उसके लिए अपना घर बार जमीन जायदाद सब बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपके अपने के लिए, अपनों के लिए आप सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, उसका जीवन बचाने के लिए, जो सहज रूप से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं बिना पैसे के, जिस दिन से आपकी आदत हो जाएगी मेरा जीवन दूसरों के लिए है, भगवान ने ये जीवन मुझको दिया है, कल वो किसी, मृत्यु सुनिश्चित है, दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं हुई हो, और जब मृत्यु सुनिश्चित है तो जाते जाते ये शरीर प्रभु को सौंप जाएं, ऐसा एक मानसिकता जरूर बनानी चाहिए। बिहार के अंदर आज से 8 साल 10 साल पहले तक इस बात की चर्चा भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी लोगों को। हम लोगों ने प्रयास किया कि नेत्रदान, अंगदान, देहदान, इसके माध्यम से जागरूकता जो है हम समाज के अंदर पैदा करें कि मृत्यु के बाद आप अपने शरीर का दान करें, अपने नेत्रों का दान करें, कॉर्निया का दान करें। प्रतिवर्ष सिर्फ आँखों की बीमारी यदि हम लें
0: जी
1: तो अंधेपन के शिकार बच्चे या जो भी है उसकी संख्या हर साल 1 लाख से ज़्यादा रहती है। अभी तक देश के अंदर बैकलॉग जो चल रहा है वो 12 लाख से ज़्यादा चल रहा है और हर साल उसमें एडिशन हो रहा है। 1 लाख की ज़रूरत होती है, 5,000 6,000 से ज़्यादा नहीं मिल पाता है, और उसमें भी साउथ के जो स्टेट हैं उसमें थोड़ी जागरूकता बढ़ी हुई है, ये अच्छी बात है।
0: जी
1: हम बिहार के अंदर, क्योंकि बिहारवासी जब चीज़ों को ठान लेता है तो देश की भी दिशा बदलने की ताकत रखता है,
0: बिल्कुल
1: तो सामाजिक दृष्टि भी बदले, इसका प्रयास हम सब की जिम्मेदारी है। बिहार में प्रतिवर्ष 12,000 कॉर्निया की ज़रूरत पड़ती है और अभी 250 से 300 कॉर्निया सालाना मिल पाता है। कुल मिलाकर अभी तक 1,500 कॉर्निया करीबन उपलब्ध हो सका है, जिसमें दधीची देहदान समिति का एक बड़ा रोल रहा है। हम सब लोग अलग अलग जगहों पर प्रयास करते हैं। बीच के दिनों में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं
0: जी
1: उन कॉलेजों के अंदर आई बैंक की व्यवस्था की जाए, जब किसी का देहांत होता है और नेत्र देने का क्या चाहते हैं वो, तो उसके कलेक्शन की स्थिति बने और फिर जो पीड़ित है उसके वो ट्रांसप्लांट हो सके, प्रत्यारोपण हो सके। तो 9 मेडिकल कॉलेजेस है, उन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर अब जाकर रेडी हो गया है और उसमें से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज इन कामों को करने लगे हैं। अभी तक बिहार में हम लोगों के प्रयास से ये सिलसिला धीरे धीरे

0: जोर पकड़ता जा रहा है। ये कह सकता हूँ कि कल ही पटा सिटी का एक परिवार जिससे नेत्रदान किया था, उनके यहाँ गए थे हम लोग और वहाँ के लोगों से अपील किया था। उस समय श्राद्ध कर्म के समय परिवार के समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश होती है क्या कि बाकी लोग भी संकल्प लें। मृत्यु कब होगी कहाँ होगी कोई नहीं जानता है, परंतु जब होगी तो इन चीज़ों का उपयोग हम कर सकें।
1: जी
0: और उसमें एक चीज़ और, बहुत भ्रांति रहती है लोगों को कि नेत्रदान करेंगे तो पूरे आँख का बाउल जो है वो निकाल लिया
1: निकाल लिया
0: जाएगा,
1: जाए।
0: चेहरा बदरंग
1: जी
0: हो जाएगा,
1: जी
0: तो हमारे जिनका देहांत हुआ है उसका चेहरा विभत्स हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस गलतफहमी से दूर रहें। आँखों के ऊपर की पतली सी एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हटाया जाता है और एक केमिकल में उसको रखा जाता है और वही दूसरे को लगता है। यही एक छोटा सा काम है, उसमें चेहरा जरा सा भी न बदरंग होता है न कुरूप होता है।
1: जी
0: इसलिए इस भ्रांति से मन को निकालें। और हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि आज संकल्प लें, ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो उपलब्ध है, उस पर भर कर भेजें। हम आपको एक सम्मान पत्र, एक सर्टिफिकेट भेजते हैं ताकि घर परिवार वालों को लगे कि इन्होंने ऐसा संकल्प कभी लिया था। और जाते जाते जो है, जब मृत्यु होती है तो परिवार, जिसने संकल्प लिया है उसकी मृत्यु हो गई तो परिवार वालों को इतना पता हो कि इन्होंने ऐसा कुछ अच्छा संकल्प लिया था और वो उसको कर पाए, दे पाए, तो ये शुरू हुआ है। एक और अच्छी बात, अभी बिहार के अंदर कुल मिलाकर 18 बॉडी डोनेशंस हुए हैं,
1: जी
0: पूरा शरीर दान हुआ है। हम लोग अपील करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वे विद्यार्थी इस लायक बने कि एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जब निकले तो कर सके अपनी सेवाएं। और हर विद्यार्थी को बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर चीट फाड़ कर कर उसका अध्ययन,
1: जी
0: पढ़ाई
1: जी
0: की
1: जी
0: जाती है,
1: रिसर्च में
0: रिसर्च
1: जो
0: किया
1: लग
0: जाता
1: जी
0: है, उसके लिए ये उपयोग में आता है। तो अभी कुल मिलाकर 18 देहदान हुआ और 18ों दधीचि देहदान समिति के माध्यम से हुआ है।
1: जी ये बहुत
0: ये अभी तो सिर्फ एक सिलसिला शुरू हुआ है
1: जी ये
0: बिहार।
1: आंकड़ा भले ही देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये पहल इतनी बड़ी है कि लोग अपनी भ्रांतियों से निकलकर,
0: जी
1: 18 लोग भी अगर बिहार में अपनी रूढ़िवादियों से निकलकर सामने आए हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका, आपकी संस्थान का, और उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने देहदान
0: दिया,
1: किया है।
0: सही बात है। वो चूंकि जिन लोगों ने देहदान दिया है, चूंकि घर में हर परिवार के अंदर होता है कि साहब इनको मुक्ति मिलेगी कि
1: जी
0: नहीं, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, ये जो है यदि बॉडी का दान दे दिया तो दाह संस्कार या उसके बाद की जो अनुष्ठान होते हैं
1: जी
0: वो हो पाएंगे कि नहीं, और होंगे तो वह विधि सम्मत या फिर धार्मिक सम्मत के अनुसार प्रॉपर होगा कि नहीं, इन सब
1: चूंकि
0: चीज़ों
1: शरीर
0: में
1: ही नहीं मिलेगा
0: उन्हें।
1: तो कैसे कर्म होगा, तो इन सब बातों को आप कैसे एड्रेस करते हैं उनके परिवार वालों से?
0: सीधी सी बात है, हम उन परिवारों को कहते हैं कि आपका बहुत प्रिय लड़का या बहुत अजीज माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, एक स्नेह होना स्वाभाविक है, एक प्रेम होना स्वाभाविक है, परंतु जैसे ही मृत्यु होती है आप उसी शरीर को बिछावन से उठाकर जमीन पर लिटा देते हैं। आप घर में 2 दिन भी रखने को तैयार नहीं होते हैं, तो जब आपके जितना अजीज है उसके साथ ये व्यवहार आप करते हैं, ये ठीक है कि प्राकृतिक नियम है,
1: जी
0: परंतु मोह के कारण जो है आप, मोह के वशीभूत जो है आप उनको जो है, जब तक जीवित है तब तक तो आप खूब सेवा करते हैं, परंतु उसके बाद तो कितनी जल्दी ये श्मशान चला जाए,
1: पहुंचा दें।
0: दाह
1: जी
0: संस्कार हो जाए,
1: जी
0: ये प्रयास होता है
1: जी
0: जो कहीं ना कहीं जो है कह सकता हूँ कि आपके विवस्था को दर्शाता है। इसीलिए अपने यहाँ हिंदी में शब्द प्रयोग है, निधन हो गया यानी धनहीन हो गया,
1: अच्छा, वो शरीर धनहीन हो गया,
0: शरीर, हाँ
1: उसका जो धन है वो
0: उसका वो
1: चला गया।
0: खत्म हो गया।
1: जी
0: तो ये एक शब्दों का भी बड़ा, और हमारे यहाँ पति को धनी कहा गया है,
1: जी
0: ये मेरे धनी है,
1: जी
0: ये शब्द प्रयोग होता है कि
1: जी जी
0: मेरे,
1: जी लोकल
0: हाँ,
1: भाषाओं
0: लोकल
1: में।
0: भाषा में धनी
1: जी
0: है ना, वही कि
1: जी
0: धन के माने वाले हैं, ये स्थिति रही है। ये मैं, हंसी भी आती है कि कि

0: जैसे देहांत होता है, यदि उनके गले में सोने का चेन है या और भी कोई अंग, वो फट से लोग निकाल लेते हैं।
1: जी जी जी,
0: भगवान ने जो कीमती अंग आपके शरीर में दिया है, किडनी है, लीवर है, और भी अंग हैं, वो उससे भी ज़्यादा कीमती हैं, उसको हम जला देते हैं, क्यों नहीं हम उसको भी उपयोग में दे पाए। ये एक बड़ा प्रयास हो।
1: वो अमूल्य है, उसका तो मूल्य चुकाया
0: ही नहीं
1: जा सकता।
0: एक चीज़ और है, सबों की भ्रांति दूर करें, जिनका नॉर्मल डेथ होता है, सामान्य मृत्यु होती है, वो अंगों का दान नहीं कर सकते।
1: अच्छा।
0: वो सिर्फ जो है नेत्र का, कॉर्निया का दान कर सकते हैं, या स्किन का, त्वचा का कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। परंतु जो हॉस्पिटल में कहते हैं ना कि साहब ये वेंटिलेटर पर है, तो वेंटिलेटर पर है तो उसका शरीर चल रहा है, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दिया है, ये उसका इंडिकेशन होता है।
1: मतलब कोमा में चले गए और उम्मीद कब
0: डॉक्टर
1: कोई
0: डिसाइड करता है कि साहब, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये अब नहीं बचेंगे। तो वैसे लोगों को वेंटिलेटर पर और 8-10 घंटा 15 घंटा रखा जा सकता है, और उनके माथे का, चूंकि ब्रेन डेथ हो गई है
1: जी,
0: बाकी शरीर काम कर रहा है, तो वो अंगों का उपयोग
1: जी किया जा सकता,
0: प्रत्यारोपण के लिए किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, किसी के अंग किसी पीड़ित को लग सकता है
1: जी।
0: तो ये एक जो है जरूर किया जाना चाहिए। वैसे ही एक्सीडेंटल डेथ होती है
1: जी,
0: हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ अपने देश के अंदर होती है। एक्सीडेंटल डेथ में जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज कराते हैं लोग, उस समय उनका अंग चलता रहता है, कोई भी अंग जो डैमेज हुआ है या चोट लगी है वो बचेगा नहीं बचेगा, ये एक्सीडेंट के मुताबिक रहती
1: जी, जी।
0: वैसे लोगों का भी यदि डॉक्टर ने घोषित किया कि ये नहीं बचेगा, वैसी स्थिति में उसके अंगों का दान लिया जा सकता है, बशर्ते कि वो पहले से एक संकल्प ले।
1: क्या ये तुरंत
0: या परिवार वाले जो है
1: उस समय भी ये निर्णय लिया जा सकता है?
0: हाँ, लिया जा सकता है
1: जी,
0: उस समय भी लिया जा सकता है, परंतु ये यदि ले ले या परिवार वाले राजी हो जाएं कि हाँ इनके शरीर का दान हो सकता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। उसके कारण अभी प्रतिवर्ष करीबन 70,000 या 80,000 किडनी की जरूरत पड़ती है, और हमें मिलता है 3,000-3,500।
1: बहुत लंबा,
0: बहुत ही लंबा बैकलॉग है, और जिन लोगों को, और जबकि मृत्यु जो है हर साल लाखों में होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि उनको मोटिवेट किया जाए, उनको जानकारी दी जाए, उनको प्रेरित किया जाए, तो ये काम तेजी से हो सकता है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पर कि कॉर्निया की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, वहाँ एक आदत सी बन गई है हर परिवार की कि मृत्यु के बाद वो कॉर्निया का दान तुरंत कर देते हैं। नतीजा है कि अब वो देश दूसरे देश को एज ए गेस्चर कॉर्निया गिफ्ट करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये कितनी बड़ी बात हो गई, एक छोटा सा देश कितना बड़ा काम कर
1: योगदान
0: जाता है।
1: दे रहा,
0: और हम तो 140 करोड़
1: दुनिया में सबसे बड़ी
0: सबसे बड़ी आबादी है, तो हम इस समस्या के ओर पार पा सकते हैं।
1: जी, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, जो कि अभी बहुत ही निचले स्तर पर है।
0: अभी पिछले 2 बार के मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी ये अंगदान को लेकर लोगों से अपील करने की कोशिश की थी, जो एक बड़ी पहल है।
1: जी, अंगदान की हम बात कर रहे हैं तो कई बार लोग जो है खरीद फरोख्त में भी फंस जाते हैं, वो कितना बड़ा अपराध है?
0: खरीद करके और फिर अपने परिजन की जान बचाना, ये कहीं ना कहीं सामाजिक अपराध है
1: जी,
0: ये कह सकता हूँ मैं।
1: क्या ये जैसे परिवार वाले अपने परिवार वालों को दे सकते हैं?
0: हाँ, ये ब्लड रिलेशन जो है
1: जी,
0: उस ब्लड रिलेशन में आप दे सकते हैं, सहमति होनी चाहिए, फिर वो
1: पहले से रजिस्ट्रेशन करने की,
0: नहीं इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है
1: जी, जी।
0: अभी भी होता है, बिहार में भी होता है, बाहर भी होता है, परिजन
1: जी,
0: जो उनका ब्लड रिलेशन है, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, ये हो सकते हैं
1: जी, जी।
0: इसमें भी एक और क्या बात है कि 65% लोग जो है, 65% महिलाएं ऑर्गेन यानी कि किडनी वगैरह का जो पारिवारिक इसमें भी देते हैं, उसमें भी सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है
1: दान करने वालों,
0: एकदम हाँ दान वालों में, क्योंकि माँ होती हैं, बहन होती हैं, तो एक अलग जो है, बेटा बच जाए मेरा,
1: भाई
0: मेरा पति बच जाए, भाई बच जाए, ये कितना बड़ा जो है भगवान ने माँ शब्द बनाया है, जो अनूठा है।

0: जी, आपने व्यक्तिगत स्तर पर और सरकारी स्तर पर प्रयासों की बात कही। इसकी प्रक्रिया भी हम संक्षेप में अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि कोई इच्छुक है अंगदान या देहदान के लिए, तो कैसे शुरुआत करे, कहाँ संपर्क करे?
1: पहली बात कि जिन लोगों को, पूरे बिहार के लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि यानी कि जो भी बच्चे, जिनके जो भी व्यक्ति जिनका हाथ पैर कटा हो, विकृति के शिकार बच्चे
0: जी
1: जिनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं, बच्चा स्वस्थ है वो लंगड़ा के चलता है, चौपाया होके चलता है, इन सब बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए। और हमारे यहाँ आने का बहुत सिंपल सा पता है
0: जी
1: कि पट्टा में नया इंटर स्टेट बस टर्मिनल खुला है पहाड़ी पर, बैरिया बस स्टैंड ऐसे उसका निक नेम है,
0: जी
1: उस स्टैंड पर आ जाइए। उसके ठीक सामने एक भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल है,
0: जी
1: वहाँ पर आ जाइए। आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो बेस्ट हो सकता है वो इलाज होगा। रजिस्ट्रेशन होकर आपको न वहाँ एक नया पैसा आपका नहीं लगता है, खाना पीना रहना वगैरह सब निःशुल्क है। और हम भी चाहते हैं क्या कि बिहार के सब लोग जो पैसा दे सकते हैं वो पैसा जरूर दें, जो नहीं दे सकते हैं वो मरीज भेजें। जितनी बड़ी संख्या में मरीज आएंगे हमें उतना आनंद आएगा, चूंकि हमारा एक बड़ा संकल्प है 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार ये बने। जो भी पीड़ित हैं, घर में परिवार में बोझा बने हुए हैं, उन सबको अपने पैरों पर हम खड़ा कर सके, ये एक प्रयास कर रहे हैं, ये एक शिद्दत से कर रहे हैं। और कभी कभी गुस्सा भी आता है कि आपको जब मरीज भेजने की बात करते हैं, सिर्फ आपसे ना हम पैसा मांगते हैं ना कुछ, आप मरीज भेजने में भी कंजूसी करते हैं, या आपकी प्राथमिकता में वो बहुत निचले स्तर पे होता है, तो ये मन को जरूर तकलीफ होती है।
0: बिल्कुल
1: वैसे ही नेत्रदान और अंगदान को लेकर हमारा वेबसाइट है www.dadhichidehdansamiti.org,
0: www.dadhichidehdansamiti.org।
1: इसके ऊपर आप जाए, वेबसाइट पर हमारा फॉर्म उपलब्ध है, उसको भरकर ऑनलाइन ही भेज दें आप हमको, हम आपके पास बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से वो एक सर्टिफिकेट, एक सम्मान पत्र आपके पास चला जाता है, ताकि घर परिवार वालों को पता चल सके कि आपने ऐसा कोई बड़ा निर्णय लिया है जिंदगी का।
0: बिल्कुल,
1: ये एक हमारी कोशिश रहती है।
0: कई बार ऐसा भी केस आपने देखा होगा, हो सकता है समाज में, कि किसी व्यक्ति ने निर्णय लिया, संकल्प लिया कि मैं कॉर्निया दान करूंगा, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात परिवार वाले तैयार नहीं हुए। तो क्या ये कानूनन आप अंगदान ले सकते हैं
1: नहीं
0: या नहीं लिया
1: नहीं
0: जाएगा?
1: नहीं ये उनके परिवार की सहमति आवश्यक है,
0: उस व्यक्ति के सहमति के खिलाफ भी?
1: खिलाफ भी हो तो भी आवश्यक है।
0: अच्छा,
1: बहुत सारे परिवारों में बहुत बार तो मारने को दौड़ जाते हैं लोग हमारे पास
0: जी
1: की
0: जी
1: जाए,
0: जी
1: मेरा घर वाला मरा है और
0: जी
1: आप आ गए उनका बॉडी लेने या उनका कॉर्निया लेने के लिए, तो उनको गुस्सा आता है और स्वाभाविक भी है कि वो उस समय
0: उस
1: संवेदना
0: मनस्थिति में
1: से
0: रहते
1: रहते हैं,
0: हैं।
1: परंतु समय ही वही है हमारे जाने का, तो हम
0: जी,
1: क्या
0: 6 घंटे ही उसकी
1: करें।
0: वैधता है
1: नहीं, और हम भी जो
0: शायद।
1: जब जानकारी मिलती है तो उसी समय जा पाएंगे ना।
0: पहली जिम्मेदारी तो परिवार वालों की
1: हाँ,
0: जानकारी दें।
1: परंतु परिवार वाले अधिकांश रूप से धीरे धीरे कन्विंस हो
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं, ये एक अच्छी बात है।
0: जी
1: और एक चीज़ और हम सबसे जो है कहते हैं कि हमने कोई बड़ी रेखा नहीं खींची है, हमारी रेखा बहुत छोटी है, इसलिए कि किसी ने बगल में बड़ी रेखा नहीं खींची है, इसलिए मेरी छोटी रेखा भी आपको बड़ी दिखती है। काम करने के लिए बहुत बहुत जो है शिद्दत और संवेदना के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए हम लोगों के साथ, कुछ तो समाज के लिए करने की आदत डालिए, ये हम सब की इच्छा है। और आप 10 मरीज भेजेंगे तो 10 मरीजों की दुआएं आपके जीवन को बहुत बहुत एक अच्छा रूप देगी, जीवन देगी।
0: जी
1: हमारा जीवन ऐसा ही है, उसकी कल्पना, उसका कल का प्रोग्राम धरा का धरा रह जाता है। यदि वह कल्पना साकार कर लेता तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। हम सब लोग सोचते हैं कि अभी बेटे की शादी है, अभी उनको पढ़ाना है, अभी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जब इन जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे तब हम कुछ समाज के लिए करेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के लिए

0: तक उम्र होगी तब आप करने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए रोज कुछ तो कुछ एक अच्छा काम करते जाइए, यही हमारा आप से अनुरोध है। जिंदगी को सुखद बनाइए, हैप्पीनेस जिंदगी में लाइए, खुशी अपनी जिंदगी में रोज लाइए। खुशी कोई बड़ी एक साथ नहीं मिलती है, छोटी छोटी खुशी बड़ा आनंद देती है, जीने का एक आधार देती है।
1: और हमारी संस्कृति में तो दान देने से जो खुशी मिलती है वो तो अकल्पनीय होती है। शायद वह कुछ खरीदने से, कुछ पा लेने से ज़्यादा, कुछ त्याग करने से ज़्यादा खुशी
0: सही
1: मिलती
0: बात
1: है।
0: है,
1: जी
0: हमारा देश आध्यात्मिकता के साथ विकास का देश है,
1: जी
0: इसलिए आध्यात्मिकता जीवन का चरमोत्कर्ष रहेगा, तभी आप जीवन को अच्छे ढंग से जी सकेंगे,
1: जी
0: मैं यही कह सकता
1: जी
0: हूँ। जी
1: तो इन्हीं महान कार्यों के कारण भारत सरकार ने वर्ष 2020 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया, और केवल हम नहीं, पूरा बिहार, पूरा देश गौरवान्वित है। अंत में क्या आप चाहते हैं हमारे श्रोता अपने जीवन में एक संकल्प करें?
0: भारत सरकार ने विकसित भारत की कल्पना की है, उसको साकार करने का काम हम सब लोगों का है। सरकार के साथ साथ हमारी सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य का भी बोध हो, ऐसा हम कह सकते हैं। आने वाले वर्षों में बिहार का एक भी व्यक्ति जो निर्धन है, अपाहिज है, गरीब है, अनपढ़ है, स्वास्थ्य से परेशान है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे। एक सुखद बिहार, एक तो विकसित बिहार की कल्पना, सब स्वस्थ हों, सब आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया का एक बड़ा योगदान बिहार की जनता अपने एक छोटे छोटे कामों से करे, हम गलत चीज़ों से बचें और अच्छे चीज़ों की स्थापना करें समाज के अंदर। इन्हीं बातों को मैं कह सकता हूँ।
1: निश्चित रूप से। तो श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित बिमल कुमार जैन जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दिव्यांगों के कल्याण के लिए और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए आपने मुहिम चलाई हुई है। श्रोताओं, इस भेंट वार्ता के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप भी जागरूक हों, हम भी जागरूक हों, और अंगदान महादान का जो वाक्य है लेकर हम आगे बढ़ें, और हम एक संकल्प लें कि हम भी अंगदान या देहदान के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे और किसी के जीवन के लिए, किसी के परिवार के लिए एक नई रोशनी के रूप में सामने आएंगे। तो बिमल कुमार जैन साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी प्रेरणादायक बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए, अभी आपने इस कार्यक्रम में सुना पद्मश्री बिमल कुमार जैन से सचिन कुमार की बातचीत। इसी के साथ आज का हमारा एक कार्यक्रम इनसे मिलिए समाप्त होता है।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीने वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लिए पेश है अब फिल्म संगीत। वीर ज़ारा फिल्म का गाना आइए सुनते हैं। कार्यक्रम में पहली पेशकश लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान, प्रीति मजूमदार और साथियों की आवाज़ में।

0: दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। रात दिन उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है। लाख बुलाना चाहूं फिर भी नहीं बुला सकता। बस अब आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा मैं।
1: हिमेश रेशमी को लीजिए सुनिए, जिसे मिली है फिल्म कर्ज से।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

लिपिश है फिल्म शिमला मिर्च के लिए गाया गया ना, मीत ब्रदर्स अनजान फेट, यासिर देसाई और खुशबू गिरवाल की आवाज़ में।

0: बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर

0: फिल्म बागवान से अभी आपने सुदेश भोसले और अलका याग्निक को सुना, समीर के बोल, आदेश श्रीवास्तव का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम, अगला प्रसारण इस संदेश के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज भोजपुरी भाषा के लोकगीत सुनिए। कलाकार हैं अनिल कुमार।

0: अनिल कुमार के गाए लोक गीतों का आनंद लिया आपने बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में। एक अंतराल के बाद सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने प्रेमबदा सिंह के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। हमारा बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
4: श्रोता सखियों को रंजना का नमस्कार। सखियों, हम सब भारतवासी अपनी अपनी परंपराओं से जुड़े हैं और परंपरा सांस्कृतिक धरोहर है जिसमें हम विश्वास करते हैं, उससे जुड़े भी रहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिरता प्रदान भी करती है। और दूसरी तरफ आधुनिकीकरण और शहरीकरण और शिक्षा के कारण परंपराओं में थोड़ा बदलाव भी हम देखते हैं, जो कि आधुनिकता की ओर ले जाता है। अब परंपरा जैसे संयुक्त परिवार, त्योहार, लोक कलाएं, गुरु शिष्य परंपरा, इन सब में धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और वैचारिक दृष्टिकोण से भी परिवर्तन और बदलाव हो रहा है। सखियों, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण के कारण धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हो तो जरूर रहा है। और आज हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे दूर हैं और पर्व त्योहार पर हम उनसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे सीखते हैं और वो जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। कभी कभी अपनी सुविधा के अनुसार उन परंपराओं में भी परिवर्तन करते जा रहे हैं, क्योंकि परंपराओं के हम वाहक हैं। तो इन परंपराओं को पूरी तरह ना बदलें, उनसे हम जुड़े, अपने आप को बदलें, अपने घर के बच्चों को भी बदलें। और ऐसा करने से हमारी परंपराएं तो बनी रहेंगी और परंपराओं का आगे भी वहन होता रहे, ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है। सखियों, परिवार में परिवर्तन तो हो, लेकिन परंपराओं में उतना ही हो जो लगे कि जो पहले था वही परंपराएं आज भी हैं और उसको हम आगे भी ले जाएं। तो इसके लिए हम अपने घर के बच्चों को इनसे जोड़े रहें और उनको जोड़े, इसके लिए हमें उससे ज़्यादा जुड़े रहना है और उसको एक आकर्षक ढंग से हम अपनी परंपराओं को प्रस्तुत करें, उसके साथ जुड़े, उसकी खासियत को समझें। ये सब बहुत ज़रूरी है और इससे समाज में एक प्रगति, सकारात्मक बदलाव होगा और ये बहुत ज़रूरी भी है। और ज़रूरी तो मनोरंजन भी है, तो हम सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सचमुच सखियों, अभी तो मौसम ऐसा ही है कि गीत गाते गुनगुनाते रहिए और मौसम का आनंद लेते रहिए। ये महीना तो गर्मी का है और इस समय बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन ये तो अच्छा है कि मौसम बदल गया है और हम लोगों को अभी बिल्कुल ऐसी गर्मी नहीं लग रही है जिससे हम परेशान हों। तो यही बदलाव हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से इतना बदलाव करें अपने रूटीन में, अपनी आदतों में, कि हर कुछ हमारे आसपास का अच्छा रहे। अब मौसम सुहाना हो गया है और हम सब इसका आनंद ले रहे हैं। यदि हम अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य पूरा करें तो पर्यावरण हमें अनमोल तोहफा तो देगी ही। वो ऐसे करें कि संसाधनों का प्रयोग जरूरत और मितव्ययिता से करें, जैसे बिजली, पानी, ईंधन और गैस की किल्लत से तो अभी सब जूझ रहे हैं, तो इसको भी संभाल कर चलें। और हरियाली बनाए रखने के लिए बागवानी की आदत और शौक दोनों ही ज़रूरत है। इसको हम बनाएं, थोड़ा प्रकृति के साथ जुड़े, गर्मी में भी अपनी जीवन शैली को ऐसे रखें जिससे गर्मी से तनाव या

0: परेशानी ना हो, और हमें खुले में थोड़ा समय तो बिताना ही चाहिए। अब जब जाड़े का आनंद लेते हैं, बारिश का आनंद लेते हैं, तो गर्मी के मौसम का भी आनंद लीजिए। सकारात्मक सोच रखिए और गर्मी महसूस ना हो इसके लिए थोड़ा अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करिए, यानी समय से भोजन, हल्का भोजन, और जो ताज़ा मौसमी फल होते हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा, ककड़ी, बेल का शरबत, आम का पन्ना, ये सब का प्रयोग जरूर करें। और घर में बच्चों को भी इसके स्वाद को बताएं, इसकी खासियत बताएं, जिससे बच्चे भी पसंद करें। और जब बच्चे खुश, स्वस्थ, तंदुरुस्त रहेंगे तो घर का माहौल तो वैसे भी अच्छा ही हो जाता है। सखियों, एक भेंट वार्ता हम सुन लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली में योग करें, स्वस्थ एवं निरोग रहें। डॉक्टर सीमा गुप्ता से बात कर रही हैं मधुमती।
1: श्रोताओं, आधुनिक जीवन में योग कर स्वस्थ व निरोग रहें विषय पर बातचीत करने के लिए आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में आमंत्रित हैं योग प्रशिक्षक सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता जी, आपको नमस्कार।
2: और आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार।
1: सीमा जी, सबसे पहले ये बताएं कि योग क्या है, हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है।
2: सबसे पहले तो योग क्या है, जब इस संदर्भ में हम बात करते हैं तो एक सामान्य सी धारणा है, लोग आसन और प्राणायाम को योग समझने की भूल करते हैं। सिर्फ आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है। योग की अगर हम बात करें तो योग के जो 8 अंग दिए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सबको जब मिला करके हम देखते हैं और इस पर हम काम करना शुरू करते हैं और इसके आधार पर हम जब अपने जीवन में इन चीजों को उतारते हैं, तब उसके जो फायदे होते हैं वो अनगिनत हैं।
1: कैसे हम योग को जीवन में ढाल करके उसके फायदे ले सकते हैं?
2: सबसे पहले तो योग जो है वो जीवन जीने की कला है। कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालें और योग को भी अपने जीवन में शामिल करें तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ आपके पूरे जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर ये चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो, मानसिक दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो। आपके जीवन का हर जो पहलू है वो कहीं ना कहीं योग से बहुत हद तक प्रभावित होगा।
1: जी, तो देखिए, अभी जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें बहुत भागदौड़ की जिंदगी है हमारी, तो अपने शरीर को हर व्यक्ति स्वस्थ रखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम योग को अपने जीवन में किस तरह से शामिल करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर जब स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा।
2: ये तो सही बात है कि आज का जो वर्तमान हमारा जीवन शैली है वो बहुत ही भागदौड़ भरा है और हर किसी की समस्या है कि कैसे हम अपने लिए समय निकालें। अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, और शरीर और मन जब दोनों स्वस्थ हैं तो निश्चित है कि आपका जो काम है, काम करने का तरीका है, वो सारी चीजें प्रभावित होंगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने लिए समय निकालें। किसी भी जॉब में है या किसी भी कार्य में है, या गृहिणी है जो घर में काम करती हैं, सुबह में उनके पास समय नहीं होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम योग सुबह ही करें।
1: जी
2: हाँ, ये जरूर है कि योग सुबह करने से ज्यादा फायदेमंद रहता है, परंतु हम शाम के समय भी, अगर हम ऑफिस से आने के बाद भी योग के लिए समय निकालें। बस ध्यान देना है कि हम भोजन के उपरांत कम से कम 3 घंटे का गैप हो,
1: जी
2: और 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे के गैप के बाद हम शाम में भी योग को कर सकते हैं, और उसमें कुछ हम विशेष आसनों को ले, कुछ प्राणायाम को ले और वहां से शुरुआत करें। कुछ ध्यान के जो अभ्यास हैं, जो रात में जब हम बिस्तर पर जाएं तो सोने के दौरान हम उसको करते हुए सोएं, तो इससे क्या होगा कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, सुबह आप बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही साथ एक लंबे समय की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करके, दिन भर में थोड़ा थोड़ा कर करके उसको आप कर सकते हैं।
1: कहने का मतलब कि जब भी हमें समय मिले हम उस योग को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए?
2: देखिए, वातावरण उसके लिए तो सबसे पहले आप जिस स्थान पर योग करते हो तो घर का जो बहुत शांति प्रिय कोना हो, जो आप कोना आपको बहुत पसंद हो, तो उसी एक कॉर्नर को हमेशा आप अपने योग के लिए स्थायी रूप से उसका चयन करें।

0: बार बार जगह को बदले नहीं, और उसके लिए आप हवादार होना चाहिए, वो आसपास अगर थोड़ा सा प्राकृतिक वातावरण
1: जी
0: हो।
1: सीमा जी, योग करते वक्त हमारा खान पान कैसा होना चाहिए?
0: योग के साथ साथ देखिए, अगर हम सिर्फ योग तक ही खुद को सीमित कर दें और खान पान पर हम ध्यान नहीं दें, तो योग का जो लाभ हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। गर्मी का समय है तो आप उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिएं, नींबू का सेवन करें, संभव हो तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सात्विक भोजन लें, क्योंकि एक कहावत प्रचलित है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो आप जैसा अन्न ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव आपके मन
1: शरीर
0: पर
1: पर और
0: पड़ता
1: मन
0: है,
1: पर पड़ता
0: शरीर पर पड़ता है। भोजन का भी चुनाव बहुत सोच समझ कर करें कि हमें क्या खाना चाहिए। चलिए ठीक है, कभी महीने में या कभी सप्ताह में हम कुछ ऐसा कुछ तला भुना ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार और फल हरी सब्जियां इन चीजों का सेवन अब कर लें। और ध्यान रहे कि आप योग करने के लगभग 45 मिनट के पश्चात ना तो कुछ खाएं और पिएं और ना ही स्नान करें।
1: जी। और जब हम संध्या समय में बैठते हैं योग के लिए, अब कुछ वक्त निकालते हैं, तो उस वक्त हम क्या करें? कुछ आहार कुछ लें, या फिर हम पहले योग कर लें फिर आहार लें?
0: जब हम शाम के लिए चुनाव करते हैं योग के लिए, तो निश्चित है कि हम दोपहर में खाना खाते हैं, तो दोपहर में आपने जब भी खाना खाया हो उससे 3 साढ़े 3 घंटे का समय आप देख लीजिए। मान लेते हैं कि जैसे हमने 2 बजे दोपहर का भोजन लिया हो, तो आप लगभग 5:30 तक, तब तक आपके 3.5 घंटे हो जाएंगे, 5:30 तक आप योग कर लें, और योग करने के आधे घंटे के पश्चात आप कुछ थोड़ा सा लिक्विड या कुछ हल्की फुल्की कोई चीजें ले सकते हैं।
1: कहने का मतलब कि सुबह हो या शाम हो, जब भी हम योग करें तो हम
0: खाली
1: आहार
0: पेट
1: लें।
0: कोशिश करें, खाली पेट ही करना चाहिए, उसके 45 मिनट के पश्चात ही आप कुछ लें।
1: जी। और सीमा जी, ये योग के कुछ नियम होंगे और कुछ प्रकार होंगे, कौन-कौन से प्रकार हैं और उसके क्या नियम हैं?
0: योग करने के अगर हम नियम की बात करें, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि आप प्रतिदिन योग के लिए समय देंगे। बहुधा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि किसी दिन हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, 1 से 1.5 घंटे कर लिया, और किसी दिन बिल्कुल भी नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। आप कम से कम सप्ताह में 5 से 6 दिन आप योग करें, और ये जरूरी नहीं है कि हम 1 से 1.5 घंटे करें, आप आधे घंटे ही करें, बट रेगुलर रहें, रोज आप इन चीजों का अभ्यास करें। और रही बात कुछ नियमों की, तो मैंने पहले ही बताया कि एक जगह जो आपका हो वो हमेशा एक जगह का चुनाव करना चाहिए, खुली और हवादार हो। आप योग के समय जो कपड़े पहने वो ढीले पहनने चाहिए, कपड़े ढीले हो ताकि आपको आसन करने में कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ चश्मा बेल्ट इत्यादि बहुत लोग मतलब पहने हुए हैं और पहन करके भी कर रहे हैं, तो इन चीजों को खोल के रखना चाहिए। और थोड़ा शांत जगह हो जहाँ थोड़ा ध्वनि कम हो या शोरगुल कम हो, ऐसे
1: जी
0: जगहों पर आप को योग के लिए चुनाव करें।
1: देखिए, ये हमारी जो जीवन शैली है उसमें भागदौड़ भी है, तो कई बीमारियां भी लग जाती हैं। तो वैसी स्थिति में हम कैसे तय करें कि कौन सी बीमारी में कौन सा योग जो है फायदेमंद है?
0: इसके लिए तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम अपनी बीमारियों से परिचित हों कि हमें कौन सी बीमारी है, क्या है। रही बात योग से लाभ की, तो ये तो निश्चित रूप से होगा कि आप योग करेंगे तो लाभ होगा। तो बेहतर है कि हम जीवन में बीमारियों के आने के पहले अगर योग की शुरुआत कर दें,
1: जी
0: ताकि बीमारियां हम तक पहुंचे ही नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना पहले अपने जीवन में इसकी शुरुआत करें, और अगर बीमारी हो चुकी है तो आप अपनी बीमारियों को पहले समझ लें, और किसी योग जो प्रशिक्षक हैं उनकी देख रेख में आप योग की शुरुआत कर सकते हैं।
1: कुछ बीमारियां हैं जैसे हृदय की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां
0: मधुमेह हो
1: हैं,
0: गए, थायराइड हो
1: मधुमेह।
0: गए हैं।
1: हाँ, तो इन बीमारियों में हम कैसे योग के द्वारा कुछ हम आराम पा सकते हैं?
0: देखिए आजकल ये जो कुछ बीमारियां हैं जैसे मधुमेह, फिर आपका थायराइड हो गया या हृदय रोग हो गए, महिलाओं में कमर की समस्या, तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो ज़्यादा आज प्रचलन में हैं और देखने को मिलती हैं। तो इन बीमारियों की हम बात करें तो योग इन बीमारियों पर बहुत ही लाभकारी है। जैसे आप बात करते हैं थायराइड की, तो थायराइड जो है वो हम सभी जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण थायराइड की समस्या होती है।
1: जी
0: तो हम थायराइड के लिए डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर्स

0: दबा देते हैं। लेकिन योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विभिन्न जो तंत्र हैं हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं उनके मैकानिज्म को सही करता है। तो उसमें आपका एक तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें कि हमारे जो इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं उनसे जो हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं, तो योग के माध्यम से इन जो ग्लैंड्स हैं, इनके जो हार्मोन्स हैं, इनका जो मैकेनिज्म है उसको सही और दुरुस्त किया जा सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके जो थायराइड की समस्या है वो योग के द्वारा आप इस पर लाभ अवश्य देखने को मिलेगा।
1: जी
0: वैसे ही आप अगर हृदय रोग की बात करें तो हृदय रोग में तो मैं बहुत सारे आसनों की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आसन पर आपका गलत प्रभाव हो सकता है। लेकिन योग में कहीं भी ये मना नहीं है कि आप कभी भविष्य में योग नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम हल्के फुल्के आसनों से योग की शुरुआत कर, जिसमें कुछ ज्वाइंट के आसन हैं, उनको कर करके धीरे धीरे हम हृदय रोग की जो समस्या है उसको हम नियंत्रित योग के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम हैं, जैसे आपके अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, इन प्राणायाम को हम कर सकते हैं। कुछ तनाव से दूर रहने की ध्यान की क्रियाएं हैं, जैसे अंतः मौन है, योग निद्रा है। तो इन सबको कर करके हम योग के माध्यम से कहीं ना कहीं हृदय रोग को पर एक तरह से उसको हम सही कर सकते हैं और एक अच्छी जीवन को जी सकते
1: जी
0: हैं।
1: सकते
0: और
1: हैं।
0: खासकर आजकल तो हृदय रोग से संबंधित समस्याएं, हार्ट अटैक की समस्या आए दिन सुनने को मिलने को
1: जी
0: देखने को मिल रही हैं, और अब एज भी इसमें कोई बैरियर नहीं है, बहुत कम उम्र में बच्चों को ये समस्याएं हो रही हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करूंगी कि आप खुद भी योग करें और अपने बच्चों को योग करने के लिए अभी से योग की आदत डालें और इसके लिए प्रेरित करें। और निश्चित तौर पर अगर बच्चे आज से इसको करना शुरू कर देते हैं तो आगे भविष्य में वो निश्चित तौर पे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अवश्य स्वस्थ रहेंगे।
1: जैसे आपने कहा कि बच्चों को भी हम बताएं, तो शुरुआत में ही हम ऐसे कौन से योग हैं जिनको हम अपना करके जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो अगर बच्चे बहुत कम उम्र से बच्चे शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा अभ्यास है सूर्य नमस्कार। अगर सूर्य नमस्कार की आदत हम बच्चों को डाल दें और उसके साथ दो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम हो गए, फिर आपका वृक्षासन हो गया, शशांक आसन जिसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं, अगर इन आसनों को हम बच्चों से करवाएं तो निश्चित रूप से बच्चे सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और जो बड़े लोग हैं या एक उम्र के बाद अगर योग प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले है कि हम अपने सारे ज्वाइंट्स हमारे स्वस्थ हों, जिससे कि उम्र का प्रभाव भी हमारे ऊपर कम हो, या उम्र के साथ जो हड्डियां जो घिसनी शुरू हो जाती हैं या जॉइंट्स में जो पेन होने शुरू हो जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं। तो ये पवन मुक्तासन समूह है जिसमें सारे जोड़ के अभ्यास हैं। तो ऐसे अभ्यास, कुछ आगे और पीछे झुकने वाले दो तीन आसन और साथ ही साथ कुछ प्राणायाम को कर करके हम एक अच्छी जीवन को जी सकते हैं।
1: सीमा जी, आपने योग के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। यदि हम नियमित रूप से अपने जीवन में योग को अपना लें तो हमारा जीवन सचमुच सुखमय होगा, और इसके तो बहुत अनगिनत फायदे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, हम भी यही कहेंगे श्रोताओं से कि अभी से अपने जीवन में योग को शुरू करें। सीमा जी, इस योग क्रिया के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा जी, चलते चलते आपको एक अपनी पसंद का गीत।
0: मुझे ये गाना बहुत पसंद है और मैं उसके कुछ बोल गा करके भी सुनाना चाहूंगी। पल

सखियों, अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता। आधुनिक जीवन शैली में योग करें, स्वस्थ एवं निरोग रहें। डॉक्टर सीमा गुप्ता से बात कर रही थी मधुमति। सचमुच हम यदि योग, प्राणायाम, टहलना और अपने मन मर्जी से कुछ अपने मन मर्जी के काम करना यदि शुरू कर दें तो तनाव तो हमसे दूर भी रहता है और मौसम चाहे कोई भी हो हमें उससे जुड़ना तो पड़ता ही है और मौसम के साथ रहना ये तो हमको होना ही चाहिए और इसके लिए हम खुद को तैयार रखें। और किसी किसी को बदलते मौसम में कुछ शारीरिक परेशानियां होती हैं और इन्हीं में है श्वास रोग की परेशानी, अस्थमा। यह जिन व्यक्तियों को होता है उन्हें धूल धुआं से बचकर रहना पड़ता है और बदलते मौसम में वायुमंडल में फैले कीटाणु जीवाणु अस्थमा के रोगी को और ज़्यादा कष्ट देते हैं जो बदलते मौसम में बढ़ता है। और बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, तो बचाव के लिए साफ़ सफाई तो ऐसे भी बहुत ज़रूरी है और जिनको अस्थमा है उन्हें इनहेलर, योगा, प्राणायाम, जैसा कि अभी हम भेंट वार्ता में भी सुन रहे थे, इससे हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं, मन को एक अलग सा सुकून भी मिलता है। अपने खान पान में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और धूम्रपान से बचें, यानी कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हें तो हानि होती है, आसपास के माहौल में भी जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यदि आपके आसपास कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हो, माहौल हो, तो आप उससे दूर रहें और हो सके तो उन्हें भी बताएं कि ये किस तरह हानि पहुंचाता है, तो हो सकता है आपके बोलने का असर भी हो। और ये सोचकर ही हमको हर जगह प्रयास करना चाहिए कि यदि हम एक कदम बढ़ेंगे तो शायद सामने वाले एक एक कदम बढ़ेंगे और चार लोग हैं तो चार कदम हम अच्छाई की तरफ बढ़ सकते हैं। और अस्थमा से बचने के लिए कुछ टीके भी हैं, तो जिनको ये इस तरह की परेशानी है, और इस तरह की परेशानी कोई ज़रूरी नहीं है सखियों की बढ़ती उम्र में हो, आजकल बच्चों की भी इस तरह की परेशानी होती हैं, तो बच्चे खुद तो नहीं समझ पाते हैं, हमें ज़रूर ध्यान देना है कि यदि बच्चों में इस तरह की परेशानी होती है तो शुरुआत में ही उनके खान पान, उनके योगा प्राणायाम, उनके रूटीन पर हम ध्यान दें तो इस तरह की परेशानी उनको बड़े होने पर नहीं होगी। और टीकाकरण जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया के टीके लगवा कर अस्थमा के रोगियों को हम लाभ दिला सकते हैं। तो इन सब का ध्यान रखें, तनाव से भी बचें, और तनाव दूर करने की एक बहुत अच्छी दवा है गीत संगीत।

0: पर और कभी अंबर में।
1: सखियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।
2: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। 1 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे।

0: अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
1: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
2: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़क कर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम अक्षयवट के अंतर्गत सुनिए वार्ता, बुजुर्ग एवं वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर निहारिका।
4: वृद्धावस्था यानी जिम्मेदारियों से फुर्सत, अपना जीवन जीने के लिए समय ही समय। कहते हैं उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। पर यह भी सच है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। उम्र के हर दौर में जीवन अच्छा रहे, इसके लिए जरूरी है कि वृद्धावस्था में वित्तीय योजना का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। खास तौर पर वृद्धावस्था में ये और भी जरूरी हो जाता है। आमतौर पर आप देखिएगा कि जब बुजुर्ग सोचते हैं तो उनके जहन में दो बातें ज्यादातर आती हैं, पैसे का प्रबंधन क्या करना, दूसरा ये सोचना कि अब तो हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, जितना जीना था जी लिया, अब जिंदगी का अंतिम दौर बस गुजर ही जाएगा। परंतु इस तरह की सोच और सही वित्तीय प्रबंधन नहीं करना कई दफे बुजुर्गों को कई परेशानियों में डाल सकता है। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि वित्तीय प्रबंधन होता क्या है। सामान्य तौर पर वित्तीय योजना बनाने का उद्देश्य व्यक्ति या परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने में मदद करना होता है, ताकि वे आगे की वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सकें। जब व्यक्ति रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचता है, तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनका अपना प्रोफेशनल करियर समाप्त हो रहा होता है। पर रिटायरमेंट के पश्चात व्यक्ति एक नई पहचान के साथ सामने आता है। जो उसकी पुरानी आइडेंटिटी होती है वो अब नहीं रहती, और खासतौर पर वृद्धावस्था में अगर वित्तीय प्रबंधन के महत्व की बात की जाए तो कई कारण सामने आते हैं। सबसे पहली बात, वृद्धावस्था में आवश्यकताएं बदल जाती हैं। कई बार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता ज्यादा होती है, और साथ ही सामाजिक संबंधों का ध्यान रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए वित्तीय प्रबंधन इन जरूरतों के अनुसार करना आवश्यक होता है। वृद्धावस्था में आय के स्रोत भी धीरे धीरे सीमित हो जाते हैं, और जरूरी हो जाता है कि उनका सही प्रबंधन किया जाए। साथ ही यह एक सुरक्षित भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। अगर अपने आय के स्रोतों का वित्तीय योजना के अनुसार सही निवेश किया जाए तो जरूरत के समय बुजुर्गों के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। सच पूछिए तो सही वित्तीय प्रबंधन के द्वारा परिवार के सदस्य जो आपके प्रियजन होते हैं, उन्हें आपके आय और संपत्ति के प्रति आपके उत्तरदायित्व की भी जानकारी हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए वित्तीय प्रबंधन करना जरूरी है, वो है आपके अपने शौक और साथ ही सामाजिक संबंधों को भी अच्छे तरीके से निर्वहन करना। यात्रा करना, घूमना फिरना, रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करना, सच पूछिए तो उन कार्यों को कर पाना जिसे आप व्यस्त जीवन में नहीं कर पाए। अब बुजुर्ग को वृद्धावस्था में उसे पूरा करना सरल हो जाता है। साथ ही अगर आपकी वित्तीय व्यवस्था सही है, प्रबंधन सही है, तो बुजुर्ग आधुनिक जीवन शैली का भी संरक्षण आसानी से कर पाते हैं। जरूरी यह देखना है कि आप अपनी वित्तीय योजना को सही तरीके से प्रबंधित करें, ये आपकी आर्थिक मजबूती को भी बढ़ाता है। इस तरीके से वृद्धावस्था

में वित्तीय योजना का प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है और यह बुजुर्गों को सुरक्षित और सुखद जीवन जीने में मदद करता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि अगर वृद्धावस्था में वित्तीय प्रबंधन के जो मुख्य चरण हैं, उसकी जानकारी ली जाए तो वो मुख्य चरण क्या होंगे। सबसे पहले तो आप अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें, जैसे आपकी आय कितनी है, आपकी बचत कितने हैं, अब तक के जो आपके निवेश हैं और जो संपत्ति आपके पास है उसका

से आपकी आय कितनी है, आपकी बचत कितने हैं, अब तक के जो आपके निवेश हैं और जो संपत्ति आपके पास है उसका मूल्य क्या है। साथ ही अगर आपने कोई ऋण लिया है तो उसकी स्थिति क्या है, आपकी पेंशन या फिर किसी अन्य स्रोत से आपकी आय कितनी है। ये समस्त बातें आपकी वित्तीय स्थिति को बताती है। आय के निर्धारण के पश्चात व्यय की योजना बनानी भी बहुत जरूरी है। जैसे आवास पर खर्च, खान पान पर खर्च, चिकित्सीय देखभाल पर खर्च, मनोरंजन पर व्यय, इसके साथ ही आपसी संबंधों के निर्वहन पर व्यय। आपके पास व्यय के जो विभिन्न रास्ते हैं वो क्या हैं और किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा व्यय करने की जरूरत है, आप इसका निर्धारण करें। आय और व्यय के निर्धारण के पश्चात आप अपनी वित्तीय योजना बनाएं। निवेश योजना बनाते समय पैसों को सही जगह निवेश करने की योजना बनाएं। बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार या फिर बहुत सारे पेंशन योजनाएं। आपकी आवश्यकता के लिए एक चरण और भी महत्वपूर्ण है, जहां आप बचत कोष भी बना सकते हैं। आप आवश्यकता के अनुसार पैसे जमा कर सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने लिए उपयुक्त बीमा योजनाओं की भी जांच करें, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस और जीवन बीमा, ताकि आपकी जो वित्तीय सुरक्षा है वो सुनिश्चित रहे। अपने कर को भी शामिल करें। हालांकि बुजुर्गों के लिए कर भुगतान हेतु सरकार भी कई सुविधाएं देती है, से एक बहुत अहम पक्ष पर ध्यान रखना जरूरी है और वो है आपके आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि निवेशों के प्रमाण पत्र, आपके आयकर रिटर्न, बीमा के दस्तावेज, अगर आपके पास कोई मकान में निवेश है तो उसके दस्तावेज, सभी सुरक्षित रखें और अपने प्रियजनों को इसकी जानकारी भी जरूर दें। वृद्धावस्था में जब आप वित्तीय प्रबंधन करते हैं तो अपनी योजनाओं की समीक्षा भी समय समय पर अवश्य करें और अगर जरूरत महसूस हो तो उसे संशोधित भी करें। अगर आपके पास वित्तीय ज्ञान नहीं है तो वित्तीय प्रबंधन सही तरीके से करना कभी कभी बुजुर्गों को मुश्किल भी लगता है। ऐसे में किसी पेशेवर से आप सलाह ले सकते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति का ब्यौरा दें और सही वित्तीय प्रबंधन में पेशेवर सलाहकार की मदद लें। वृद्धावस्था में जब हम निवेश के क्षेत्रों की तलाश करते हैं तो कुछ मुख्य क्षेत्र उपलब्ध हैं। शुरुआत करूंगी फिक्स्ड डिपॉजिट से। ये बड़ा सुरक्षित तरीका होता है, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक एक स्थिर ब्याज दर पर आपको नियमित आय देता है और पूंजी की सुरक्षा भी होती है। अधिकांश बैंक आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न अवधि की FD पर दी जाने वाली जो सामान्य ब्याज दर है उसके अलावा 0.5% का अतिरिक्त ब्याज भी देते हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आम निवेशकों के जोखिम को कम करता है और बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करता है। यदि आपको सुरक्षित लेकिन FD से बेहतर रिटर्न चाहिए तो डेट फंड आपके लिए है। वहीं यदि आप कम समय में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में उतरना नहीं चाहते तो आपके लिए इक्विटी पर आधारित कई स्कीम्स मौजूद हैं। शेयर बाजार भी निवेश के एक विकल्प के तौर पर आता है, पर जोखिम ज्यादा होता है अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं। बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आप अनुसंधान करें और जानकारी रखें। लाभ तो जरूर ज्यादा होता है पर जोखिम की संभावना भी बनी रहती है। साथ ही कई वित्तीय संस्थान वृद्धावस्था के लिए विशेष रिटायरमेंट निवेश योजनाएं भी प्रदान करती हैं, जिसमें निवेश करके आप एक अच्छी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन योजना। यदि आप किसी ऐसी योजना में निवेश करना चाहते हैं जो टैक्स फ्रेंडली स्कीम हो, तो राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सुरक्षित स्कीम है जिसमें आपके पैसा डूबने का कोई भी रिस्क नहीं होता। LIC में भी कई सारी योजनाएं इसके तहत आती हैं। यदि आप किसी सुरक्षित और सरकारी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं जिससे अपने बुढ़ापे को सुरक्षित किया जा सके, तो आपके लिए LIC की सरल पेंशन योजना भी बेहतर होगी। इस योजना में आप चाहे तो 60 साल की उम्र ही नहीं बल्कि 40 वर्ष की उम्र से भी पेंशन लेने की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको एक मुश्त राशि का निवेश करना होता है, जिसके बाद जिंदगी भर पेंशन का लाभ आप उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक सरकारी और सुरक्षित योजना भी है, जिसमें आप 5 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं, बाद में आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। निवेशक केवल 1,000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अगर हम योजनाओं की बात कर रहे हैं

0: अटल पेंशन योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना स्वतंत्र कामकाजी व्यक्तियों के लिए है और उन्हें वृद्धावस्था के बाद के जीवन की वित्तीय सुरक्षा की दिशा में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना में अगर आप निवेश करते हैं तो एक निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी एक मुख्य योजना है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी एक अच्छा विकल्प है। अगर बात करूं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो यहाँ पर भी इसके माध्यम से आप छोटी राशियां जमा कर रिटायर होने तक एक बड़ा फंड बना लेते हैं। बहुत जरूरी है SIP के साथ बुजुर्गों के लिए SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की जानकारी होना भी। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहां आप अपने निवेश से अनुशासित तरीके से पैसा निकालते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड को महीने की एक तय तारीख पर एक तय राशि डेबिट करने के लिए निर्देश देना होता है और पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। निकासी के पश्चात जो बचा हुआ फंड है वो निवेश में बना रहता है और आपको उस पर रिटर्न भी मिलता रहता है, जिससे आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा होता रहता है। अन्य विकल्पों के बारे में भी जानकारी लें तो सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं में निवेश भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं तो आप किसी व्यापार की शुरुआत पर भी विचार कर सकते हैं। अपने आसपास अगर देखिएगा तो कई ऐसे सफल उदाहरण भी हमारे समक्ष हैं, जहां बुजुर्गों ने उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी व्यापार में बड़ी सफलताएं पाई हैं। संबलपुर उड़ीसा की एक महिला जो 70 साल की उम्र से अपना कैटरिंग बिजनेस भी बखूबी चला रही हैं और 100 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। 40 वर्षों तक उन्होंने दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया और धीरे धीरे इस उम्र में कैटरिंग का बिजनेस चलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अन्य उदाहरणों के बारे में बताऊं तो 60 वर्ष की आयु में मेरठ की रहने वाली एक महिला ने अपना बिजनेस शुरू किया। उम्र ज्यादा थी 60 वर्ष की, पर उन्होंने अपने हुनर का प्रयोग इस बिजनेस की शुरुआत करने में किया। 2021 में उन्होंने मसाले और अचार के प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत की और फिलहाल 20 से भी ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं को काम दे रही हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप में बिजनेस करने का हुनर है, आप कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, तो उम्र बाधा बिल्कुल नहीं बनती। एक अन्य विकल्प के बारे में भी जरूर बताना चाहूंगी। एक अन्य विकल्प है रियल एस्टेट में निवेश करना। आप आवासीय प्रॉपर्टी से किराए के रूप में भी कमाई कर सकते हैं और वाणिज्यिक प्रॉपर्टी लेकर भी आप आमदनी का जरिया बना सकते हैं। वर्तमान दौर में अगर आप डायरेक्ट तौर पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीद कर भी आप अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं है। आपके पास जितनी पूंजी है उससे ही रियल एस्टेट में अप्रत्यक्ष रूप से आप निवेश कर सकते हैं और लिक्विडिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश रिटायरमेंट के पश्चात महीने में एक नियमित आय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। कभी कभी आपको कुछ अन्य सामाजिक सुविधाओं पर भी व्यय करने की जरूरत होती है और सही तरीके से अगर आपने अपना वित्तीय प्रबंधन किया है तो उम्र का यह दौर भी बड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो मुख्य बात ये है कि जीवन की सांच ढलने के दौर में और भी अहम हो जाता है वित्तीय सुरक्षा। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, काम करने की क्षमताएं कम होने लगती हैं और वित्तीय सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। अतः बुजुर्गों के लिए सोच समझकर वित्तीय प्रबंधन नितांत आवश्यक है ताकि उम्र के इस दौर को आनंद के साथ जिया जा सके। तो अपना वित्तीय प्रबंधन कीजिए और उम्र के इस दौर का पूरा मजा लीजिए।
1: बुजुर्ग एवं वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता विषय पर अभी आपने डॉक्टर निहारिका की ये वार्ता सुनी। कार्यक्रम अक्षय वट के अंतर्गत ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल लेंगे और उसके बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत। और इस गीत के बाद

0: और इस गीत के बाद
1: छाया की।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे देशभक्ति गीत, और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
3: ओ सपनों की रानी।
2: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनिए फिल्म बनफूल में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मान अपमान फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल को सुना, भरत व्यास के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और अब लेंगे एक अंतराल, सुनवाएंगे कुछ और की।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत।

दो प्रेमी, इस फिल्म से अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया ये गीत सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और इन्हीं के संगीत में अगला गीत हमने फिल्म आशा से लिया है, जिसके बोल आनंद बख्शी के हैं, स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

फिल्म बगावत में भी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांती प्यारेलाल का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के समय 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री सरावगी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार पिछली सरकार के लिए तय फॉर्मूले के आधार पर होगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज एक दिवसीय मुंगेर दौरे पर हैं। श्री चौधरी भाजपा की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले वे मुंगेर के ज्योति मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुपति बालाजी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री मुंगेर योग विश्वविद्यालय में आयोजित पदार्पण दिवस समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज बोधगया पहुंच गए हैं। बोधगया हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति तो लाम महाबोधि मंदिर और वियतनाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बोधगया और गया जी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, साथ ही आवागमन व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और अररिया समेत 12 जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान हाजीपुर में सबसे अधिक 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथों को रवाना किया

गया है। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने 5,639 शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की है। ये सभी शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से गायब पाए गए थे या फिर विलंब से विद्यालय पहुंचे थे। इन सभी शिक्षकों को 72 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छपरा के भिखारी ठाकुर सभागार में 7 मई को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में युवाओं को विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 4 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फ उलहुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की क़्यादत वाली रियासती काबीना की तौसी 7 मई को होगी। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने बताया कि हल्फ बरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर नितिन नवीन, मरकज़ी वज़ीर अमित शाह, बीजेपी जेपी नड्डा समेत काबीना के कई अरकान और एनडीए के सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। श्री सरावगी ने बताया कि हल्फ बरदारी तकरीब का इनेकाद पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। इस बीच हल्फ बरदारी तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधी मैदान में आम लोगों की आमद रफ्त पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में काबीना की तौसी साबका हुकूमत के लिए मुकर्रा फार्मूले की बुनियाद पर ही होगी। आज पटना में ज़राई ब्लाक के नुमाइंदों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी हलीफ जमायतों को काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी मिलेगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी आज एक रोज़ा मुंगेर दौरे पर हैं। श्री चौधरी बीजेपी की जानिब से मुनाकिद पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती महाअभियान का इफ्तिताह करेंगे। इससे पहले वो मुंगेर के ज्योति मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने तिरुपति बालाजी की पूजा की। वज़ीर आला मुंगेर योग यूनिवर्सिटी में मुनाकिद एक तकरीब में भी शामिल हुए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर जमहूरिया तोलाम आज बोधगया पहुंच गए हैं। बोधगया हवाई अड्डे पर गवर्नर सैयद अता हसनैन, वज़ीर आला सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने उनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया तोलाम महाबोधि मंदिर और वियतनाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सदर जमहूरिया की आमद के पेश नज़र बोधगया और गयाजी में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। साथ ही आमद रफ्त के निज़ाम में भी तब्दीली की गई है। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर रियासत में बारिश की हालत बनी हुई है। महकमा मौसमियात से मौसूला इतला के मुताबिक आज रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। वहीं मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और अररिया समेत 12 ज़िलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का इंतबाह जारी किया गया है। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हाजीपुर में सबसे ज़्यादा 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना हाई कोर्ट समेत रियासत की सभी अदालतों में 9 मई को कौमी लोक अदालत का इनेकाद होगा। लोक अदालत में आपसी समझौते की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ अकसाम के दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी ज़िला और सब डिविज़नल अदालतों में खसूसी बेंच तश्कील दी गई है। इधर हमारे नामानिगार ने बताया कि लोक अदालत के इनेकाद की जानकारी देने और लोगों में बेदारी आम करने के लिए बेदारी रथ रवाना किया गया है। गोपालगंज के ज़िला एजुकेशन अफसर योगेश कुमार ने 5,639 से वजाहत तलब की है। ये सभी असातज़ा ऑनलाइन हाज़िरी दर्ज करके स्कूल से गायब पाए गए थे या फिर ताखिर से स्कूल पहुंचे थे। इन सभी असातज़ा को 72 घंटे के अंदर जवाब देने की हिदायत की गई है। नौजवानों को हुनर फरोग और उन्हें रोज़गार के खास धारे से जोड़ने के लिए छपरा के भिखारी ठाकुर ऑडिटोरियम में 7 मई को एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभवाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी सीनियर ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में हिंदी विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हिंदी में हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 अथवा 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टोगनोग्राफर के 731 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 15 मई 2026। संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक।

0: पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। 2:15 होने को है, दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। अब
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तोलाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तोलाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों

0: के साथ साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तोलाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित

0: सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
1: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
2: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
3: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
2: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा तथा नतालिए ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
4: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमरीका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमरीका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 68 घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत

0: आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं आप सबका, विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
1: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
2: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। NCERT उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैदराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहुं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
1: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
2: तो श्रोताओ लगा कुछ अंदाजा?
1: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओ आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओ इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
2: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
1: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
2: जी,
1: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
2: जी,
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा

0: जाता है।
1: वो क्या?
0: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं,
1: जी।
0: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
0: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
1: जी
0: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
1: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
0: बिमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
0: जी, प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
1: जी
0: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
1: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
0: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IBRS नंबर है, और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: जी,
1: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ।
4: अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए?
3: रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
5: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने,
3: पता है क्यों?
5: क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ

0: है ही नहीं, हम किससे कहे रास्ता दो।
1: अरे ये तो खेल है।
0: अरे अरे ये क्या कर रहे हो, नीचे उतरो गिर जाओगे।
1: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
0: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
1: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
0: अच्छा तो ये बात है।
2: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
3: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्कशास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
2: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
3: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
2: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
3: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ

0: अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
1: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
0: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
2: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया।

0: था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
1: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
2: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है, उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
1: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
1: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता, सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग।

0: Digital. Download Waves OTT app now and watch for free.
1: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के समय स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा आरंभ होगी शाम 4:30 पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। नेहा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार सोनाली जी और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: और क्या हाल चाल है
1: भाई? हाल चाल तो देखिए गर्मी सब जगह है तो गर्मी से हाल बेहाल है। तो हमने एक तरीका निकाला है।
0: कैसा
1: हमने
0: तरीका?
1: सोचा है कि देखिए अगर हम गर्मी में गर्मी की बात ना करें तो गर्मी कम लगती है।
0: अच्छा
1: क्योंकि गर्मी में गर्मी की ही बात करते रहेंगे तो अगर हम अंदर भी बैठे तो ऐसा लगेगा बाहर तो गर्मी है, अब अगर बाहर गए तो गर्मी लगेगी, अब धूप लगेगी, अब लू लगेगी। उसकी बात मत कीजिए, उसके बारे में मत सोचिए, परेशानियों के बारे में मत सोचिए।
0: परेशानियों को हमें बाय बाय कहना है, अलविदा कहना है और अच्छी अच्छी बातें करना है ताकि ये गर्मी से हमें राहत मिल जाए और ठंडक एहसास हो जाए ना।
1: तो ठंडे एहसास के लिए भी हम सखी सहेली भी सुनते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी ऐसे मतलब एक ताजगी का अनुभव मिलता है क्योंकि बहुत सी बातें हमारे साथी भी करते हैं इसमें और हम भी करते हैं, अलग अलग विषय लेकर आते हैं
0: और हमारे साथी इतने सुंदर विचार लिखकर हमें भेजते हैं ना कि सचमुच दिल बाग बाग हो जाता है।
1: और इस खुशबू से हम महक उठते हैं और ऐसा लगता है कि बस ठंड तो कहाँ है, ठंड ही यहाँ है ऐसा लगता है, गर्मी तो कहाँ है,
0: गर्मी है ही नहीं, है ना
1: जी।
0: वैसे आज के जो विषय है घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड, यानी आज के जो युवा है, युवा वर्ग है, उनका ऐसा मानना होता है कि भाई घर का खाना है उस वक्त मम्मी ने अगर घी भी दे दिया या कुछ अच्छी से मिठाई खिला दी तो कहें कि नहीं नहीं मैं तो अभी डाइट पे हूँ, और जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो पिज्जा बर्गर और सब नूडल्स वगैरह खाते हैं। तो घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड वाला ये फंडा उन्होंने अपना लिया है।
1: तो इस पर इनके क्या विचार है हमारे श्रोता वो बातें तो कहेंगे, साथ ही बातें हल्की फुल्की में आज हमारे श्रोता अपने विचार बता सकते हैं। पुराने जमाने के जन्मदिन किस तरह से मनाए जाते थे, उनका कोई जन्मदिन अगर उन्हें याद हो या उन्होंने मनाया हो, तैयारी की हो, तो ये सारी बातें हमसे साझा कर सकते हैं।
0: क्योंकि आजकल जो जन्मदिन मनाते हैं ना नेहा, वो बहुत ही अलग होते हैं। आजकल तो यानी शिशुओं के हर महीने के भी जन्मदिन मनाते हैं, साल भर जन्म, और उसमें अलग भले ही वो शिशु को पता ना हो पर केक लाई जाती है उसे कुछ समझ में आए ना आए पर हम सेलिब्रेट करते हैं। पर वो जो सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे वो कैसे थे और आपके कैसे होते थे जन्मदिन, इस विषय पर आप हमें लिखकर भेजिए
1: जी। और उद्यमी महिला में हम आज याद करने वाले हैं शहनाज हुसैन को, जो हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की उनकी कंपनी रही, उस उन्हें हम याद करने वाले हैं। और मुहावरों की दुनिया में हम कौन से मुहावरे की बात करेंगे आज?
0: घर की मुर्गी दाल बराबर।
1: तो ये वही जंक फूड वाले मामला ही हो गया। हाँ, लग रहा है ऐसा
0: बिल्कुल वैसे ही हो गया है। और जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स की भी बात चलती है तो हम जो

0: चंदन है, तुलसी है, एलोवेरा है, इन्हें हम इग्नोर करके हम जो है ना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं, तो
1: केमिकल
0: उसमें
1: वाला चंदन लेके आते हैं जिसमें सिर्फ चंदन की खुशबू हो
0: और पाउडर ही
1: बस।
0: होता है बस।
1: हाँ जी
0: और साथ ही आज एक खास दिन है, विश्व अस्थमा दिवस है,
1: जी
0: तो उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। पर अब क्या करना है हमें,
1: भी गाने सुनेंगे और क्या करेंगे।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: ये गाना सुनते सुनते ऐसे ठंडी ठंडी वादियों का आनंद आने लगता है, क्योंकि वहां याद आ जाती है ना, जब सीन भी याद आने लगता है कभी कभी गाने का।
1: सचमुच हम नेपाल पहुंच गए
0: हाँ, तो ठंडी
1: थे।
0: ठंडी हवा ऐसे लगने लगी, ऐसा बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आ रहा
1: पर जो जो ठंडी होती है ना नेहा,
0: था।
1: ये जो जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें परेशान करती है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे आज विश्व अस्थमा दिवस है, तो पूरे विश्व में

0: जानकारी देना है ताकि लोग समय रहते इस बीमारी को पहचान सके और उचित इलाज करा सके।
1: जी सोनाली जी, और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो प्रदूषण बढ़ता हुआ, धूल धुआं और जीवन शैली भी जिस तरह से हमारी बदल रही है, उसके कारण भी अस्थमा एक गंभीर समस्या बन जा रहा है, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में ये रोग दिख रहा है और उसे प्रभावित कर रहा है उन्हें। और देखा जाए तो श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है अस्थमा, और व्यक्ति की श्वास नलिका में इसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है। और अस्थमा के रोगी को आमतौर पर बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न सी महसूस होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
0: और कई बार ऐसा होता है कि नेहा मौसम परिवर्तन है, फिर धूल है, फिर धुआं है, तेज गंध, ठंडी हवा या किसी प्रकार के एलर्जी के कारण भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है।
1: हाँ।
0: यदि समय पर उपचार ना मिले तो यह स्थिति गंभीर भी हो सकती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
1: हाँ, क्योंकि वाहन से जुड़े प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या तंबाकू का सेवन, घरों में जो धूल जमा होती है, ये सब इसके मुख्य कारण है जो इसको ट्रिगर करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण अस्थमा की संभावना बढ़ जाती होने की। और अगर आज के दिन की हम बात करें, विश्व अस्थमा दिवस, तो इस दिन पर विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान तो चलाए जाते हैं, कई शिविर लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर जहां मुफ्त जांच की जाती है और अस्थमा से किस तरह से बच सकते हैं ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती है।
0: और इन शिविरों में इनहेलर से कैसे सांस ली जाती है उसका भी उपयोग हमें सिखाया जाता है। और कई बार ऐसा होता कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हें ही अस्थमा होता है, यानी सांस संबंधी बीमारियां होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसके घर में जो मौजूद लोग हैं, बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ धूम्रपान करते तो आप ही को होगा, आपके पूरे परिवार को भी अस्थमा हो सकता है।
1: अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान ये भी हो रहा है क्योंकि वो जो धुआं है वो उनके शरीर में भी जा रहा है और वो ज्यादा खतरनाक भी होता कहते हैं। और इनहेलर वगैरह की जानकारी तो उन्हें दी जाती है, साथ ही अस्थमा से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानियां कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये भी बताया जाता है। जैसे कि धूल और धुएं से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए जिन्हें इस तरह से बीमारी है। घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि धूल ना ज्यादा हो। धूम्रपान से बच सकते हैं और कोई दूसरा अगर धूम्रपान कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं। पर इसके अलावा नियमित व्यायाम कर सकते हैं, योग प्राणायाम जब करते हैं तो फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे हमारा जो अस्थमा की जो रोकथाम है उसमें काफी मदद मिलती है क्योंकि सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। पौष्टिक भोजन अगर हम करते हैं और स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं तो भी बीमारी से बचाव में ये सहायता करते हैं हमारी।
0: और एक ज़रूरी बात है नेहा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांस लेने में तकलीफ हो रही पर हम बस ऐसे कि अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, आप ले लो, पर ऐसे नहीं है, उसे तुरंत हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए कि एक दो बार ठीक है घरेलू इलाज कर लिया तो ठीक है पर इसे इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है कि बुखार भी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है तो ऐसा ना हो कि निमोनिया वगैरह हो सकता है या और भी गंभीर रूप की बीमारी हो सकती है, तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कई लोग उचित सावधानी और उपचार के साथ सामान्य जीवन भी जीते हैं, अगर उन्होंने टाइम पे उपचार ले लिया ना तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसलिए अस्थमा जो है डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है।
1: ये तो आज के दिन का यही तो संदेश भी है सोनाली जी कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, प्रदूषण कम करें और अपनी सही जीवन शैली को अपनाएंगे तो अस्थमा जैसी बीमारी पर काफी हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जागरूकता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है। और अगर जो जो चीजें अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह से बच सकते हैं और आराम से रह सकते हैं उसके साथ भी।
0: एक हमारे साथी ने भी लिखा है इस विषय में कि अस्थमा जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह के सभी श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे हैं कि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी असर देखने को आता है। इसके रोकथाम, उपचार और सचेत रहने के लिए आज का दिन अर्थात ये दिन मनाया जाता है। तो यानी कि अगर हमें जान लेना चाहिए कि अगर आपके घर में दादाजी वगैरह को, दादी को, नाना नानी को अगर किसी को अस्थमा है तो हमें समय रहते उपचार लेना चाहिए, ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और अभी हमें वक्त जाया नहीं करना है क्योंकि वक्त हो चुका है एक
1: अंतराल का।

0: तो जब अच्छे अच्छे गीत सब सुनाई देते ना, तो ऐसा लगता है कि बस खो जाओ थोड़ी देर तक। लेकिन खो जाएंगे अगर, तो अपना लक्ष्य कैसे पाएंगे? सुना लीजिए हम।
1: हमें अपने लक्ष्य की ओर जागरूक होकर ध्यान रखना चाहिए नेहा। अब ये गाने जो है ना, ये घर में सुनते हैं तो मजा आता है कि भाई बैठे बैठे आग लग गई तो ठीक है, पर यहाँ हमारा लक्ष्य बिल्कुल
0: आंखों पर, अपने अपना लक्ष्य बिल्कुल लक्ष्य पे हमारी नजर होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम।
1: और ऐसी कुछ महिलाएं भी हुई जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य में उन्हें अपार सफलता भी मिली, और आज उनकी मेहनत के कारण इतना उसका फल इतना अच्छा है कि हम भी उनके प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं।
0: हाँ, और उन्हें याद करते हैं उनके काम के लिए। हो सकता है इसकी इसमें कितनी स्ट्रगल रहती है, कितना कुछ उन्हें करना पड़ता है इस सफलता को पाने के लिए, और इसके लिए ही हम उनके याद करते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ ऐसे ही सफल नहीं हो गई हैं, उसके पीछे कितना कुछ उन्हें करना पड़ा। तो आज हम याद करें शहनाज हुसैन को।
1: और भारत में उद्योग जगत में महिलाओं की सफलता की जब भी चर्चा होती है तब शहनाज

0: सुसेन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने सौंदर्य और हर्बल उद्योग में ऐसी पहचान बनाई जिससे भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया था। और उनका जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और रचनात्मक स्वभाव की थी। उनकी शिक्षा अच्छे वातावरण में हुई, कम आयु में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उस समय महिलाओं का व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई।
1: और उन्हें सौंदर्य और त्वचा की देखभाल में विशेष रुचि थी और इसी रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटी थेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन जैसे शहरों में सौंदर्य विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया। और जब शहनाज हुसैन ने अपने कार्य की शुरुआत की थी तो उस समय बाजार में ज्यादातर रासायनिक सौंदर्य उत्पादों का बहुत प्रयोग होता था और इनसे त्वचा को तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होता ही था। तो उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति को पहचाना और हर्बल उत्पादों को अपनाने का उन्होंने निर्णय लिया। और ऐसे उत्पाद उन्होंने तैयार किए जिनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता था, जैसे चंदन, हल्दी, गुलाब, एलोवेरा, केसर और विभिन्न जड़ी बूटियां इसमें शामिल थी, जिससे ये जो उत्पाद थे क्योंकि ऐसी चीजें को इस्तेमाल करती थी त्वचा और बालों के लिए काफी अच्छे माने जाते थे। और धीरे धीरे लोगों का विश्वास उनके उत्पादों पर बढ़ने लगा और उन्होंने शहनाज हर्बल्स की स्थापना की।
0: और शहनाज हुसैन ने अपने घर से छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे उनका कार्य बढ़ता गया और उन्होंने शहनाज हर्बल्स नामक कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बन चुकी है। उनकी कंपनी ने भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और एशिया के अनेक देशों में भी अपनी पहचान बनाई है। और उनके सौंदर्य केंद्र और उत्पाद विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। एक भारतीय महिला ने आयुर्वेदिक सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। ये महिलाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात है। और शहनाज हुसैन ने केवल अपना व्यवसाय ही नहीं बढ़ाया बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया।
1: बिल्कुल, तो कई बार ऐसा हम कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसी तरह से अगर एक महिला सफल हुई तो अपने साथ कई महिलाओं को सफल होने का मौका भी देती है और साथ ही उनकी ओर देखकर भी बहुत सी महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं। तो उन्होंने महिलाओं को ब्यूटी और वेलनेस प्रशिक्षण दिया, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी और बहुत सी महिलाएं आज भी उनके प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेकर सफल व्यवसाय चला रही हैं। और महिलाओं को उन्होंने यही संदेश दिया कि घर तक सीमित ना रहो और अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है आपकी, उसको पहचानो। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सफल हो गई और ये सारी चीजें कर रही हम कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई संघर्ष तो होता ही है। तो उन्होंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआत में लोगों को हर्बल उत्पादों पे उतना भरोसा नहीं हुआ करता था, कहते थे कि भाई पता नहीं कैसा रहेगा। आर्थिक चुनौतियां भी उनके सामने थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर हर चुनौती को उन्होंने पार किया। फिर धीरे धीरे उनका नाम सफल महिला उद्यमी की ओर बढ़ता गया, प्रसिद्ध होती गई। और कई महत्वपूर्ण गुण थे उनके, जैसे कि आत्मविश्वास
0: और कठिन परिश्रम, नई सोच, आयुर्वेद पर विश्वास, ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त तो उन्हें विश्व के कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उनकी उपलब्धियां जब हम देख
0: विश्व के कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उनकी उपलब्धियां जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ही भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को नई पहचान दी और रासायनिक उत्पादों की बजाय इन उत्पादों को अपनाएं और इसके लिए प्रेरित भी किया। और अब देखा जाए तो हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद कितने बढ़ रहे हैं और लोकप्रियता बढ़ाने वाली कौन है? शहनाज हुसैन जी।
0: तो उन्हें हम याद करते हैं और हम भी अपनी सखियों सहेलियों को कहेंगे कि इन सब जो महिलाओं की जब हम बातें करते हैं तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी अगर मन में कुछ इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और अब गाना सुनना चाहिए।
1: हाँ, मन में इच्छा तो हो गई है,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो ऐसे गोरी गोरी बातें कर रहे थे हम।
1: गोरे होने की
0: हाँ,
1: बातें.
0: लेकिन कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि देखिए, रंग जिसको जैसे जो मिलता हो उस रंग को अगर अपनाया जाए तो कितना अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा मन में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट अपनाए जाए जो त्वचा की जैसे नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं।
1: यानी कि अगर
0: या
1: सर्दियों का मौसम है तो
0: हाँ
1: हमारी मॉइस्चराइजर, ये घर के भी इस्तेमाल कर सकते
0: हाँ
1: हैं कि हम अगर दूध की मलाई को थोड़ा सा लगा लें, और कुछ लोग रात को अपना घी लगा लेते हैं, उससे भी
0: जी
1: सॉफ्ट हो जाती है स्किन. और बहुत सारी महिलाओं को है ना, जो हमें नहीं मिला होता उसका गम होता है कि भाई
0: हाँ
1: हमारा रंग तो सांवला है, तो क्या हुआ, सांवले रंग के लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं. एक अगर हम अच्छे से रहे, एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, तो कोई भी रंग रंग कोई मायने ही नहीं रखता है, हमारा व्यक्तित्व मायने रखता है.
0: अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम हैं उस तरह से अगर हम खुद को अपना लें, कि जैसा जो चीजें नहीं बदली जा सकती उसको अगर उस तरह से अपना लिया जाए, और उसके बाद अपने व्यक्तित्व में हम काफी काफी बदलाव ला सकते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, तो वहां तो हम अच्छे की ओर जाते जाएं। लेकिन जो जैसे त्वचा है, त्वचा का कोई रंग हो या कुछ, मान लीजिए कि कभी किसी के मुंह से ज्यादा

0: निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते हैं, तो वो अब उसकी त्वचा तो अच्छी है, वो क्यों नहीं निकल रहे हैं इसके मुंह से, तो इस तरीके की चीजें ना सोचकर अपने आप को अपना लेना चाहिए ना,
1: और अब हमें ब्रेक
0: ब्रेक
1: लेना
0: ले
1: है
0: लेना चाहिए
1: तो लेते हैं ब्रेक
0: जी।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली,
1: सहेली।
0: और हमारे श्रोताओं के हैं बहुत सारे कमेंट्स। तो जो मुहावरों की दुनिया, इसमें जो हमने लिया है मुहावरा, घर की मुर्गी
1: दाल
0: दाल
1: बराबर।
0: बराबर।
1: तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, ये हमारे साथियों ने भी लिख भेजा है, बहुत से कमेंट्स उन्होंने भेजे हैं और सारी चीजें बता दी हैं उन्होंने कि क्या क्या अर्थ होता है।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं नेहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर आपको कितना भी मान सम्मान मिले पर घर में कोई इज्जत नहीं मिले तभी कहावत कही जा सकती है। अक्सर
1: हाँ
0: सबके घर में पति देव का यही हाल होता है, मुझको छोड़कर। आपने देखिए कितना सेफ गेम खेला है
1: हाँ
0: ना।
1: क्योंकि कमेंट्स है ना, बाहर ही कमेंट सारा।
0: हाँ तो अगर ऐसा
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने ही आदमी की कद्र ना होना। जब कोई मूल्यवान चीज या व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है तो हम उसे साधारण या कम महत्व का समझने लगते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमेशा पास में होती है उसकी कीमत कम समझी जाती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर में कितना भी अच्छा हो खाना, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जंक
1: हाँ
0: फूड ही पसंद आता है, ये भी उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर के लिए कहा है। तो बहुत
1: हाँ
0: सारी ऐसी बातें होती है नेहा की, घर की मुर्गी दाल बराबर में ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं,
1: हाँ
0: उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो भी बच्चों को कह लीजिए उनके परिवार वालों को उतनी वैल्यू नहीं होती है उनकी।
1: हाँ
0: बाहर के लोग कहते हैं कि अरे कितना ज्ञान है इन्हें और इनके ज्ञान से हमें फायदा होगा, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि अरे इनके पास क्या है। तो ये कहावत हमारे सभी के लिए ये
1: हाँ
0: लागू होती है, तो हमें अपनों को भी महत्व देना चाहिए। अब
1: बिल्कुल
0: जैसे हमने प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो हमारे पास में घर में इतना खजाना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, पर भी हम जो है ना बाहर के प्रोडक्ट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें कलर और फिर पैकिंग उनकी ज़बरदस्त होती है और उसमें खुशबू जो अलग सी आती
1: नकली
0: है,
1: वाली।
0: तो उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं और हम अपनी चीज़ें जो अपने पास में है उन्हें
1: हाँ
0: हम इग्नोर कर बैठते हैं।
1: वही
0: तो
1: चीज़ जैसे हमने अभी भी कहा था कि हम अपने पास जो चीज़ें हैं उसको नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हम ऐसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, सामने वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है वही सामने वाला हमारी उन चीज़ों को देखकर वैसा ही सोच रहा हो कि इसके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कि इसके चेहरे की बनावट अच्छी। जैसे हम किसी का रंग देखकर सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा हो देखकर हमें कि इसके चेहरे की बनावट कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्या एक दूसरे की चीज़ों को देखते रहना और अपने पास जो चीज़ें हैं उसका महत्व ना समझना ही इस मुहावरे को बिल्कुल सार्थक कहता करता है कह सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई इस मुहावरे का मूल मतलब है कि घर के लोगों की कोई कीमत नहीं, इस कारण ही से ही लोक में इस मुहावरे का चलन है। ये सच भी है क्योंकि घर के लोगों से लोग सुपरिचित होते हैं जबकि बाहर के लोगों की कद्र करते हुए अच्छा खासा भाव देते हैं। इस दृष्टिकोण से घर के लोगों में स्वयं के प्रति हीन भावना भी पनप सकती है, इसके ज्ञान से अनभिज्ञ लोग ही ऐसा करते हैं।
0: तो कई बार ऐसे होता है ना कि नेहा के अपने घर में जो बच्चे हैं उनमें अगर कुछ कला है, उनमें अगर कुछ
1: हाँ
0: प्रतिभा है, तो हम उनकी तरफ अनदेखा कर देते हैं, और सामने हम टीवी में बैठे हैं कोई बच्चे गा रहे हैं तो हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, देखो कितना अच्छा गा रहा है। अगर
1: हाँ
0: हमारे बच्चे जो हैं उनमें अगर वो कला है, वो अच्छे से गा रहे हैं या बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे नृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें अगर हम सजाएं संवारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो वो
1: हाँ
0: भी उन्हीं की तरह नाम कमा सकते
1: तो
0: हैं।
1: कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने कहा होता है कि हम ये सीख लें या हम ये करना चाहते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं, और फिर सामने जब टीवी पे आप जैसे कह रहे हैं कुछ चलता रहता है तो हम कहते हैं देखो ये

0: छोटा सा बच्चा तुम्हारी
1: कितना
0: उम्र का है,
1: अच्छा गा
0: कितना अच्छा गा रहा है। तो
1: रहा
0: अब उसने, बच्चे ने भी शायद कभी बोला हो कि मुझे गाना सीखना है, तो हमने उसे डांट के कह दिया कि तुम पढ़ाई करो।
1: चुपचाप
0: तो
1: बैठ जाओ
0: हाँ,
1: पढ़ने।
0: लेकिन हम तारीफ उसकी कर रहे हैं, तो वो भी हीन भावना होती कि हमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, साथ में नहीं बढ़ने मिल रहा है। हमारे एक
1: यानी
0: साथी ने भी तो ऐसे ही कुछ कहा है, वो
1: हाँ
0: कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते, दुखती रग पर हमारे हाथ रख दिया, ऐसा वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते हैं जो मैं धर्मपत्नी और बच्चों को बताकर सावधान करता हूँ, जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के विषय में हो, उस समय तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकाल देते हैं। वहीं साइबर क्राइम की कोई घटना किसी न्यूज़पेपर में छपी हो या सखी सहेली प्रोग्राम में बताई जाए तो सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी बड़े ध्यान से बच्चों को समझाती है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इसके विषय में तो मैंने पहले ही सबको सावधान किया था पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बताइए, हमारी शिकायत हमसे ही हो रही है यहाँ तो
1: हमें ही घर की मुर्गी दाल बराबर बना
0: हाँ,
1: दिया।
0: हम तो रोज आते भी, हम लोग घर के ही हैं,
1: हाँ
0: हम तो कोई ऐसा आप हमसे इस तरह से मतलब कहना नहीं चाहिए हम लोगों
1: एक साथी ने लिखा है, घर का बना भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट हो, कम पैसों में बना हो, तो भी घर का ही है। वहीं बाहर का भोजन बहुत अच्छा होता है, 10 या 20 रुपए की रोटी जो है
0: को
1: वो, और 250 का सूप, महंगी सब्जी हमें अच्छी लगती है
0: हाँ,
1: ना।
0: स्वाद बढ़ जाता है। और हमारे को साथी लिख रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं तो नए नए बर्तन बाहर आते हैं, नई थालियां, नई चमकते चम्मच, कांच के गिलास, जब मेहमान आते हैं तभी ये सब देखने को मिलता है, बाकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो इससे तो हम भी सहमत हैं कि वो सारी चीजें तो बस रखी ही मेहमानों के लिए जाती
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो फिर इंतजार करती है गृहिणी कि कब मेहमान आएंगे, तब ये नई वाली क्रॉकरी निकालेंगे।
0: अब ऐसा लगा गृहिणियों से ज्यादा तो घर के लोग
1: सखा
0: उसका ध्यान रखते हैं कि कब ऐसा हो कि कोई तो आए तो ये थाली, इन थालियों में हमें भी खाने मिले, है ना।
1: पर अब गाना सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

कल तो हम और थे, आज हम और हैं, क्या से क्या हो गया काबिले गौर है। कल तो हम और थे, आज हम और हैं, क्या से क्या हो गया काबिले गौर है। ये वतन भी मेरा मेहरबान हो गया, ये वतन भी मेरा मेहरबान हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।

माजरा हर सनम है फिदा बन गई दोस्ती दुश्मनों की अदा क्या गम माजरा हर सनम।

0: और घर की मुर्गी दाल बराबर जब बात हो रही है, तो क्यों ना बात हो जाए घर पर डाइट फूड और बाहर के जंक फूड की।
1: ऐसा ही होता है ना, जब
0: हाँ
1: मम्मी कहती है कि भाई लड्डू खा के जाओ या फिर कुछ अच्छी मिठाई बनाई खा के जाओ, तो बच्चे
0: हाँ
1: कहते कि भाई नहीं, हम डाइटिंग पे हैं, हम नहीं खाएंगे, कितना घी डाला है उसमें और
0: हाँ
1: कितना सारा बटर डाला है, कितना सारा उसमें शक्कर या गुड़ डाला है, तो हम नहीं खाएंगे। और फिर बस घर में बस हम उबला हुआ खाएंगे, उबला हुआ उबली हुई सब्जी खाएंगे,
0: हाँ
1: उबला हुआ खाना खाएंगे, और थोड़ी देर बाद नहीं देखते हैं कि फोटो आ रहे हैं कि दोस्तों के संग बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये
0: कोल्ड्रिंक्स पी
1: घर
0: रहे
1: घर की कहानी
0: हैं। हाँ घर की कहानी तो होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बाहर ही खा लेंगे,
1: हाँ
0: अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपने टिफिन दे दिया तो फिर बहुत ही बड़ा ऐसा मजाल आपके टिफिन को लेके जाता है हाथ से। तो स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत जागरूक हो गए हैं वैसे तो हम लोग, और कहते हैं कि कम तेल घी का घर में जो भोजन बनता है, हल्का भोजन बनता है, ऐसे ही बनाना चाहिए। अरे आप कितना तेल डालती हैं, कितना घी डालते हैं घर में खाने में, ऐसा हम बोलते हैं, जबकि घी अच्छा होता है खाने के लिए।
1: पर वो बच्चों को ऐसा
0: हाँ
1: लगता है ना कि घी से हमारा वजन बढ़
0: मोटे हो
1: जाएगा।
0: जाएंगे, हाँ
1: हाँ
0: बर्गर से वो पतले होते जाते हैं। तो वो कहते हैं कि फिटनेस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, अब आज से हम एक ही रोटी खाएंगे, दूसरी रोटी नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन फिर बाहर जाते हैं तो फिर वो सारी बातें, क्योंकि एक दिन पिज्जा
1: हाँ,
0: खाने वाले, जो
1: यानी
0: कि वो
1: उस
0: पूरा
1: दिन,
0: एक हफ्ते का
1: हाँ
0: सबसे
1: हाँ
0: निक्की नक्की हो जाता
1: यानी
0: सारी
1: हम
0: चीजें।
1: एक दिन सिर्फ वो चीटिंग करते हैं कि
0: हाँ
1: एक दिन हम बाहर का खा लेंगे, पर फिर बाकी दिन हम घर का नहीं खाएंगे, जबकि मम्मी का प्यार दुलार भी होता है उसमें,
0: हाँ
1: आत्मीयता होती है, और जो पराठे बनाती है तो मम्मी के हाथ के, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है
0: हाँ
1: कि उसे ढककर रखा जाता है, साफ हाथ धोकर बनाया जाता है, पर वही फिर से घर की
0: और
1: मुर्गी दाल।
0: पसंद का भी तो ख्याल रखा जाता है कि भाई
1: हाँ
0: जिसको जो पसंद है वो
1: हाँ
0: सब्जी बनती है, जिसको जो पसंद है वैसी रोटी बनती है, किसी को तिकोना पराठा पसंद है, किसी को चौकोर पराठा पसंद है, तो उसके हिसाब से। अच्छा ये साइज भी बदलते हैं, शेप भी
1: हाँ
0: बदलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बस वही है कि नहीं, आकर्षक पैकिंग में जब बाहर का खाना मिलता है, स्वाद अच्छा लग रहा है, फैशन भी होता है ये सब चीजें, कि अगर अरे तुम तो घर का ही खाना खाते हो, इस तरह से अगर बोल दिया जाता है, तो वो एक फैशन के साथ में जाने के लिए भी बाहर का खाना खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: और है ना, क्या होता है कि घर का खाना जब हम डब्बे में डाल के देते हैं तो कुछ समय में ठंडा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, ठंडा हो
0: हाँ
1: जाता है, पर बच्चों को वही लगता है कि वो गरम गरम खाना है तो स्वाद में थोड़ा सा अच्छा रहेगा,
0: हाँ
1: पर उसके पीछे जो है कितनी सारी माओं की मेहनत होती है, और फिर उसमें ये बात है ना कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो बाहर
0: हाँ
1: घर में हम कहेंगे कि हमें मैदा नहीं खाना है, और बाहर जाके हम मैदा मैदे की बनी रोटी खा लेते हैं, और ना
0: हाँ
1: जाने ऐसी कितनी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
0: बिल्कुल। और आमतौर पर अगर हम देखें तो घर में जो खाने बनते हैं सिर्फ एक ही तरह का नहीं बनता, पारंपरिक भोजन बनता है, और कई बार ऐसा होता है अलग अलग मौसम के हिसाब से, त्योहार होते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से, कि गर्मी है तो ये चीज़ तो बनेगी ही बनेगी, आम पना बनेगा, आम का रस बनेगा, या ठंडी हो गई तो ये गुड़ वाली चीज़ें बनेंगी,
1: गोंद के लड्डू
0: हाँ
1: बनेंगे।
0: लड्डू बनेंगे, तो इस तरह से जो वो होता है ना, क्योंकि वो मौसम को ध्यान में रखकर परंपरा हमारी इस तरह की रही है,
1: यानी हमारे
0: तो
1: शरीरत को,
0: हाँ
1: शरीर को जितनी जैसी जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से वो डिजाइन किए गए हैं,
0: हाँ
1: है ना, कि उस त्योहार से जुड़ी हुई कितनी सारी, यानी सांस्कृतिक महत्व भी है उसका, कि वो फसल उगती है नई नई तो
0: हाँ
1: हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है, तो उससे बनाए हुए व्यंजन हमें खिलाए जाते
0: खाने
1: हैं,
0: चाहिए।
1: बनाए जाते हैं।
0: हाँ तो अगर हम घर का भोजन खाएं तो ये सारी चीजें भी मिलती है, बाहर तो सारी चीजें एक ही मिल रही है, हमेशा वो मिल रही है, आप जब चाहें वहां जाके लड्डू खा सकते हैं, आप जब चाहें वहां जाके कुछ भी खा सकते हैं, गर्मियों का भोजन आप सर्दी में खा सकते हैं, सर्दी का गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि पैकेट बंद आपको आम का रस 12 महीने मिल सकता है, लेकिन वो
1: हाँ,
0: रस तो नहीं है ना
1: फ्रोजन होता
0: उसमें।
1: है वो। हाँ,
0: हाँ
1: और फिर उसमें जो विटामिन जो है वो तो नष्ट हो ही जाते हैं,
0: हाँ
1: साथ में उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते,
0: जी
1: पर हम ये हाथ कह के हाथ ऊपर कर देते कि नहीं भाई, हम बहुत तेल घी वाला खाना नहीं खाएंगे, हम तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, पर हम बाहर
0: सिर्फ समोसे खाएंगे बाहर। वो कई बार बेक्ड समोसा बोल के भी खाते हैं कई बार, बट रहता वो मैदा ही बेक्ड होता है।
1: और उसमें इतना सारा मोयन डला होता है, क्योंकि मैदे को अगर बेक भी करेंगे तो उसको जो कुरकुरा बनाने के लिए उसमें अगर मोयन ना डला होगा तो
0: जी
1: वो ऐसा कुरकुरा या स्वादिष्ट बनेगा ही नहीं।
0: तो ये कह सकते हैं कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे या बड़े जो भी हैं, जिन्हें भी ये शौक है कि घर पे डाइट कर

0: बैठते हैं और बाहर जाते ही साथ वो तुरंत वो अपनी सारी डाइट को भूल जाते हैं, एक दिन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पूरा एक दिन आपका पूरा एक हफ्ता की डाइट जो है बराबर कर देता है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखें, और घर में भी जो खाना दे रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्यों ये बाहर का खाना ज्यादा खाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा उसको आकर्षक ढंग से परोस सकते हैं, ऐसे नहीं कि बस ये कटोरी में दाल दलिया और ये, तो अगर थोड़ा सा सजा कर दे दें तो उन्हें अच्छा लगेगा शायद, हो सकता है इस वजह से। और अगर साथ में बैठकर हम खाते हैं तो भी एक अलग सा एहसास होता है। तो इस तरह से कुछ चीजों में हम भी बदलाव कर सकते हैं, घर की चीजों में, देने के तरीके में, या उनकी पसंद की चीजें तो खैर बनती ही है, तो वो सारी चीजें अगर
1: यानी
0: हम
1: उसे भी
0: बदलेंगे।
1: आकर्षक बना के अगर
0: हाँ
1: परोसे ना तो बच्चे वो भी शौक से खा लेते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: तो दोनों तरफ ही सुधार की जरूरत है।
1: और अब गाना सुन ले,
0: हाँ
1: सुनते हैं गीत।

0: और हमें इंतजार रहता है अपने जन्मदिन का, ताकि कितनी अच्छी तरह से हम अपने जन्मदिन को मनाएं और बड़े आराम से रहें अपने जन्मदिन में, कुछ ना कुछ करते ही हैं सब।
1: पर पुराने जमाने का जन्मदिन वो बिल्कुल भी ऐसा एकदम यानी आज की चकाचौंध वाला नहीं हुआ करता था,
0: हाँ
1: बिल्कुल सादगी से मनाते थे। और मुझे तो याद है नेहा कि मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा तो कि सभी लोगों के जन्मदिन ऐसे त्योहार के दिन कैसे आते, किसी का
0: हाँ
1: होली पे, किसी का दिवाली पे, किसी का राखी।

0: पे तो हमारी मम्मी कहती थी कि जब उस त्योहार के आसपास जब आते थे तो उसी दिन सेलिब्रेट कर देते थे।
1: तो एक साथ हो जाती है, मिठाइयां बन जाती हैं एक साथ,
0: हाँ,
1: ज्यादा मिठाइयां बन जाती होंगी।
0: तो इस तरह से सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुराने जमाने के जन्मदिन हल्की फुल्की बातें, पुराने जमाने के जन्मदिन पर अक्सर क्या हुआ करता था, आज जब हम अक्सर केक लाते थे तो उस समय लोगों को प्लेट में रखकर खिलाया करते थे, कोई समोसा खिला दिया तो किसी ने ढोकला खिला दिया,
1: हाँ
0: पार्टी की जगह ऐसे ही अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दिया करते थे। उसका जो मजा होता था बहुत अच्छा होता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, कुछ दोस्त आ जाते थे, हमें कुछ 5 5 10 रुपए वाले जो गेम या टॉयज आते थे वे
1: हाँ
0: दिया करते थे, बहुत मजा आता था, सब मिलकर एक साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे। खास जो बच्चे होते हैं वे, यानी उन्होंने वही लिखा है कि उपहार 5 10 रुपए के उपहार में भी हम खुश हो जाते थे
1: बिल्कुल। हमारे
0: छोटे।
1: एक और साथी लिखते हैं कि पुराने जमाने में जन्मदिन मनाने का उद्देश्य यही था कि बुजुर्ग व्यक्तियों को परिवार में आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा हमेशा ऊंची रहे। इस कारण पिताजी या दादाजी का जन्मदिन बेटे पोते मनाया करते थे। खाना भी अच्छा होता था, खीर हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। पर आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। खान पान भोजन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन केक जरूर आते हैं, पर मैं खुद कभी भी नहीं खाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के हाईटेक और भव्य समारोहों से बिल्कुल अलग सादगी और अपनत्व से भरे होते थे। उन दिनों जन्मदिन मनाना एक सादगीपूर्ण उत्सव था, जहां महंगे गिफ्ट से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता था। यहाँ पुराने दिनों के जन्मदिनों की हल्की फुल्की यादें हैं कि नया कपड़ा, सादगी से सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए, फिर उसके बाद में फिर मंदिर या गुरुद्वारे में माथे टेकना, जन्मदिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती थी, उसके बाद आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाती थी, स्कूल में टॉफी देने का दौर था, फ्रॉक या शर्ट पहनकर जाना, पूरी कक्षा में जो है उन्होंने टॉफियों के नाम लिखे थे, टॉफियां देते थे, और घर का बना केक माँ अपने हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी टूटी फ्रूटी डालकर सजाकर बनाई जाती थी, और फिर गुब्बारे में फुलाकर गुब्बारे से फुलाए जाते थे और गेम खिलाए जाते। शोर शराबा, म्यूजिकल चेयर, पासिंग द पार्सल जैसे पारंपरिक खेल, जहाँ बच्चों की हंसी और शोर पूरे घर से गूंजता था, और गिफ्ट की सादगी उपहार में किताबें, कलर बॉक्स और हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे, जिन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था।
1: और एक और साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन की भारतीय संस्कृति में कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जन्मदिन देवों के मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, और स्वयं के अहंकार के चलते पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में ये मनाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। इसके चलते कई उद्योग पनप गए हैं। एक और साथी कहते हैं कि हमारे जमाने में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, लड़कों का खूब जन्मदिन मनता था। विधि विधान पूजा पाठ करते थे, गुलगुले बनते थे, पड़ोसी महिलाएं और परिवार के लोगों को बुलाकर खान पान होता था, गुलगुले बांटे जाते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में केक काटने का चलन नहीं था, सादगी और अपनेपन से मनाते थे। माता पिता बच्चों को सुबह सुबह आशीर्वाद देते, माथे पे तिलक लगाते, मिठाई खिलाकर शुभकामना देते, और जिसका जन्मदिन होता सबसे पहले सभी बड़े लोगों को शीश नवाकर प्रणाम करता और नए कपड़े पहनता। घर में खीर पूड़ी या बच्चे के पसंद का कुछ भोजन बनता, अन्य सभी छोटे बच्चों को भोजन करवाया जाता और हंसी खुशी का माहौल परिवार में रहता है। समय दिखावा कम और संस्कार अधिक होते थे। बड़ों का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और छोटे छोटे पलों की खुशी ही जन्मदिन की सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी घर पर ही उनके पसंद का खाना बनाकर उनके दोस्तों के साथ मनाते थे, उनके मित्र भी वैसे ही थे। आज अब बड़े होने पर भी हमारे घर यही क्रम है, वे इसी बहाने हमारे शहर में आते हैं तो फोन पर बातचीत नहीं आते हैं तो फोन पर बातचीत करके बधाई तो हम दे ही देते हैं।
1: हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहन के बड़ों के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, मंदिर जाते थे, स्कूल में सभी को छोटी चॉकलेट बांटते थे, लेकिन इनका जन्मदिन आता था 31 मई को वेकेशन में, तो ये सबकी चॉकलेट खा जाते थे, किसी को नहीं देते थे, तो इनका जन्मदिन खास हो जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि माँ जो है ना खीर पूरी बनाई जाती थी, उसका मुख्य आकर्षण रहता था, मेहमानों का तांता लग जाता था, पड़ोस के बच्चे रिश्तेदार सुबह से ही बधाई देने आते थे बिना किसी गिफ्ट के, मासूमियत भरी थी, दोस्तों से मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट, लिपस्टिक, चॉकलेट या इडली स्टिक की खुशबू होती थी, और बहुत सारे पार्टी गेम्स भी खेलते थे, म्यूजिकल चेयर वगैरह, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं।
1: और एक साथी कह रहे हैं कि फोटो खींचने के लिए रील वाला कैमरा होता था, जिसकी फोटो डेवलप होकर कई दिन के बाद आती थी, लेकिन वो पल अनमोल होते थे। ड्रेस कोड तो कुछ होता नहीं था, नई ड्रेस पहनने का उत्साह होता था, जो अक्सर पूरे साल के लिए खास होती थी। पुराने दिनों के जन्मदिन में दिखावा कम, अपनापन ज्यादा था। आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में भले ही सेलिब्रेशन शानदार हो गए हों, लेकिन वो पुरानी सादगी और दिल से दी गई दुआएं अब कम ही मिलती है।
0: तो पुराने वो दिन हमें याद करके बहुत सुकून मिलता है, और एक गाना सुन के भी हमें सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आधी रात तो नहीं हुई है, लेकिन जाने का समय जरूर हो गया है।
1: तो लेते हैं इजाजत आप सभी को, सोनाली पाठक
0: और नेहा शर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और इन सबसे पीछे छिपे हुए एक बहुत ही भोली और बहुत ही समझदार शख्सियत के मालिक मनोज कुमार, जिनका फिल्मी करियर लगभग 4.5 दशक पुराना है और आज भी मनोज कुमार जी के विचार, उनकी सोच इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस आज के युवा के प्रति उतने ही मायने रखती है जितने की उनकी फिल्में। उन्होंने हमेशा ही एक सोच समझ के एक दायरे को बांधते हुए फिल्में तैयार की हैं और एक अलग ही सोच उनकी फिल्मों से झलकती रही है। मनोज कुमार जी का सफ़र कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी फिल्मी इनिंग कैसी रही और आज वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया को लेते हैं, देश को लेते हैं, समाज को लेते हैं और इंसानियत को लेते हैं, सारा कुछ हम उनकी ज़बानी जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जी, सेल्यूलॉइड के सितारे में आपका स्वागत है।
2: रविराज जी, आपने मेरी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा कर दी है।
1: मैं तो प्रशंसा ही नहीं कर सका, जिस तरीके का दौर आपने जिया है, जिस तरीके की सोच आपने दी है, जिस तरीके की समझ आपने समाज को दी है,
2: उस भूतकाल की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या किया उसको नहीं देखना चाहता, मैं आज में जीना चाहता हूँ।
1: क्या बात है,
2: खास कोई बात शुरू करनी हो
1: तो हमारे श्रोता एक वाक्य से समझ गए होंगे कि आज उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है और क्या देने वाले हैं इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। मनोज जी, हम तो शुरुआत करते हैं उस हरि को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मनोज कुमार में घूम गया है।
2: उस हरि कृष्ण को मैं भी मिस करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। आपने कहा कि बचपन से लेके अब तक का सफ़र, तो ये जो सफ़र है ये एक गठड़ी है, एक पोटली है जिसमें दुख सुख हैं, उसको ना ही खोला जाए तो अच्छा है।
1: आज आपको खोलना होगा हमारे श्रोताओं के खातिर और हम आपके चाहने वालों के खातिर जो कि जानना चाहते हैं मनोज कुमार को और ज़्यादा और ज़्यादा।
2: उस व्यक्ति का बचपन क्या होगा जिसकी उम्र में 10 साल में पार्टीशन हो गई, लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गए, तो 10 साल की उम्र में जिस पे ये बात बीत जाए आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादा भावुक हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख दर्द होंगे। तो उस पोटली को के दुख ना याद करते हुए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का जो सफ़र अब तक बहुत अच्छा गुजरा। कभी सोचा नहीं था कि प्रभु इतनी कृपा करेंगे। मुझे बचपन में फिल्में देखना का शौक़ था, सभी को है और सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे एक न्योता आया, मैं बम्बई आ गया। फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल हुई। मेरी पहली अपीयरेंस जो है पर्दे पे वो एक 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे की थी। मैंने एक एक्स्ट्रा से शुरू किया, वो फिल्म फैशन थी। तो हरि कृष्ण से मनोज कुमार बनने में बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी।
1: अच्छा, बचपन कैसा रहा बताइए, कि वो जो 9 साल 10 साल के जो पहले के दिन थे, जब पार्टीशन के पहले के उन दिनों, आप किस तरीके से अपनी शरारतें वगैरह अगर हरि के पास थी तो किस तरीके की शरारतें हुआ करती थी, या कितना संजीदा था हरि?
2: संजीदा इतना लाहौर में नहीं था जितना दिल्ली आके हो गया था। मैं जो हालात गुजरे उस वक्त परिवार पे, तो उससे कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया। तो जिसका आउटलेट मुझे मिला स्पोर्ट्स में, मैं हॉकी और क्रिकेट अच्छे लेवल पे दिल्ली में खेल लेता था। जब शौक आया कि एक्टर बनना है, बम्बई जाना है, तो 1956 में जब बम्बई आया तो 2 सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। उसके बाद प्रभु ने इतना दिया, मैं उसको बोनस समझता हूँ। इसीलिए मैंने, जबकि मेरी उम्र नहीं थी, लोग डराते थे कि डायरेक्शन में मत जाओ,

देखो राज कपूर सभी नहीं बन सकते, प्रेमनाथ जी का क्या हाल हुआ, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर का जो हरि कृष्ण था वो उसमें बड़े वलवले थे। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, अब इस माध्यम से मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, धर्म के प्रति जो दे सकूँ फिल्मों के द्वारा वो दूँ। तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, पता नहीं कौन कौन सा टर बन गया, मुझे तो इतना ही याद है। बाकी मेरी फिल्में शुरू में चली नहीं थी। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शशि, इसको मैं शादी से पहले जानता था, हमारा लव मैरिज भी कह सकते हैं आप। से जब 3 लाख रुपए हो गए तो शादी भी कर ली, और शादी के बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता, और ये मेरे जीवन की पहली सफल फिल्म और सिल्वर जुबली फिल्म थी।

जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को विस्तार पूर्वक बताएं, ख़ास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने

0: मनोज जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को विस्तार पूर्वक बताएं, ख़ास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने तय किया कि हाँ, मुझे फिल्मों में ही अपना भविष्य ढूंढना है।
1: देखिए, मैंने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म देखी थी जुगनू, उसमें नूरजहां और दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब का नाम उसमें शायद सूरज था। उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, घर आ गए। फिर कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मेरे मामू मुझे मैजिस्टिक टॉकीज दिल्ली में फिल्मिस्तान की शहीद फिल्म देखने ले गए। तो जब बाहर पोस्टर देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मामा ये सूरज है। वो कहते ना ये दिलीप कुमार है। मैं कहूँ ये सूरज है वो वाला जो मर गया था। वो बोले नहीं, देख पढ़, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार फिल्म शहीद में। मैंने फिल्म देखी, वो आदमी फिर मर जाता है। तो मैं हैरान परेशान कि एक आदमी दो दो बार कैसे मरता है। वो मेरे चचा का कत्ल हो गया था, तो कुछ मैं कुछ दिन ये सोचता रहा कि शायद वो जिंदा आ जाए ताकि वो भी दूसरी बार मरेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फिल्मों से लगाव जुड़ा, फिर लगा कि माध्यम बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, पारिवारिक व्यवसाय था?
1: रिफ्यूजी कैंप में भी हम जब थे तो सेल्फ सपोर्टिंग कैंप में थे, जिसमें खाना पीना आदमी अपने खुद खरीदता है। एक्चुअली अगर सब कुछ आप कारखाने फैक्ट्रियाँ ज़मीनें छोड़ के आ जाएं तो दिल्ली में आपको कुछ लाल किले का या रामलीला ग्राउंड थोड़ी दे देगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: भूखे नंग भी नहीं थे, गुजर अच्छी थी।
0: जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कोई गीत याद करें?
1: गीत तो जी पहले ही वो गीत हम गाया करते थे जुगनू देखने से पहले, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।

0: मनोज जी, आपने बताया अपने बचपन के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही और स्कूल में जब आप जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था और दिलीप कुमार को पर्दे पर मरते हुए देखा और उसके बाद आप में एक कलाकार तैयार होना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है।
1: चूंकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे तो मेरे पिताजी ने साथ में ही दिल्ली के गांव पड़ता था नांगलोई वहाँ डाल दिया। वहाँ हिंदी माध्यम था तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था तो कुछ चार एक महीने वहाँ पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब्जी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं वहाँ पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूँ, लेकिन मैं कब फेल हुआ कब पास हुआ कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था मैं समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा क्यों भाई क्या मार्क्स आए पेपर कैसा हुआ, ना। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बम्बई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकता है खत में वो लिखा हुआ था, लेकिन चार लास्ट की लाइनें जो है मुझे याद हैं। सन आई हैव फुल फेथ इन माई ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स एंड रिमेंबर सन दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड।
0: क्या बात है।
1: तो यही विश्वास मेरा मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है ब्लंडर नहीं कर सकता, बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्रोन नहीं हो सकते, अगर ड्रोन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते।
0: इतनी अच्छी बात कही आपने। आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको रहा है और आपने जैसे कि बताया कि 1,00,000 रुपए आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते थे, तो अपने भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: जिन दिनों मुझे बम्बई आना था पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफ़ी खस्ता थी। मुझसे एक छोटी बहन थी, दो बहनें और एक भाई, वो भी स्कूल में ही थे कि पंजाब से बटाला शहर से पिताजी के दोस्त आए मिस्टर टकसाली साहब, वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। मैंने उनको कहा

0: मनोज जी, बचपन में जो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी भर रिफ्लेक्ट करता है, कभी माता का प्रभाव होता है, पिता का प्रभाव होता है, या कोई ऐसी शख्सियत होती है आपके आसपास की जिसको आप आगे लेकर चलते हैं पूरी ज़िंदगी ता ज़िंदगी। अपनी माँ के बारे में भी कुछ बताएंगे।
1: बात यह कि मैं ज़्यादातर अपने ननिहाल में रहा, माँ मेरी कुछ बीमार रहती थी ज़्यादा। जो धार्मिक भावनाएँ हैं या जो रुचि पड़ी वो अपनी माँ और अपनी नानी से ली मैंने। बाकी जहाँ तक एक कंट्रोलिंग, एक यूनाइटेड फैमिली रहना, एक डिसिप्लिन पर्सन रहना, वो मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा। क्योंकि 13 अगस्त 1947 के करीब खबर मिली थी कि मेरे चाचा जी का कत्ल कर दिया गया। 25 साल भी एज नहीं थी उनकी।
0: ये विभाजन की त्रासदी
1: जी। और पिताजी नढाल थे, दीवानों से सर मार रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठे, मुझे 6 बजे उठाया, चलो तैयार हो जाओ नहा के। कहाँ, 15 अगस्त 1947 में मुझे मेरे पिताजी लाल किला ले गए और मैंने झंडा दे देखा, मैंने लाल किला भी देखा। मुझे उस वक्त लगा, एक थोड़ी सी सोच ऐसी लगी कि कल तक रात तक मेरे पिताजी का ये हाल था, आज सुबह ये भावना है, ये झंडा, ये आज़ादी, ये इतना कीमती है कि एक आदमी अपने

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युवानी।

0: मूर्ख मारे लठ से ऊपर ही दर्शाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छित जाए। दोस्तों, कबीरदास का यह प्रसिद्ध दोहा हमें बताता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति की बातें या ज्ञान की चोट इतनी गहरी होती है कि सामने वाले के रोम रोम को भेद देती हैं, यानी भीतर तक मन मस्तिष्क पर असर करती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति की मार केवल शरीर के हिस्से को प्रभावित करती है। यह दोहा हमें ज्ञान की शक्ति के महत्व और गहरे प्रभाव की अहमियत समझाता है।
1: तो चलिए दोस्तों, कबीरदास की इसी प्रेरक पंक्ति के साथ आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकाश। तो आकाश, सबसे पहले हम क्यों ना अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुना दें।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अपने रेडियो दोस्त आकाश का नमस्कार कीजिए स्वीकार। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: गैंगस्टर, इस फिल्म से आपने सुना यह प्यारा सा गीत या आली जुबिन गर्ग की आवाज़ में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। तो बताइए प्रिया, आज के कार्यक्रम में क्या है खास?
1: दोस्तों, हम आज की बात में कार्यक्रम लेकर चलेंगे जिसमें हम सुनेंगे कि विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है, आगे आज की बात जारी रहेगी जिसमें हम लोग बात करेंगे विश्व हाथ स्वच्छता दिवस।
0: बिल्कुल प्रिया, इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह की, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और बात होगी आज चूंकि मनोबल मंगलवार की, आज हमारा खास सेगमेंट होगा क्योंकि आज मंगलवार है। तो कार्यक्रम में और हम आगे जानेंगे स्पोर्ट्स अपडेट, रोचक तथ्य, और बीच बीच में फिल्म संगीत तो जारी रहेगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े प्रिया, उससे पहले क्यों ना एक प्यारा सा
1: बिल्कुल
0: ट्रैक हो जाए।
1: बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं आज का ये अगला ट्रैक।

0: दोस्तों मोहब्बत दिल का है सुकून एतवार, फिल्म दिल है तुम्हारा से आपने सुना अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अगले विषय को जानते हैं। बताइए आकाश।
1: प्रिया, आपने अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, काजल अग्रवाल, इन तीनों का नाम तो सुना ही होगा।
0: बिल्कुल आकाश।
1: क्या आपको पता है इन तीनों में कॉमन क्या है?
0: हाँ, ये तीनों फिल्मी दुनिया के जाने माने चेहरे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने, लेकिन एक बात और कॉमन है इन तीनों में, और वो ये कि ये तीनों एस्थेमेटिक हैं। जी हाँ श्रोताओं, तीनों फिल्मी सितारे अस्थमा के मरीज हैं और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है।
0: तो और आकाश, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व अस्थमा दिवस पे, इसीलिए हम लोग ये सारे चर्चा कर रहे हैं। और आप कहेंगे कि हम आखिर ये क्यों बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं आज है अस्थमा दिवस और इसका उद्देश्य है अस्थमा के नियंत्रण की दिशा में लोगों को जागरूक करना।
1: श्रोताओं, अस्थमा एक्यूट नहीं बल्कि क्रोनिक डिजीज है। इसका मतलब यह लंबे समय तक रहता है। इसका पूरा इलाज अभी तक संभव नहीं हो सका है। हाँ, इसे इनहेलर और दवाइयों की सहायता से नियंत्रित जरूर किया जा सकता है।
0: तो श्रोताओं हम आपको बता दें कि अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है और ये सबसे आम और गैर संचारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसका मतलब अस्थमा के मरीज के साथ रहने, उठने बैठने या खाने से यह बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती।
1: दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अस्थमा, जिसे हम दमा भी कहते हैं, इस बीमारी में श्वसन नलिकाओं में सूजन और संकुचन हो जाती है, जिसके कारण खांसी, सांस लेने में कठिनाई और सीने में जकड़न की समस्या होती है।
0: और बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। और आपको पता है कि अस्थमा होने के प्रमुख कारणों में धूल मिट्टी, प्रदूषण, धूम्रपान आदि भी शामिल हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने। अस्थमा के प्रति जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है।
0: और आकाश आपको पता है कि विश्व अस्थमा दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है?
1: बिल्कुल, अस्थमा के प्रति जागरूक करना, इसे नियंत्रित करना, और इस वर्ष का जो थीम रखी गई है वो थीम है एक्सेस टू एंटी इंफ्लामेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विथ अस्थमा, यानी कि अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता, यानी कि इनहेलर अस्थमा में काफी

कारगर होता है और अगर इसकी उपलब्धता हो तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी इसकी पहुंच काफ़ी लोगों को अभी इस तक पहुंच नहीं हो पाई है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों तेरे लिए फिल्म प्रिंस से गायक आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये प्यारा सा गीत आपने

0: सुना। श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे गाने के पहले अस्थमा के बारे में, क्योंकि आज है विश्व अस्थमा दिवस। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि अस्थमा और श्वसन एलर्जी एक ही चीज़ नहीं होती है। वो कहावत है ना, नीम हकीम खतरे जान। तो कई बार हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सांस लेने में कोई भी कठिनाई होती है तो उसे हम अस्थमा ही ना मान लें, बल्कि डॉक्टर से सलाह लें और चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही उसका इलाज करें। और हम योग प्राणायाम जो डॉक्टर बताते हैं, जो प्रशिक्षित योग ट्रेनर बताते हैं, उनका अभ्यास करें, स्वच्छ वातावरण में रहें, टहलें और जिन चीज़ों से एलर्जी है उन चीज़ों से दूर रहें। इन चीज़ों को अभ्यास करके हम अस्थमा को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: तो आकाश, हम अब अगले विषय की ओर चलते हैं और हम बात करते हैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। दोस्तों, आज है 5 मई और आज का दिन कैलेंडर की साधारण तारीख नहीं है, आज है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे।
0: बिल्कुल प्रिया, और इस साल की थीम है एक्शन सेव्स लाइफ, सेफर केयर स्टार्ट्स विथ क्लीन हैंड्स, यानी कार्रवाई जान बचाती है, सुरक्षित देखभाल की शुरुआत साफ हाथों से ही होती है।
1: बिल्कुल आकाश, और क्या आप जानते हैं आकाश के हमारे शरीर में 80% जो परसेंट है संक्रमण सिर्फ हमारे हाथों के जरिए पहुंचते हैं।
0: 80%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है प्रिया। इसका मतलब है कि हम अगर हाथ धोने की आदत डाल लें तो हम आधी बीमारियों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही हरा देंगे।
1: बिल्कुल आकाश, लेकिन समस्या यह है कि लोग हाथ धोना और सही तरीके से हाथ धोना, इन दोनों के बीच अंतर नहीं समझ पाते, न जानते हैं।
0: तो चलिए प्रिया, आज हम श्रोताओं को बताते हैं WHO द्वारा 7 स्टेप्स जो बताए गए हैं हाथ धोने के लिए, वो स्टेप्स हम श्रोताओं को बताते हैं।
1: बिल्कुल, पहला है दोस्तों की हथेली से हथेली, यानी पहले साबुन लगाकर हथेलियों को रगड़े और फिर उंगलियों के पीछे यारी, यानी दाहिने हथेली की बाईं पीठ पर और बाईं बाईं को दाहिने पीठ पर रगड़े।
0: श्रोताओं, उंगलियों के बीच उंगलियों को आपस में फंसा कर रगड़ें, इससे भी आपके हाथ ठीक से स्वच्छ होंगे। और चौथा स्टेप है उंगलियों के पीछे का हिस्सा, यानी उंगलियों को मोड़कर एक दूसरे में लॉक करें।
1: अगला स्टेप है दोस्तों के अंगूठा, यानी अंगूठे को हथेली में पकड़कर गोल गोल घुमाएं, फिर नाखून और उंगलियों के पोर नाखूनों के को हथेली पर रगड़े ताकि अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाए और आप स्वच्छ हाथ साफ कर सकें।
0: और सबसे अंत में अपनी कलाइयों को साफ करें। और याद रहे, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 20 से 40 सेकंड का समय तो लगना ही चाहिए।
1: 20 से 40 सेकेंड आकाश, यानी जितने देर में हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे उतने में तो हम 2 बार हैप्पी बर्थडे का गाना गा लेते हैं।
0: वाह, मतलब सेहत भी और गाना भी। प्रिया, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सैनिटाइजर साबुन का मुकाबला कर सकता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप?
1: आकाश, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हाथ स्पष्ट रूप से गंदे दिख रहे हों तो साबुन और पानी ही सबसे बेहतर है। सैनिटाइजर तब इस्तेमाल करें जब आप सफर में हो या पानी उपलब्ध ना हो, लेकिन ध्यान रहे सैनिटाइजर में कम से कम 7% अल्कोहल होनी चाहिए।
0: सही कहा। और दोस्तों, हाथ कब धोएं इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। याद रखें, खाना खाने और बनाने से पहले, शौचालय के उपयोग के बाद, खांसने या छींकने के बाद, किसी जानवर या कचड़े को छूने के बाद, और घर से आने बाहर आने किसी बीमार व्यक्ति से मिलने के बाद भी हमें अवश्य हाथ धोना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कहा आकाश, और हमें इन सारी चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ताकि हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। और आज इस विश्व हाथ स्वच्छता दिवस पर हम ये सभी अपने खुद से वादा करें कि हम स्वच्छता को सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनाएंगे।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, याद रखिए, साफ हाथ केवल आपकी नहीं, आपके परिवार की भी सुरक्षा की ढाल है।
1: आकाश, जाने से पहले, अभी हम अगले विषय की ओर चलेंगे, उसके पहले एक छोटा सा नारा हमारे श्रोताओं के लिए है कि हाथ धोएंगे और बीमारी को दूर भगाएंगे।
0: वाह प्रिया, बातें तो बहुत सारी कर ली हमने, लेकिन क्यों ना आप अपने श्रोताओं को आज का अगला ट्रैक सुनवाया जाए।
1: बिल्कुल आकाश, तो चलिए श्रोताओं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक का।

0: इस फिल्म से यह प्यारा सा गीत सुना आपने हे शोना सान की आवाज़ में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह की, जो भारत के राष्ट्रपति रहे।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज है भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के 110वीं जन्म जयंती। वे राष्ट्रपति के पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, जिसके बाद अपनी मेहनत व राजनीतिक कौशल के दम पर वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे।
0: उनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले में हुआ था। उनका शुरुआती नाम जनरल सिंह था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने के बाद 1946 में उन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह कर लिया।
1: दोस्तों, उन्होंने सिख धर्म ग्रंथों और गुरु ग्रंथ साहिब का गहरा अध्ययन किया। इसकी वजह से उन्हें ज्ञानी की उपाधि मिली और उनका नाम हो गया ज्ञानी जैल सिंह।
0: भारतीय इतिहास में उन्होंने पहली बार भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिस वजह से उन्होंने इस विधेयक पर न तो हस्ताक्षर किए और न ही उसे वापस भेजा।
1: और अकास 25 दिसंबर 1994 को एक सड़क दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया।
0: श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे विभूति को आकाशवाणी की ओर से सत सत नमन।
1: और आकाश, हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के क्रम में अपने श्रोताओं को पहले ये प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल प्रिया।

0: श्रोता, अभी हमने सुना फिल्म ताल से नहीं सामने, हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में यह प्यारा सा गीत हमारे श्रोता शोभित सुमन की फरमाइश पर।
1: आकाश, अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। और आज है मनोबल मंगलवार और दिन भी है मंगलवार, और हर मंगलवार को हम लेकर आते हैं कुछ प्रेरक कहानी या उत्साहवर्धक कोई बातचीत। तो आज मनोबल मंगलवार में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं दोस्तों, जो शायद आपको अपनी ही कहानी लगे।
0: हाँ प्रिया, क्योंकि यह कहानी किसी बड़े मंच या बड़ी जीत की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जो हर युवा के भीतर चलता है।
1: तो आकाश, आपको याद है आरव, वही लड़का जो हमेशा चुप चुप सा रहता था, क्लास में सबसे पीछे बैठता था, जिसे लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है।
0: दोस्तों, आरब पढ़ाई में औसत था, न बहुत तेज न बिल्कुल कमजोर, लेकिन एक बात थी, वह कोशिश करना जल्दी नहीं छोड़ता था। जब बार बार असफलता मिले तो आत्मविश्वास का टूटना लाजमी है। आरब के साथ भी यही हुआ।
1: और एक दिन उसने कहा, शायद मुझ में ही कमी है, सब आगे बढ़ रहे हैं पर मैं वहीं खड़ा हूं। यही वो पल होता है दोस्तों, जहां ज्यादातर युवा रुक जाते हैं। लेकिन आरव रुका नहीं, हालांकि आगे बढ़ने का रास्ता उसे नहीं दिख रहा था।
0: एक दिन कॉलेज में एक सीनियर ने उससे बस इतना कहा, तुम रोज हार रहे हो, लेकिन क्या तुम रोज सीख भी रहे हो? ये सवाल आरब के साथ घर तक गया। उसे एहसास हुआ कि वह हर असफलता को अंत मान लेता था, सबक नहीं।
1: और उसने ये फैसला किया, मैं आज से खुद से एक ही वादा करूंगा, छोटा कदम लेकिन रोज। उसने पढ़ाई का लक्ष्य बदल दिया, पूरे सिलेबस की जगह आज बस एक टॉपिक, पूरी जीत की जगह आज बस ईमानदारी से मेहनत।
0: दोस्तों, इसके नतीजे तुरंत नहीं आए, और यही सबसे कठिन हिस्सा होता है जब मेहनत चल रही हो लेकिन तालियां ना मिले, और इसी

0: क्रम में अरब ने हार ना मानने का फैसला किया, बिल्कुल डटा रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा और उसकी गलतियां भी कम होने लगी।
1: और एक दिन वही आरव जिसे लोग अनदेखा करते थे, उसी से लोग पूछने लगे कि तुमने ये कैसे सुधारा खुद को। उसने बस इतना ही कहा कि मैंने खुद से हार मानने बंद कर दी।
0: युवा साथियों, इस कहानी का सार बहुत सरल है। आपको सबसे पहले दुनिया को नहीं, खुद को

0: हार मानने बंद कर दें।
1: युवा साथियों, इस कहानी का सार बहुत सरल है। आपको सबसे पहले दुनिया को नहीं, खुद को यकीन दिलाना होता है कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बोले आकाश। अक्सर हर युवा के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां उसे ना रास्ता साफ दिखता है और ना ही उसे अपनी मंजिल, लेकिन यही समय होता है खुद के आत्मविश्वास को बनाए रखने का, क्योंकि दोस्तों रास्ता चलने से बनता है न कि डरने से।
1: दोस्तों, अगर आज आप थके हैं, निराश हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोशिश कर रहे हैं। एक ना एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।
0: और आकाश, कोशिश करना ही तो सबसे बड़ी ताकत है ना?
1: बिल्कुल प्रिया, इस कहानी से मुझे महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता याद आ रही है। शायद आपने भी सुना होगा, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: बिल्कुल आकाश, की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम जब हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आती है तो हमें उसे घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसे हार ना मान करके हमें कोशिश करनी चाहिए। और यही आपने सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति को गुनगुनाया। दोस्तों, अगर आप आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को ठान लेते हैं ना, तो उसके सामने हजार संघर्ष पीछे पड़ जाते हैं और आप उनसे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं।
1: तो दोस्तों, इसी सोच के साथ आज के मनोबल मंगलवार की कहानी यहीं समाप्त करते हैं।
0: और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके भीतर वह क्षमता है जिसे अभी दुनिया ने नहीं, शायद आपने भी पूरी तरह नहीं देखा।
1: बिल्कुल श्रोताओं, तो अब प्रिया कार्यक्रम में आगे बढ़ें, उससे पहले हम सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक।
0: बिल्कुल, तो चलिए श्रोताओं, आज के ये प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं आपको।

0: कंधों से मिलते हैं कंधे, फिल्म लक्ष्य से यह प्यारा सा गीत सुना आपने शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में।
1: दोस्तों अब चलते हैं आज के खास सेगमेंट यानी स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ। तो श्रोताओं अब बात खेल जगत की। आईपीएल के इतिहास में कल मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा किया और 6 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया।
0: हालांकि श्रोताओं हम आपको बता दें, आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा कर जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम है। पंजाब किंग्स ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा कर दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया था।
1: और अब बात चेस की, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने टेपो सिगमन एंड कंपनी चेस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में स्वीडन के नील्स ग्रैंडेल्स को हराकर शानदार जीत दर्ज की।
0: और श्रोताओं अर्जुन का इस टूर्नामेंट में यह पहली जीत थी, उनके पहले 2 मुकाबलों का परिणाम ड्रॉ रहा था।
1: तो आकाश हम अब अगले सेगमेंट की ओर चलेंगे, लेकिन पहले अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा ट्रैक सुनाऊंगा।
0: बिल्कुल।

0: फिल्म फिल्म बेशरम से दिल का जो हाल है, या फिल्म संगीत सुना हमने अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट यानी
1: दोस्तों, रोचक तथ्य की तरफ।
0: बिल्कुल
1: अगली बार जब हम किसी स्वास्थ्य जांच शिविर या अस्पताल में जाएं, तो आपसे 10 मिनट तक एक मास्क के अंदर सांस लेने को अगर कहा जाए, तो बिना झिझक और डर के ऐसा करें।
0: जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में भी कुत्तों के जरिए इंसानों में पनप रहे कैंसर कारक कोशिकाओं का पता लगाने का प्रयास जारी है।
1: जो कि मेडिकल टीम आपसे मास्क में सांस लेने को कह रही है, वो दरअसल आपका सैंपल ले रही है ताकि उसे एक खास तरीके से ट्रेंड किए हुए कुत्ते को सुंघाया जा सके और यह पता चल सके कि शरीर के किसी हिस्से में कैंसर के निशान है या नहीं।
0: यहाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों में कुत्तों की मदद से कैंसर का पता लगाने का यह प्रयास काफी समय से जारी है।
1: और इस जो प्रयोग है उसकी सफलता दर को देखते हुए भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और कर्नाटक के 6 अलग-अलग अस्पतालों में ट्रेंस डॉग की मदद से एक अध्ययन किया गया है।
0: श्रोताओं, इस अध्ययन में जो नतीजे आए वो काफी रोचक रहे, काफी संभावना से भरे हुए हैं। इस अध्ययन में कुत्तों ने 1502 मरीजों के सैंपल सूंघे और 91% सटीकता के साथ परिणाम सामने आए। तो दोस्तों, है ना यह अमेजिंग फैक्ट्स साइंस की दुनिया से।
1: तो आकाश, अब हम चलते हैं आज के लास्ट ट्रैक के बारे में, ट्रैक की

0: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी ने किया है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
1: आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर फीडबैक दें। हमारा मेल आईडी है feedback@patna8@gmail.com। तो अपने रेडियो दोस्त आकाश और प्रिया को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवानी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम भारती। श्रोताओं, प्रस्तुत है मगही कार्यक्रम मागधी।

माग्धी सुन्निहार के नीलाद्री के प्रणाम। आए हन मंगलवार हमने प्रस्तुत हियन अपने लेल माग्धी कार्यक्रम लेके। तो रोज नियन जैसे हमने बतबे हियन कि आय के कार्यक्रम में की प्रसारित करबन एकर जानकारी दे दहियन। तो आय है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस, तो हमने एकरा पर चर्चा करबे। एकरा साथे साथ आर भी दो चार गो महत्तम वाला दिन है, ओकरा पर भी बातचीत करबे। लोकगीत सुनबे कलाकार अनिल कुमार अकेला से, आ सुनबे एगो कहानी बात भूत बैताल। कहानीकार हथिन अनुपमानंद। विश्व हस्त स्वच्छता दिवस 2026 के अवसर पर WHO स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करे आ ओकर समर्थन करे वाला सभी लोगन से रोगी रहे भाई स्वास्थ्यकर्मी रहते हुनकर सुरक्षा सुनिश्चित करे लेल हाथ के स्वच्छता आ संक्रमण से रोकथाम नियंत्रण पर अपन कार्रवाई के करे के आह्वान करे। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे के दौरान होवे वाला ऐसन संक्रमण के रोकल जा सके है जेकरा हमने टाल सके ही, समय पर हाथ के स्वच्छता और आंतरिक सुरक्षा उपाय के अपनावल जाए के चाहिए। हर साल एकर एगो विषय रहे है, अबरी है एक्शन सेव्स लाइफ। हाथ के स्वच्छता काहे महत्तम रखा है, जब जखनी पहल स्थापना दिवस 2009 में होले हल ई दिन के, तो WHO अपन जीवन बचावा अपन हाथ साफ करथिन अभियान के शुरुआत कैलखिन हल। ऐसे एकरा अपनावे से संक्रमण रोकल जा है, रोगी सुरक्षा के बढ़ावल जा सके है। एकर दायरा बढ़ल गले हैं, दस्ताना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बहुते महत्तम जे कहथिन कि उपाय है। ई विषय ई बात पर जोर द है कि दस्ताना के व्यक्तिगत उपयोग उचित तरीका से हाथ के स्वच्छता के जरूरत के जितना होवे के चाहिए उतना सुरक्षा नहीं दे है, तो एकरा से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा है। तो ई लेल जन स्वास्थ्य के रक्षा, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित संक्रमण में कमी, कीटाणु के प्रसार में कमी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध में कमी आवे है, हाथ के नीमन से भिगा के साबुन के कलाई तक लगा के आ जे तरह थपनी कहिए ओकरा आपस में रगड़ के अंगुड़ी में अंगुड़ी घुसा के नौह सब के सफाई करके निमन से सुखा के जब रखल जाए तब हमनी मानिए कि हाथ स्वच्छ है। तो हमने पहने अब एगो लोकगीत सुन लिये। कार्यक्रम के शुरुआत लोक भजन से करिए। कलाकार हथिन अनिल कुमार अकेला।

हमनी सुनलिए लोक भजन आ हमनी सब जे पत्रिका आर पहिने पढ़ हलिए या एखने कंप्यूटर पर जो गेम खेल हिए तो ऐसन में देखा होबे कि स्केचिंग करल रहा है, नया नया अवतार बनाबल रहा है, नया नया डिजाइन के जानवर बनाबल जा है, आदमी बनाल जा है, तो एक हमनी कार्टूनिस्ट कह हिए, ओकरा में रंग भरल जा है। तो आय है राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस, सभी साल 5 मई के ई दिवस मनावल जा है, जे कार्टूनिस्ट के रचनात्मकता, हास्य आ हुनकर द्वारा जे समाज में लावल गेल विनोद है, हंसी के समान है, एकर हमने सम्मान करे है। एगो विशेष दिन आई है ई दिवस, कार्टून के माध्यम से जटिल मुद्दा के सरल आ मनोरंजक तरीका से पेश करे वाला कलाकार के समर्पित है। ई दिन हिनकर काम के महत्तम दे है, जशन मनाब है। एकर शुरुआत जे है से नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी 1990 के दशक में होले हल। ई दिन बताबा है कि कैसे कार्टून हमनी के शिक्षित करे के साथ साथ मनोरंजन भी करे। ई दिन रचनात्मक प्रतिभा के बढ़ावा दे आ कार्टूनिक उद्योग के समर्थन करे लेल प्रोत्साहन दे। आई उ सब कलाकार के याद करल जा है जे अपन कला से लोगन के जीवन के आउ जादे रंगीन बना दल के। प्रिंटेड आ एनिमेटेड कार्टून लोगन के हंसी हंसी में समाज के समस्या से

0: अवगत कराबा है। भारत में शंकर पिल्लई, आर के लक्ष्मण, आबिद सुरती, प्राण, बाला साहब ठाकरे नियन नामी कार्टूनिस्ट होलखिन। वैसे ही कैल्विन हॉब्स कॉमिक्स, रिचर्ड एफ आउटकॉल्ट एनिमेटेस, आ कार्टून कैरेक्टर में डोरेमोन, सिंचैन, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, पर्पल पैनिक, ऐसा कार्टून शायदे कोई बुतरू होते जो नहीं देखने होते। तो कार्टून आ कार्टूनिस्ट बहुते लोकप्रिय विषय है। आए ई दिवस के सब कार्टूनिस्ट के हमनी प्रसार भारती के माध्यम से, आकाशवाणी पटना के माध्यम से बधाई दीजिए। अब हमने सुनिए ई कहानी, आदर्श विवाह कहानीकारा थीं अनुपम आनंद।
1: रुदर एगो साधारण किसान हत। इनके घर के एगो कोना में लाठी, खंती, कुदारी, गरासी, हंसुआ, खुरपी और ढेर कृषि के सामान रख ले हत। जरूरत के अनुसार रुदल उपयोग कर हत। जब खेत बधार में रुदल जायतन त उनकर हाथ में लाठी जरूर रहत। एक बार रुदल के देख के दूगो कुत्ता भोंके लगल, उनका आगे जाय में बाधा उत्पन्न करित हल। बेचारे फेर में पड़ गेलन, तब लाठी घुमैलन और दोनों कुत्ता के खदेरले सिवान पार कर देलन। रुदल लाठी के महत्व बढ़िया से जानहत। खेत बधार घूमे में सांप बिछा या कोई खतरनाक जीव जंतु मिल गेल त लाठी से बच सकह, एकरा अलावे कोई रास्ता न है। किसान ला लाठी अस्त्र शस्त्र दोनों है। लाठी से फेंक के मार या लाठी धर के मार, ये दोनों में काम आवे है। गृहस्थ जीवन में लाठी के बड़ा महत्व है। यही एगो ऐसा अस्त्र शस्त्र है जेकरा लाइसेंस बनावे के जरूरत न है। यही लाठी लेके महात्मा गांधी शांति और अहिंसा से भारत के आज़ाद करा देलन और महात्मा गांधी बन गेलन। रुदल के घर के कोना में जितना सामान है सबके अपन अपन महत्व है। जब वो खेत में धान देखे जाहत तब खंती लेके जाहत। रुदल बड़ा मेहनती हत, वो काम के दुश्मन हत। खेत घूमे जैतन त हाथ में खंती के साथ हंसुआ जरूर रहत। खेत में बरहन बरहन घास देख कर ओकरा काट लेतन, फिर माथा के मुरेठा खोल के घास बांध के घरे लेतन। हरियर हरियर घास देखते उनकर गाय भैंस भोके लगल है। तुरंत गरासी से घास काटलन और भूसा में फेंट के गाय भैंस के खिलेतन। गौ सेवा और कृषि सेवा में दिन रात लगल रहत। रुदल की यही दैनिक जीवन है। एक दिन रुदल अपने पत्नी के साथ खेत में प्याज कबाड़ी थलन। घूमित घूमित रमेश ठाकुर पहुँच गेलन। रमेश ठाकुर कहलन, रुदल बाबू प्याज तो बहुत खूब बैठल है। रुदल कहलन, रमेश भाई बड़ा मेहनती कैली है, समय समय पर पटवन और सोहनी कैली है, जरूरत के अनुसार कई बार खाद भी देली है। गांव भर में सबसे बढ़िया प्याज हमरे है। हम मेहनत कर रही, रमेश भाई हम कर्म कर रही, फल के चिंता न कर रही, फल तो भगवान के हाथ में है। बात काटित रमेश ठाकुर कहलन, रुदल भाई आ दोनों व्यक्ति है ये हा। कही थी बबुआ सुधीर के विवाह करब, काहे कि एकरा उम्र 25 साल हो गेलक है, समय से शादी कर देवे के चाही। देखी था जमाना कहाँ से कहाँ चल गेल है। एगो हमरे हित नाता में लड़की हब, सुंदर में कोई कमी न हब, घर के काम धाम में बड़ा हाथ बटाव हब, इंटर ले पढ़ल लिखल भी हब, हमरा योग लगित हब। यही लेल दोनों प्राणी के कही थी, अगर राय हम सब में हब तब बोला ओकरा बोला दी। रुदल एगो बोली न बोलन, लेकिन उनकर पत्नी चनकी देवी कहलन, रमेश ठाकुर शादी के बात करी था तो ठीक है, तू कहिए देला कि लड़की साफ सुथरा है, अपने के घर लायक है। लड़की तिलक दहेज के बारे में कुछ कहला, हमरो बेटा बीए पास है, प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करी थे, ओकरा भाग साथ न दी थे, अगर भाग साथ दी था तो ओकरा अब ले नौकरी लग जतक हल। देख रमेश जेकर घर पर फूस न है वहू कितना तिलक डिमांड कर है। हमर घर में कौची न है, बबुआ के बाबू मेहनत करके घर द्वार बने लेहत। दूरा पर गाय भैंस देखते हैं, बाबू बीए पढ़ल है, कोई चीज़ के कमी न है। भगवान के कृपा से हमने सब परिवार ठीक ठाक से ही। बात काटित रमेश ठाकुर कहलन, जनकी भौजी तू सब तरह से ठीक ठाक है, तब न शादी के बाद चला रही है।

तोर घर में उ लड़की आए तब घर के रौनक आओ बढ़ जात। उ लक्ष्मण लक्षणमान लड़की है। लड़की के बाप हमेशा गरीब होवे है। कोई भी लड़की के बाप अपन औकात से बाज ना बहे। अपने शादी ला तैयार हो जाई, तिलक ला अपने चिंता मत करे। अपने जे सोचले ही ओकरा से कम न मिलत। रुदल बात काटित कहलन, जा रमेश उनका कह द शादी होत। अगर लड़की पसंद हो जात पैसा कौड़ी तो आबित जात रह। लड़की घर के लक्ष्मी है। एकरा आगमन से घर में रौनक बढ़ा है। लड़की घर के सरस्वती और लक्ष्मी दोनों है। जौन घर में एकरा आदर और सम्मान मिला है वो घर में सदा खुशहाल रहा है। ठीक कही था रुदल भाई, तोर बात हमरा पसंद पड़ल। हम अपन हित के रविवार के दिन बोलाब ही। रविवार के दिन रमेश ठाकुर अपन तीन गो हित नाता के साथ रुदल के घर पर अयलन। हित नाता के देख के रुदल बड़ा खुश हो गया। रुदल के दलान में तोषक तकिया लगल हल। कुछ लोग तोषक पर बैठलन तो कुछ लोग कुर्सी पर बैठलन। लोटा में पानी आल, लोग गोर हाथ धोलन। नाश्ता में गरम गरम कचौरी हलवा और सब्जी आयल। लोग के खा के बम बम हो गलन। एगो कस्तरी में खैनी बीड़ी सिगरेट इलायची और लवण भी धरल हल। अपन इच्छा के अनुसार लोग उपयोग करित हलन। लड़की के बाप धीरज ठाकुर रुदल बाबू से कहलन, सरकार हम अपन बेटी के हाथ पियर करेला अपने ही अली है। रमेश बाबू के कहला अनुसार सब कुछ ठीक पसंद आ गया। रुदल बाबू कहलन, ठीक है पहले लड़का देख ल तब न आगे बात चलत। रमेश ठाकुर कहलन, ठीक कही था रुदल बाबू, पहले लड़का देख ल पसंद हो जात तब फिर बात आगे चलत। रुदल बाबू लड़का बोलाई। लड़का आयल सब लोग के चरण स्पर्श करल। धीरज बाबू लड़का से ढेर बात पूछलन। लड़का जवाब देते गेल। लड़का से धीरज बाबू खुश हलन। बर्तन के एगो चावल दे के पता चल जाए कि चावल के स्थिति कैसन है। बात करते ही पता चल गेलक है कि लड़का कितना पानी में है। लड़का के वहाँ से विदा कर देवल गेल। हाथ जोड़ के धीरज बाबू रुदल बाबू से कहलन, सरकार लड़का एकदम लड़की के जोड़ी है। जैसन हम लड़का खोजित हली वैसने हमरा मिल गेलक। ऐसन जोड़ी लगावे ला हम रमेश ठाकुर के बड़ी धन्यवाद दी थी। धीरज ठाकुर रुदल बाबू से कहलन, अपने के लड़का बीए पास करके प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करी थे तो हमरो बेटी इंटर पास करके प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करी थे। इंटर में फर्स्ट आल हल। ओकरे पैसा से पढ़ाई करल। हमरा बेटी पढ़े में बहुत बढ़िया है। बेटी इंटर पास के से पास करके ओकरा 25,000 सरकार के तरफ से मिलल हल। बेटी कहलक, पापा हमरा पढ़े के तमन्ना है, तोरा पासे पैसा के अभाव हब तभी जे 25,000 मिलल है ओकरे से बीए तक पढ़ाई हो जात। बेटी के तमन्ना हम ठुकरा न सकली है। ओकरा बीए में नाम भी लिखवा देली। हमर गांव में बगले में एगो महिला महाविद्यालय है ओकरे में ओकरा नामांकन करा देली। हमर प्रार्थना स्वीकार कर और हमर बेटी शांति से अपन बेटा के शादी संपन्न कर। हम अपने के पैर पकड़ी थी, हम अपने के पैर पर गिरल ही हमरा उठा लू। ई एगो आदर्श विवाह होत, समाज एकरा से सीख लेत। तिलक दहेज एगो कलंक है, एकरा से समाज के बड़ा घाटा है। कितना लोग तिलक दहेज के चलते उजर गेलक, कितना बेटी दुनिया से चल गेलक। रुदल बाबू अपने सच्चा इंसान ही, मेहनत पर विश्वास कर ही अपने के चर्चा इलाका में है। अपने के बड़ा बड़ाई रमेश ठाकुर से सुन ली है। अपने जैसन आदमी पा के पूरा इलाका खुश रहा है। सब ठीक है, अपने ही शादी होत, लेकिन लड़की पर खाली बापे के अधिकार न है, माए के भी अधिकार होवे। ठीक कही था रुदल बाबू, माए के ज्यादा अधिकार होवे। उनका से राय लेना एकदम उचित है। उनका से राय अपने ले लूँ, पूरा परिवार का राय होत तब न शादी होत। शादी एगो प्रेम बंधन है, एकरा से लड़का लड़की के आचार विचार एकदम जरूरी है। साथे साथे माया माए बाप के आचार विचार के भी जरूरत है ताकि प्रेम बंधन में कोई ताना तानी न होवे। रुदल बाबू अपन घर में राय लेवे चल गेलन।
रुदल बाबू अपन बाल बच्चा और पत्नी चनकी देवी के साथ बैठल हत। आपस में बातचीत होइत हल। चनकी देवी कहलन, तिलक दहेज एकदम देवे के नाम न लेव हथिन, बताई कैसे शादी होत, इतना महंगाई है एगो।

0: बेटा है, घर में बाजा न बजत त गांव घर के लोग का कहतन, चाहे जे हो जाए बउआ के पापा बिना तिलक दहेज के विवाह न होत। हमर हित नाता का कहत, एक गो बेटा हले ओकरा में तिलक न ले ले। गांव में कोई ऐसा आदमी है जे बिना तिलक के शादी कैलक है? हमरा कौन चीज के कमी है? घर में गाय भैंस घर द्वार चीज के कमी है, ढेर लोग आयतन जतन जा का कहतन लोग, हमारा एकदम भिखारी समझा हथन। लड़का बीए पास है, एकरा सुंदरता में कोई कमी है? ऐसा तो न है कि लड़का लखेरा है, दिन रात पढ़ाई में लगल है, प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी में लगल है। अगर एकरा नौकरी लग जाए तो ढेर जजमान लोग आयतन और बिना मांगे 10 लाख देतन। माया बात में सही कहित है कि हम मछली न ही कि हम सर जाम, लेकिन बाबू के भी बात माने के जरूरत है। बाबू के समाज में बड़ा इज्जत है, जितना समाज में इनका आदर मिला है उतना गांव में भी कोई आदर मिला है। एकरा तू रुपया और पैसा से तौला है, रुपया हाथ के मैल है मैया, रुपया पैसा आबित जाइत रहतो, लक्ष्मी कोई के न है, आज तोरा ही कल हमरा ही रहतो। बात समझ मैया, बाबू के बात सुन मैया, बाबू के धीरज बाबू पैर पकड़ लेलन है आ अपन माथा के पगड़ी पैर पर रख देलन है। नव निवेदन से कहलन, रुदल बाबू हमर इज्जत अपने के इज्जत है, हमारा पैर से उठा ल मैया, तू इतना कठोर है। सुना ही कि मर्द लोग कठोर होवे है औरत कोमल होवे है, यहाँ विपरीत देखी थी बाबू मुलायम है, तू कठोर है मैया। माया लड़की के बारे में सुनल है, लड़की के नाम शांति है, बड़ा पढ़े लिखे में तेज तरार है, मैट्रिक इंटर फर्स्ट से पास कैल है, बाबू के पढ़ावे लिखावे में औकात न है, तैयो शांति के बाबू बीए में नाम लिखवा देलन है। जाना है मैं ओकरा मैट्रिक से में 10,000 रुपया मिलल हल, ओकरे से इंटर कैल, वही पैसा से कॉपी किताब खरीदलक और कोचिंग कर गेलक, इंटर फर्स्ट डिवीजन से 5 अच्छा अंक लेलक, इंटर में सरकार के तरफ से 25,000 रुपया मिलल, जकरा से ओकरा बीए की पढ़ाई चल रहल है, साथे साथे प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी भी करी था। मैया लड़की होनहार हो, शादी न करवे तब पछताएबे, दुनिया के चक्कर में मत पर, बाबू के इज्जत रखी ओकरे में भलाई हो, हमहू बाबूजी के साथ ही, सरकार भी तिलक के विरोध कर है, सुन ल तिलक लेना और तिलक देना दोनों कानून के खिलाफ है, राष्ट्र के उन्नति लागे दोनों के बहिष्कार करे पड़त तबे राष्ट्र उन्नत होत। एकरा में माया है हाथ बढ़ावे पड़त, बोलल माय एकरा में तोरा का राय हो बेटा, तू हमर आँख खोल देला, जैसन हमर बेटी है वैसने रणधीर बाबू के बेटी है, राष्ट्र के विकास ला न तिलक लेम आ न देम, खर्चापन शादी में हमनी बहिष्कार करम, शादी मंदिर में होत न, जा बाबूजी के कह दूँ ओकर बेटी के बाबूजी के कि रणधीर बाबू यहाँ से शादी होते। रुदल अपन ऐसन बात सुन के बड़ा खुश हलन, तुरंत रणधीर बाबू के पास अलन, रणधीर बाबू बड़ा देर इंतजार करित हलन का होलक, त यही सोचलन हलन कि रुदल बाबू रणधीर बाबू के कहलन, जा शादी के तैयारी कर, अपने ही शादी होत, हमर पूरा परिवार के राय है। ऐसन बात सुन के रणधीर बाबू के गोरी न थमहल, भीतर से बड़ी खुश हलन। रमेश ठाकुर कहलन, जब शादी ठीके हो गल तब लगन पत्री भी लिखवा दी। तुरंत सोहन पंडित के बुलवावल गेल और लगन पत्री लिखवा देवल गेल, लगन पत्री के अनुसार उलार मंदिर में धूमधाम से शादी शांति के संपन्न हो गेल। ऐसन आदर्श विवाह देख के लोग ढंग हो गेलन, चनकी देवी शांति ऐसन पुतोह देख के बड़ा खुश हलन।
1: अभी अपने आदर्श विवाह की कहानी सुनलखिन कहानीकार हलखिन अनुपमानंद, हिनका दहिए धन्यवाद। आ कुछ विशेष जे है से आय दिन के महत्तम है, तो आय जे है राष्ट्रीय बाल मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस, हर साल 7 मई के मनावल जा है। ई बचपन के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के उजागर करे आ एकरा से जुड़ल कलंक के कम करे के लेल मनावल जाए। आय अब्दुल हमीद कैसर के जन्म होलन हल 1929 में राजस्थान के झालावाड़ में, ई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हलखिन। आइए के दिन स्वतंत्र भारत के पहला वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी के निधन होलन हल। नेपोलियन बोनापार्ट जे फ्रांस के क्रांति में सेनापति हले

एकर भी निधन होले हल। नौशाद अली हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार हलखिन। 67 फिल्म में संगीत दलखिन। हिनकर भी निधन 5 मई के ही होले हल। ज्ञानी जैल सिंह जे हमनी के स्वतंत्र भारत के 7वां राष्ट्रपति हलखिन, हिनकर आय के दिन जन्म होलन हल। हमने जे जरूरी बात हले कुछ अपने के साथ साझा के लिए, आ अब एगो हमने झूमर सुनहिए। कलाकार एक बार फिर से हथिन अनिल कुमार।

ई झूमर अनिल कुमार अकेला से हमने सुनलिए, आर आई निमन निमन लोकगीत हिनका से सुनलिए, हिनका दहिए धन्यवाद। आ अब हमने के समय खत्म हो रहलन है तो हमने के इजाजत दथिन, फेर मिलवन, प्रणाम।

मगधी, अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:20 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे 6:30 पर और शाम 7 बजे का समय होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का।

7:52 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे श्रीमती डे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:00। 8:30 पर पुनः आप सुनेंगे।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं गुल

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं पश्चिम बंग, तमिलनाडु, केरलम प्रदेशेषु च सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक क्रियाकलापानि आरभन्ते। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः पश्चिम बंगाल राज्यस्य केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा च असम राज्यस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तौ स्तः। बिहार राज्यस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारः मई मासस्य सप्तमे दिनांके भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूएई इत्यस्य फुजैराह क्षेत्रे आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत्, यत्र त्रयः भारतीय नागरिकाः व्रणिताः अभवन्। सम्पूर्णे पश्चिम एशिया देशे शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेश्च आह्वानम् अपि अकरोत्। अमेरिका ईरान देशौ गल्फ क्षेत्रे नूतनानि आक्रमणानि आरभताम्, यत्र उभौ पक्षौ होर्मुज जलसन्धिं नियन्त्रयितुं संघर्षरतौ स्तः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां दिल्ली कैपिटल्स इति दलं दिल्ली नगरे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतं विरुध्य क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विधानसभा निर्वाचनानां परिणामानां घोषणायाः अनन्तरं तमिलनाडु केरलं राज्ययोः सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक प्रक्रियाः आरब्धाः सन्ति। तमिलनाडु राज्ये अभिनेत्रीतः राजनेता रूपेण

0: भाजपेति दलस्य सांसदः राघवचड्ढा, अशोकमित्तलः, सन्दीपपाठकः, राजेन्द्रगुप्तः च अद्य राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मिलित्वा पंजाबराज्ये आपनेतृत्वे प्रशासनेन राज्यतन्त्रस्य कथितस्य दुरुपयोगस्य विषये चिन्तां प्रकटितवन्तः। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् राघवचड्ढा इत्यनेन आपनेतृत्वे पंजाबसर्वकारः राज्यतन्त्रस्य उपयोगेन राज्यसभायाः सदस्यान् लक्षीकरोति इति आरोपितवान्।
1: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: अत्रांतरे पंजाब राज्यस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान इत्येषः अपि आपदलस्य राज्यसभायाः सप्त सदस्यानां भाजपेति दले प्रवेश विषये चर्चार्थं राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मिलितवान्। उपवेशनानन्तरं श्रीमानः आपदलस्य सांसदानां विलयनम् असंवैधानिकम् इति उक्तवान्। भारत ऋतु विभागेन आगामि दिनद्वयोः मध्यप्रदेशे, विदर्भे, छत्तीसगढ़े च मेघवृष्ट्या, विद्युत्पतनेन, वायुवेगेन च सह लघुतः मध्यम वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य उत्तरप्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गांगेय, पश्चिमबंग इत्येतेषां च केषुचित् भागेषु अपि एतादृशेः स्थितेः संभावना विद्यते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् आतिथेय दिल्ली कैपिटल्स दलम् अद्य सायंकाले अरुण जेटली क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने क्रीडा आरभ्यते। अवधेयं गतरात्रौ वानखेड़े क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलं षट् स्तोभैः पराजितम्। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं पश्चिमबंग, तमिलनाडु, केरलं प्रदेशेषु च सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक क्रियाकलापानि आरभन्ते। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः, पश्चिमबंगालराज्यस्य केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डाः च असमराज्यस्य केन्द्रीयपर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तौ स्तः। बिहारराज्यस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः मई मासस्य सप्तमे दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूएई इत्यस्य फुजैराह क्षेत्रे आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: प्रणाम सुधा दी।
1: नमस्कार निमिषा जी, कहिए ठीक ठाक है ना, स्वस्थ
0: हाल
1: हैं?
0: हाल चाल तो ठीक है दीदी, लेकिन दीदी स्वस्थ रहला के बात कहला दीदी। स्वस्थ रहला हमनी के स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ वातावरण के जरूरत पड़े है।
1: अब देखिए ना, जिस तरह से ये मौसम आंख में चोली खेल रही है,
0: हाँ
1: लग ही नहीं रहा है कि अभी कुछ दिन पहले तक इतनी भीषण गर्मी पड़ रही
0: हाँ
1: थी और ये आंधी तूफान बारिश के बाद ठंडा। तो मुझे तो थोड़ी सी मतलब जैसे हो रहा है ना ठंडा, कभी गले
0: हाँ
1: में खसखसाहट हो रही है और बहुत से लोगों को परेशानी होती है। खासकर देखिए, इस तरह से जब मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो जिनको अस्थमा है बहुत परेशानी होती है,
0: हाँ
1: अचानक से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। और देखिए, आज विश्व अस्थमा दिवस भी है
0: हाँ
1: जो कि प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है।
0: हाँ आज
1: तो आज
0: मंगलवार है
1: मई का पहला मंगलवार है,
0: तो
1: तो
0: हम
1: विश्व अस्थमा दिवस आज पूरा विश्व मना रहा
0: और दीदी देखी अस्थमा दिवस से हमने के विश्व भर में मनावल जाए और यहाँ की

0: ई जो अस्थमा है, एकरा से लाखों लोगन पीड़ित हैं और हमने के देश में एकर मरीज के संख्या कुछ ज्यादा ही है। तो ईला हमने के ई बीमारी का है और एकर का निदान है और हमने से का का उपाय करे के चाहे जेकरा से हमने एकरा से बचल रह सके। काहे कि वायु प्रदूषण से अस्थमा जल्दी हो जाए, हमने के कोई भी बाहर अगर एलर्जी किसी चीज से रहे
1: तो
0: या
1: उससे भी परेशानी होती है। देखिए निमिषा जी, अस्थमा जो है एक क्रॉनिक बीमारी है, मतलब जैसे कि दीर्घकालीन, एक बार हो गया तो ये काफ़ी लंबी चलती है, जो कि श्वसन से संबंधित है, सांस लेने से। तो इसमें जो सांस की नलिकाएं होती हैं वो सूज जाती हैं और एक तरह से कहे तो सक्रिय हो जाती है। इससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी होती है, सीने में जकड़न होती है और सांस लेते समय कभी कभी घरघराहट की आवाज़ होती है। तो मतलब अस्थमा के मरीजों में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं।
0: और देखिए अस्थमा के हमने सब जैसे ठेठ भाषा में दमा कही, और तो दमा हमने के वायु प्रदूषण, ठंडी हवा, सुगंध, ये सब से हमने के एकर कारक से हो सके। एकरा ला ये एलर्जी पैदा करे वाला पदार्थ से संपर्क से हमने के बचे के चाहिए। अगर एलर्जी रहे तो हमने के दमा के अटैक आ
1: देखिए,
0: सके।
1: बहुत से लोगों को
0: हाँ
1: सुनी होगी धूल से एलर्जी
0: हाँ
1: होती
0: हाँ
1: है, किसी को धुएं से होती है, किसी को तेज जो सुगंध होती है, अगरबत्ती,
0: हाँ हाँ
1: सेंट, इन सब से भी एलर्जी।
0: एकदम
1: तो हर आदमी को अलग-अलग चीजों से एलर्जी
0: कर
1: हो
0: हो
1: सकती
0: सके।
1: है।
0: और सिगरेट, मोमबत्ती, अगरबत्ती जैसे मतलब नहीं, एकरा से हमने के बचे के चाहिए। और बीमार लोगन से जैसे कि एकरा से संक्रमण से भी हो सके, तो हमने के बीमार लोगन से सर्दी या फ्लू रहे जेकरा से उनका से दूर रहे के चाहिए। आसपास वातावरण के धूल रहित रखे के चाहिए। इस तरह से हमने एकरा से बचाव कर सके। और दीदी अस्थमा ने एगो चार चार के नियम आवे, चार चार चार,
1: अच्छा, ये क्या है?
0: एकरा में कहा हुए कि कोई व्यक्ति के अगस्त
1: कोई बात नहीं।
0: ये कोई व्यक्ति के अगर अस्थमा रहे तो आपातकालीन स्थिति में जो सांस लेवे में अगर कठिनाई है तो अस्थमा के अटैक आए पे आपातकालीन सहायता ला हर 4 मिनट में उस व्यक्ति के चार अलग अलग पफ देवे के चाहिए। मतलब जो हम सांस लेवे वाले नहीं रहे ओकरा देवे चाहिए। हर
1: इनवेलर,
0: हाँ
1: इनहेलर।
0: हाँ
1: अच्छा।
0: इन्हेलर, और हर पफ के बाद 4 सांस लेवे ला कहे के चाहिए। मतलब
1: अच्छा
0: हर इन्हेलर दे
1: हाँ,
0: लिया
1: ये मतलब कि एक
0: चार।
1: तरह
0: हाँ
1: से जो फर्स्ट एड हो गया,
0: हाँ
1: उस
0: हाँ
1: टाइप का हो गया अगर अटैक आता है तो।
0: इस तरह से। और अभी हमने के जैसे इनहेलर के बात कर ली तो हमने के 2026 के भी थीम भी यही है, अस्थमा से पीड़ित सभी लोगन ला इनहेलर तक पहुंच अभी भी एगो तत्काल आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सही कही। और इस विषय की बात पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी
0: हाँ
1: कि ये जो विषय है इस बात पर प्रकाश डालता है कि अस्थमा से पीड़ित लाखों लोगों को अभी भी जो बुनियादी सूजन रोधी इन्हेलर है तक पहुंच नहीं है, खास करके निम्न और मध्य आय वाले देशों में। तो इसलिए ये थीम रखी गई है कि जो अस्थमा से पीड़ित हैं उन सभी लोगों तक जो है इन्हेलर की पहुंच हो,
0: हाँ
1: क्योंकि अभी के समय में क्या है ना कि इन्हेलर काफ़ी मदद करता है अस्थमा के
0: एकदम
1: मरीजों को। जब भी इस तरह से सांस लेने में परेशानी होती है तो इन्हेलर लेने से उन्हें सुविधा होती है। तो अगर जो इन्हेलर लेते हैं तो सही तरह से उसका उपयोग करें और जब भी कोई समस्या हो नियमित रूप से चिकित्सक की सलाह लेते रहें। और एक ये भी है कि नियमित रूप से व्यायाम और योग करने से भी इस बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सकता
0: और
1: है।
0: हमने के टीकाकरण भी जरूर करावे के चाहिए, कहे कि निमोनिया, डिपथीरिया, टेटनस, बीमार,
1: इन्फ्लुएंजा।
0: हाँ काली खांसी के बचाव वाला टीकाकरण जरूरी होवे। तो हमने के अस्थमा के नियमित रूप से दवाई लेवे के चाहिए या इनहेलर, जो कि बहुते एगो बढ़िया उपाय है अस्थमा रोगी ला। तो हमने के डॉक्टर से सलाह भी जरूर लेवे के चाहिए और दवा के उपयोग करते रहे के चाहिए।
1: तो चलिए, ये तो बातें थी आज विश्व अस्थमा दिवस पर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले सुनते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं ब्रज किशोर दुबे।
0: चल सुना जाए।

0: बढ़िया
1: वाह,
0: लगा गीत
1: बहुत ही नीमा
0: ब्रज
1: दीदी।
0: किशोर दुबे से सुन रहे थे।
1: हाँ
0: आगे फिर और भी इन्हें से हम लोग सुनेंगे। अभी सुनते हैं एक जानकारी की बातें, कुछ
1: अच्छा
0: नाबार्ड द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास की योजनाओं के बारे में। इस विषय पर गौतम कुमार सिंह से बातचीत कर रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
1: चला सुना जाए।
2: नमस्कार। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड अनेक तरह से ग्रामीण विकास की योजनाएं लाई है, जिससे कि ग्रामीणों का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और कृषि विकास भी साथ साथ हो। तो नाबार्ड के द्वारा किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, किस तरह की सब्सिडी आपको दी जा रही है ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह जी को। गौतम कुमार सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नाबार्ड जो है ग्रामीण और कृषि विकास को लेकर बिहार में किस तरह का विजन रखता है?
3: नमस्कार, आपके समस्त श्रोताओं को नाबार्ड की तरफ से मेरा नमस्कार। नाबार्ड का विजन है समावेशी, सतत और समृद्ध ग्रामीण भारत, और हमारा मोटो रहा है कि ग्रामीण समृद्धि के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करना और हर एक ग्रामीण के चेहरे पे मुस्कान लाना हमारा मिशन है। बिहार जैसे राज्य जहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर हैं और ग्रामीण समाज की गहरी सांस्कृतिक विरासत भी है, वहाँ हम कृषि और ग्रामीण विकास को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढालकर काम कर रहे हैं।
2: बिहार में किसानों और ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए नाबार्ड किस तरह से काम कर रहा है?
3: बिहार में हमारा फोकस सिर्फ ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं करना बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त करना है, ताकि विकास हर घर तक पहुंचे और कोई पीछे ना छूटे। अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ग्रामीण आधारभूत संरचना, उसको मजबूत करना, उसका निर्माण करना।

0: जैसे कि ग्रामीण सड़क हो गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं, हॉस्पिटल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कृषि गोडाउन जिसको हम कहते हैं, सिंचाई की सुविधा, चेक डैम, इन सब चीजों के लिए राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार को नाबार्ड मदद कर रही है पिछले करीब 12-15 साल से। अगर हम देखें तो बिहार में करीब 40,000 करोड़ तक हमने मदद किया है सिर्फ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस वित्तीय वर्ष जो अभी 25-26 खत्म हुआ है उसमें भी हमने करीब 1500 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की और 1900 करोड़ के आसपास हमने डिसबर्स किया है बिहार सरकार को।
1: जैसा कि आपने बताया कि बिहार सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उसमें आपका सहयोग रहता है, तो बिहार में नाबार्ड की किसी मुख्य परियोजना के बारे में आप बताएंगे, उसकी सफलता की कहानी क्या रही है?
0: आधारभूत संरचना को अगर हम ले तो कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि नागी नट्टी डैम में जो सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, वो नाबार्ड द्वारा संपोषित रहा है। जो क्यूल नदी पे सिंचाई की सुविधा है चानन में, लखीसराय में, वो भी नाबार्ड के द्वारा संपोषित है। अभी मैं पिछले महीने ही गंडक कैनाल जो है उसके पुनर्द्वार का भी मदद नाबार्ड ने दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो साउथ बिहार है, जो गंगा नदी के दक्षिण में है, वहाँ पे वाटर शेड जैसी परियोजना चलाई गई है, और वाटर शेड जब कंप्लीट हो गया उसके बाद जर्मन की सरकारी एजेंसी KfW है उसके साथ मिलके हमने सॉयल और वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया। जो कंप्लीटेड हमारे पहले के वाटर सेट थे उसको और दुरुस्त करने के लिए, और जो किसान अपने खेत में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और वो एडॉप्ट कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप को, जिससे कि ग्रामीण में आजीविका के अलग से संसाधन बन पाए। अगर हम अभी तक देखें तो करीब 148 हमारे वाटर सेट प्रोजेक्ट पूरे बिहार में संपोषित किए गए हैं, और 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हमने उपचारित किया है। उपचारित इसलिए कर रहे हैं कि जो मिट्टी सॉइल का ऊपरी सतह है, जो उपजाऊ होता है, उसका सरन नहीं हो, और जहाँ हो गया है तो धीरे धीरे वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मजबूत हो, और नीचे जो जल स्तर है उसको भी हम रिचार्ज करें, जिससे कि जहाँ पे मोनोक्रॉप था वहाँ पे दो क्रॉप ले पाए, जहाँ कुछ क्रॉप नहीं ले रहे थे, बैरन लैंड थे, वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर के हम प्रोजेक्ट ले पाए।
1: आजकल स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण विकास या शहरी विकास काफी हो रहा है। स्वयं बिहार सरकार इस पर काफी जोर दे रही है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का विकास और महिलाओं में सशक्तिकरण ज्यादा हो रहा है। तो इस क्षेत्र में नाबार्ड क्या कोई भूमिका निभा रहा है?
0: नाबार्ड का लीडरशिप रोल रहा है। स्वयं सहायता समूह की परिकल्पना ही नाबार्ड द्वारा की गई थी, और जब शुरुआत के दिनों में हम लोग फील्ड में जाके अपने DDM के माध्यम से, जो स्वयं सेवी संस्था के मदद से हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसको बैंक से संपोषित भी कराया बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत, बाद में बिहार में जो आजीविका है, जीविका जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल है, और पूरे देश में बिहार के जीविका का उदाहरण दिया जाता है। और आप देखे भी होंगे कि अभी बिहार सरकार ने एक अलग से निधि बनाया है, जीविका निधि, और हर एक महिला को सशक्त करके अपना उद्यम वो स्टार्ट कर पाए, इंटरप्राइज सेटअप कर पाए, इसके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बिहार सरकार ने 10,000 रुपये का मदद किया है हर एक महिला को, और आगे के फेज़ में 2 लाख तक जो है बैंक के माध्यम से, जीविका मिशन के माध्यम से, निधि के माध्यम से देने का प्रोग्राम है। हम बिहार सरकार के संपर्क में भी हैं, जीविका के CEO से, चाहे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव महोदय से, और जो डेवलपमेंट कमिश्नर इस राज्य के हैं, इनसे हम चर्चा में हैं कि किस तरह से जीविका निधि में सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक उसको फाइनेंसिंग करे, और नाबार्ड उसको रीफाइनेंस करे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उनको रीफाइनेंस करें, जिससे एंड यूज़र को एक कम्पिटिटिव रेट पे अपना इंटरप्राइज सेटअप करने के

0: लिए ऋण मिल पाए।
1: जी, आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। इसके कारण जो है उत्पादन में भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं घट जा रहा है, समय पे वर्षा नहीं होती है और असमय वर्षा का होना, गर्मी का बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो नुकसान है या जो चुनौती है उसे कम करने में नाबार्ड क्या कोई भूमिका निभा रहा है?
0: क्लाइमेट चेंज के लिए जो ग्रीन फाइनेंस कह सकते हैं, ग्रीन लेंडिंग फैसिलिटी कह सकते हैं, उसमें नाबार्ड पानियर रहा है। क्लाइमेट प्रूफिंग की बात हो चाहे क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हो, हम जो ग्रीन क्लाइमेट फंड इंटरनेशनल फंडिंग है, इसके अलावा एडाप्टेशन फंड है, इन सब में नाबार्ड डायरेक्ट इंटाइटी है जो कि वहाँ से लेके फंडिंग कर सकता है, और हम इसके नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी भी हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नाबार्ड ने एक अपना भी फंड सेटअप किया है जिसको हम नाबार्ड ग्रीन लेंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, और हम सबसे कम्पिटिटिव रेट पे भारत में फाइनेंसिंग कर रहे हैं ग्रीन कोई भी इनिशिएटिव हो उसके लिए। इसके अलावा जो हमारा एनआरएम के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे वाटर सेड है या ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत हमने वाडी सेट किया है, ये सब इनिशिएटिव है क्लाइमेट प्रूफिंग के लिए या क्लाइमेट रिजिलिएंट के लिए। अभी रिसेंटली इस पिछले वित्तीय वर्ष में हमने नेचुरल फार्मिंग के दो पायलट बिहार में, एक औरंगाबाद जिला में और एक नवादा जिला में हमने स्वीकृत किया है, और जलवायु रेजिलेंट कृषि के लिए हमने बिहार सरकार के माध्यम से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माध्यम से भी हमने प्रोजेक्ट फंडिंग किया।
1: जी, सहकारिता को सशक्त बनाने हेतु नाबार्ड द्वारा क्या किया जा रहा है, कैसे उसे सहयोगी बना करके उसका विकास किया जा रहा है?
0: माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का एक विजन है कि 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी में 40% जो है सहकारिता क्षेत्र से आना चाहिए, और इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय बिहार सरकार के साथ मिलके सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में नाबार्ड कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे निचले लेवल पे पैक्स है, जिसको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राथमिक कृषि साख समिति हिंदी में कहते हैं, उनको मजबूत करने के लिए हम लोग कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी उनके हर एक्टिविटी में आए और कम मैन पावर में भी वो अपने फंक्शनिंग को अच्छे से कर पाए। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि जो पैक्स कंप्यूटराइज हो गए हैं वो एक एक्टिविटी से ज़्यादा करें, उसको हम मल्टी एक्टिविटी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और बिहार में बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है और डायरेक्शन भी दिया है कि मिनिमम 3 एक्टिविटी हर पैक्स को करना है, वो बढ़ के 10, 20, 30 तक भी एडिशनल एक्टिविटी कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण जो इसी कदम में बिहार सरकार ने कदम उठाया है, एक कोऑपरेटिव बैंक एवं कॉम्फेड के बीच में MOU हुआ है, जिससे जो डेयरी मिल्क सोसाइटी है बिहार में
1: जी
0: या कॉम्फेड के सुधा के जितने भी फेडरेशंस हैं, सबका अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में खुलेगा, और जो किसानों के ऋण की ज़रूरत है, चाहे वो डेयरी के लिए KCC की ज़रूरत हो, चाहे उनके इक्विपमेंट के लिए या एडिशनल पशु के लिए उनको ज़रूरत है, वो सारे ऋण की फैसिलिटी सहकारी बैंकों द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, और नाबार्ड से वो रीफाइनेंस उसके अगेंस्ट में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेल कर सकता है।
1: जी, अब कुछ बात जैन जी की। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे युवा हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उनके विकास के लिए और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए नाबार्ड क्या भूमिका निभा रहा है?
0: जैन जी के लिए मेनली जो रूरल एरिया के रहने वाले हैं या शहरी क्षेत्र में भी जो युवक हैं जो अपना रोजगार करना चाह रहे हैं, उस उनके कौशल विकास के लिए हमारे पास प्रोग्राम है, और नाबार्ड से जुड़ के कोई भी स्वयंसेवी संस्थाएं या कॉरपोरेट्स के जो फाउंडेशन होते हैं CSR, वो हमसे ट्रेनिंग स्वीकृत करा के ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें।

0: और ये युवा या तो कहीं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र और गांव में भी काफ़ी इनोवेटिव आइडिया भी कई लोगों के पास आता है। और स्टार्टअप में बिहार का स्टार्टअप पॉलिसी भारत में सबसे अच्छा माना जाता है। और बिहार में कई स्टार्टअप जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या कृषि या ग्रामीण विकास के किसी न किसी पहलू के इंटरवेंशंस के लिए वो फोकस्ड हैं। नाबार्ड में इसके लिए फंड है, नाबार्ड की सब्सिडरी भी है जो स्टार्टअप को फाइनेंसिंग करती है। ऐसे युवा आके नाबार्ड से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए एक्सएलआरआई में नाबार्ड ने रूरल इनक्यूबेशन सेंटर के लिए सपोर्ट किया है। मैं बिहार में सितंबर 2025 में सीजीएम के रूप में जो चार्ज लिया है, इसके पूर्व मैं झारखंड में था। और जब झारखंड में मैं था उसी समय हमने पहल किया था एक्सएलआरआई को रूरल इनक्यूबेशन सेंटर या एग्री इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में मदद करके उसको स्पोक एंड हब मॉडल में पूरे नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया जो है, जैसे झारखंड हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनको कैटर करें और यहाँ के युवक को बड़े व्यवसायी बनाए, जिससे कि वो सिर्फ जॉब सीकर ना रहे बल्कि जॉब प्रोवाइडर बन जाए। तो हमें उम्मीद है कि उस सेंटर का लाभ हमारे बिहार के युवा भी लेंगे। और इसके अलावा भी अगर कुछ सपोर्ट उन्हें चाहिए तो हमारे हर एक जिला में जिला विकास प्रबंधक है, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं या पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में आके हमसे संपर्क करके लाभ ले सकते हैं।
1: जी गौतम कुमार सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वाह, बहुत ही
3: बहुत ही
2: जानकारी
3: नीमन
2: मिली।
3: जानकारी। भेंट वार्ता रहल नाबार्ड द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विभाग की योजनाएं, और भेंट वार्ता कर रहल थीन गौतम कुमार सिंह, और इनका से बातचीत कर रहल थीन हल श्रीनिवास साह।
2: दोनों को
3: दोनों
2: बहुत बहुत
3: लोगों के
2: धन्यवाद।
3: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अदी इतना निमन जानकारी भेटलक तो कहने को निमन से गीत,
2: हाँ
3: आ
2: हाँ
3: गीत में हम सुना रही अपने के झूमर गीत, तो सुनथिन ब्रज किशोर दुबे से ई झूमर गीत।

0: वाह, ये
1: इतना
0: तो बहुत
1: निमन
0: बढ़िया
1: झुमर
0: था।
1: गीत कि हम झुमा दे गीत। तो ब्रज किशोर दुबे के गीत ला बहुत बहुत धन्यवाद
0: आगे
1: आपके।
0: फिर खेती गृहस्थी में तो
1: हाँ
0: सुनेंगे हम
1: जरूर।
0: लोग।
1: तो अब यही के संगे हमने के चौपाल के समय और याद रही है और हम सब बातचीत करबे खेती गृहस्थी में।
0: अब खेती गृहस्थी में निमिषा जी
1: हाँ
0: पहले सुनते हैं एक प्रायोजित कार्यक्रम, जो फिट है वो हिट है।
1: चला सुनल जाए।

नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। आपके घर आंगन में आ गया कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है लेकर। कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है हम वर्षों से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वैसे लोगों के लिए, खास करके जिन्हें हड्डी और नस की समस्या है, बहुत परेशान हैं। कहते हैं ना कि शरीर में कहीं भी कोई विकार आ जाए ना, तो फिर आप जीवन का मजा नहीं ले पाते हैं। और हड्डी और नस हमारे शरीर का एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है, उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है हम लेकर आते हैं आप सबों के लिए साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय

0: जी की गली है, उसी गली में है और यहाँ बैठते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। वर्षों का साथ है, हाँ, बाहर से, बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं और जहाँ तक आकाशवाणी से आवाज पहुँचती है आप लोगों ने कहा है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये हम नहीं बोलते, आपके फोन कॉल्स बोलते हैं, बहुत अच्छा इलाज होता है, आप सभी बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, हम सीधे सीधे कंटेंट पर बातें करते हैं और हमारी मंशा सिर्फ इतनी होती है कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। हम डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का नंबर आपको बताते हैं कार्यक्रम के अंदर कि कहीं भी आपको ऐसा लगे तो आप सीधे सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। नंबर है 8877372299 8877372299। ये नंबर है, इस पर आप फोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो जी में आए कर सकते हैं। आफ्टर ऑल सेहत का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, आपको निरोगी रहना है और जीवन का आनंद लेना है। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, हम उनको बुलाते हैं कार्यक्रम के अंदर में, लेकिन उससे पहले हम दो चार बातें शेयर करना चाहते हैं जो आपने हमसे फोन पर कही थी। और वो कही थी कि साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में नए नए मशीन आए हैं जिससे इलाज बड़ा अच्छा होता है, हम ठीक हो गए, आप थैंक यू भी कहते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो जानेंगे आज सबसे पहले राजीव से, डॉक्टर राजीव से कि क्या क्या है, वो कौन सी मशीनें हैं। डॉक्टर राजीव आप आ जाइए कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ डॉक्टर राजीव, आप सभी के स्वागत में।
0: डॉक्टर सिंह, हमें पता है कि आपने एकदम पटना में एकदम नीचे से शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का इलाज करते करते आज आप यहां तक पहुंचे हैं। आपका साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर लोगों की सेवा में लगा है और हड्डी और नस का इलाज होता है। बहरहाल हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि आपके आपके क्लिनिक में, आपके साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में नए नए मशीन आ गई है जिससे इलाज होता है और इलाज बहुत ही सक्सेसफुल होता है, उसके विषय में हमें कुछ बताइए।
1: ये वैसे तो राजेश जी, हमारे यहाँ सारे इक्विपमेंट्स हैं और आज नहीं बहुत टाइम से इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो रखे हैं, लेकिन फिलहाल जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में चर्चा है वो है स्पाइनल डिकम्प्रेशन और नी डिकम्प्रेशन। ये उस बीमारी के लिए है जिनके घुटने सट गए हैं, जिनके घुटने टेढ़े हो गए हैं, जिनके घुटने का ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो उसको खोलने की, बिना ऑपरेशन से खोलने की विधि को डिकम्प्रेशन कहते हैं। मतलब कोई चीज कंप्रेस हो गया, सट गया, उसको खोल देना है बिना ऑपरेशन का, तो रोबोटिक डिकम्प्रेशन नी ज्वाइंट के लिए, घुटना के लिए स्पेशली। और एक जो ट्रीटमेंट है स्पाइनल डिकम्प्रेशन, जिसमें कमर में जिनका नसें दब जाती है, जिनको साइटिका की बीमारी है, जिनके कमर से पैरों में दर्द आ रहे हैं, तो वैसे लोग भी बहुत बार क्या होता है कि सर्जरी में फंस जाते हैं और ऐसा नहीं कि सर्जरी कराने के बाद ठीक हो जाते हैं, ना, फिर भी दिक्कत ही रहता है। तो हम क्यों सर्जरी कराने जाए जब हमको दिक्कत ही रहता है। तो अब जो हम लोग लेके आए हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स स्पाइनल डिकम्प्रेशन में, उसमें कोई ऑपरेशन, कोई चीरा की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर से ही आपका नस खुल जाएगा, बाहर से ही खुल जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड, AI बेस्ड ट्रीटमेंट आजकल शुरू हो गया है। वैसे ही मशीनों में इतना सिस्टम आ गया कि आपके अंदर में क्या क्या गड़बड़ी है वो सब दिख जाता है, तो उससे मशीनों के द्वारा आपके नसों को खोल दिया जाता है, आपके घुटने को खोल दिया जाता है।
0: कार्यक्रम चल रहा है, जो फिट है वो हिट है। मैं हूँ राजेश और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हमारे साथ बैठे हैं और आप लोग अपने घर पर बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है और वो ये है कि वैसे लोग जिनके गर्दन से हाथों में दर्द आता है और बहुत तड़तड़ाहट होती है, कंधा जाम हो जाता है, तो वैसे पेशेंट का क्या इलाज हो सकता है इस नई विधि से?
1: देखिए राजेश जी, ये भी बीमारी जो है, ये आप समझिए कि कॉमन बीमारी है। मैक्सिमम लोगों का कंधा जाम रहता है या गर्दन से हाथों में दर्द आता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बीमारी को ही ठीक करने के लिए डिकम्प्रेशन यूनिट लाया गया है। कि कहीं भी दर्द की समस्या है, अगर वहां पे प्रेशर है, नसों में, हड्डियों में प्रेशर है, तो उसको रिलीज किया जाता है। गर्दन से कंधा में आर

0: है तो उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। मतलब सर्वाइकल मतलब गर्दन, रेडिकुलोपैथी मतलब रेडिएट करना, गर्दन से जो रेडिएशन होता है हाथों में उसी को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। कभी कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, उसके कारण होता है जो शुगर के मरीज है, जिनको चीनी की बीमारी है, उनका कंधा जाम होता ही होता है। तो वैसे लोगों को भी मैं कहूंगा कि आपका अगर ऐसी परेशानी होती है, रात में सोने वक्त आपका कंधा बहुत दर्द करता है, तो उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कंधा दर्द आपके हार्ट पेन का कारण हो सकता है, हार्ट अटैक करा सकता है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो साथियों, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, हम सिर्फ जानकारियां भेजते हैं आपके यहाँ, इसके आगे कुछ भी नहीं। बहरहाल कार्यक्रम चल रहा है, जो फिट है वो हिट है, और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हमारे यहाँ बैठे हैं स्टूडियो के अंदर में। हम डॉक्टर राजीव का नंबर बताते हैं, आप अलग से बात कर सकते हैं, 8877372299 8877372299 ये नंबर है। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर साहब, एक समस्या है, घुटना की समस्या, जिससे बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग परेशान हैं। अरे टखने का दर्द है, घुटना मुड़ता नहीं है, क्या करें, ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, हाँ फिर भी घुटना खराब हो गया है। इस घुटने के दर्द से कैसे निजात पाया जाए, इसकी पूरी जानकारी आज हमारे सुनने वालों को दीजिए।
0: देखिए राजेश जी, घुटना जहां तक की सवाल है, तो घुटना सच में हमारे शरीर का प्रमुख पार्ट है, ये चक्का है, इसी चक्का पे इंसान चलता है, और चक्का एक ना एक दिन घिसेगा ही, तो घिसता है तो क्या करते हैं, चक्का या तो पूरा चेंज करवा लीजिए, नहीं तो उसका रिपेयरिंग कराते हैं, उसके पंचर को बनवाते हैं, उसमें हवा भरवाते हैं और चलाते हैं कि चलो भाई काम चलाऊं, एटलीस्ट चलेगा। वैसे ही हमारे शरीर का एक लेवल होता है, एक एज फैक्टर होता है। अगर किसी का घुटना 40 साल में खराब हो गया, इस चीज को एकदम बारीकी से सुनिएगा, अगर 40 साल में खराब हो गया तो आपके पास 40 साल और है जिंदा रहने के लिए। तो अगर आप उस वक्त घुटना को बचाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर पूरा बैठ गया घुटना तो आपको रिप्लेसमेंट करवानी है, इसमें सोचना नहीं है, और रिप्लेसमेंट भी वो करवाना है जो सबसे महंगा हो। सस्ता कभी भी ऑपरेशन सस्ता नहीं करवाना चाहिए, और कोई भी इलाज सस्ता करवाइए लेकिन ऑपरेशन सस्ता नहीं करवाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अंग जो है आपका जो पार्ट्स है वो चेंज होता है, अगर उसी पार्ट्स में, जैसे आप मशीन ही खरीदते हैं और मशीन का अगर कोई पार्ट खराब हो गया, जाके आप सिंपल माल लगा दीजिए तो कितना दिन मशीन चलेगा, लोडे नहीं लेगा, दो चार दस दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। वैसे ही घुटना में अगर अच्छा मटेरियल नहीं डलेगा तो वो आपका घुटना खराब होना है। तो हमेशा अगर तभी आप बदलवाने की कोशिश करिए जो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपके पास पैसे हैं, नहीं तो अपने नेचुरल तरीका को बचाइए। और घुटना में सबसे बढ़िया इलाज है सस्ता सुविस्ता, कि उसके अंदर लुब्रिकेशन, साइनोविल फ्लूड, हाइलोनोरिक एसिड, जिसको कोई ग्रीस समझ लीजिए अपने पास में, उसको डलवाइए। और जितना घुटना बैठा है, घुटना तीन तरीके से बैठता है राजेश जी, या तो अंदर की तरफ, या बाहर की तरफ, या सीधे सीधे बैठता है, तो वो कंप्यूटराइज तीनों चेक किया जाता है एक्सरे करके, और उसी हिसाब से प्लानिंग करके 10 दिन 20 दिन जितना दिन भी समय लगे आपको साई हेल्थ केयर में रखा जाता है, और घुटना को खोल दिया जाता है बिना ऑपरेशन का। थोड़ा सा पैसा तो खर्च होगा ही, आप समझिए कि हर कुछ कार्ड से, इस कार्ड से, इंश्योरेंस से हो जाए तो संभव नहीं, क्योंकि ये जो इलाज है वो विदेशी इलाज है, विदेशी इलाज है, विदेशी इलाज अभी बहुत सारे कार्ड में उपलब्ध नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ ये है कि ऑपरेशन से बहुत सस्ता ये इलाज है, बहुत ही सस्ता, ऑपरेशन कहा 10 लाख, ये 25-30-40 हजार मैक्सिमम, तो ये आपका इलाज हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं, और लाइफ के रूटीन में एक्सरसाइज प्लान कर दी जाती है, उसको करते रहिए करते रहिए, तो जिसे क्या होगा कि ना जाम पकड़ेगा ना आपको दर्द होगा।
1: नंबर नोट करें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का, 8877372299 8877372299। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर राजीव, आपने कहा था कि रीढ़ की हड्डी का कोई भी नस अगर दब रहा है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं।

0: ऐसे दबा हुआ नस खुल जाएगा, इसके बारे में विस्तार से बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: देखिए राजेश जी, मैं तो ऑलवेज अच्छे से समझाता हूँ। रीढ़ की हड्डी जहाँ जहाँ फोल्ड होता है, रीढ़ की हड्डी कहाँ फोल्ड होगा आप बताइएगा? कमर में, गर्दन से नीचे कहाँ कहाँ फोल्ड होगा? गर्दन पे फोल्ड होगा और कमर में फोल्ड होगा, नीचे में। बीच में से तो हड्डी फोल्ड होता नहीं है। पीठ, जो आपका पीठ है, आपका स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, जो भी समझ रहे जिस भाषा में, बीच से फोल्ड नहीं ना होता है, नीचे से फोल्ड होगा चाहे ऊपर से गर्दन से फोल्ड होगा। तो जहां जहां फोल्ड होने की समस्या है कहीं भी शरीर में, ये तो रीढ़ की हड्डी की आप बात कर रहे हैं, जहां भी फोल्डिंग व्यवस्था है भगवान ने बनाया है, वहां एक तरह का लुब्रिकेशन होता है, और लुब्रिकेशन खत्म होता है माने ग्रीस खत्म होता है, और बीमारी सबसे ज्यादा जहां फोल्डिंग वाला व्यवस्था होता है भगवान का, वही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको फोल्ड होना है, फोल्ड होगा तो घिसेगा ही तो कुशन उसके अंदर होता है, वो फटेगा ही। तो स्पाइन में अगर आपके गर्दन पे नस दबा

0: पता नहीं है, पीठ जो आपका पीठ है, आपका स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, जो भी समझ रहे जिस भाषा में, बीच से फोल्ड नहीं ना होता है, नीचे से फोल्ड होगा चाहे ऊपर से गर्दन से फोल्ड होगा, तो जहां जहां फोल्ड होने की समस्या है कहीं भी शरीर में, ये तो रीढ़ की हड्डी की आप बात कर रहे हैं, जहां भी फोल्डिंग व्यवस्था है भगवान ने बनाया है, वहां एक तरह का लुब्रिकेशन होता है, और लुब्रिकेशन खत्म होता है माने ग्रीस खत्म होता है, और बीमारी सबसे ज्यादा जहां फोल्डिंग वाला व्यवस्था होता है भगवान का वहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको फोल्ड होना है, फोल्ड होगा तो घिसेगा ही, घिसेगा ही तो कुशन उसके अंदर होता है, फटेगा ही। तो स्पाइन में अगर आपके गर्दन पे नस दब रहा है तो समझ लेना है कि आपके हाथ में परेशानी आएगी। वैसे ही अगर कमर में नस दब रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका पैर में परेशानी आएगी। एकदम समझने वाली बात है, कोई डॉक्टर इधर उधर भी समझाया तो नहीं समझना है, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ एकदम नेचुरल भाषा में समझा रहा हूँ, जो आप अभी डॉक्टर बन जाइएगा सुन के, ठीक है ना। तो जब गर्दन जहां से फोल्ड हो रहा है वहां 5-6 नंबर की हड्डी होती है, और वैसे ही कमर की जहां फोल्ड होता है वहां भी 4-5 नंबर की हड्डी होती है, वही 5 हमेशा आपके साथ रहेगा। एकदम याद रहेगा 5 नंबर हमेशा साथ रहता है, और बीच का नंबर होता है, न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं बीच का नंबर होता है, तो वहीं से नसें ज्यादातर दबती है। तो अब क्या करना है कि जो हम लोग करते हैं कि हमारे पास नी डिकम्प्रेशन, स्पाइनल डिकम्प्रेशन, ये मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा उपलब्धि है कि वैसी मशीनें बना दिया और हम लोगों ने विदेशों से यहां मंगा लिया, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन सब चीजों में, याद रखिएगा इस बातों को। फिर भी हमने इसलिए सोचा कि नहीं, बहुत सारे लोगों का कमर कट रहा है, गर्दन कट रहा है, घुटना कट रहा है, क्यों कटना, बकरे की तरह कटाए जा रहे हैं, क्या जरूरत है, जब आपके पास बिना कटे हुए ही आप ठीक हो जाएंगे तो वो चीज कराइए ना।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात कही आपने, और इसी बात पर हम नंबर बताए दे रहे हैं क्योंकि लोगों का सवाल आ रहा होगा, नंबर नोट कर ले, कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूछिएगा, 8877372299, 8877372299। जब डॉक्टर हो पास तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका डॉक्टर राजीव। हाँ हाँ, तो सुनते जाइए कार्यक्रम, हाँ फिर से आएंगे आपके लिए कार्यक्रम, जो फिट है वो हिट है लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हमारी मंशा है। आज के लिए दीजिए राजेश को इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।
3: ये था प्रायोजित कार्यक्रम, जो फिट है वो हिट है। हाँ। और निमेशा जी, अब कुछ खेती बाड़ी की बातें कर लीजिए। हाँ।
4: और हमने के किसान लोगन भी इंतजार में रहते हैं कि आज का जानकारी मिले। तो दीदी देखा, खेती बाड़ी की बात रहे तो हमने के फसल निमन रहे, और फसल में अगर निमन फसल उपजा हो जाए जेकरा से हमने के फायदा रहे, उसके कितना फायदेमंद। काहे कि आजकल जैसे हमने के वातावरण हो गए, ओकरा में हमने के ऐसा अनाज खाए के चाहिए या हमने के ऐसा आहार रहे के चाहिए जेकरे से हमने के स्वस्थ जीवन शैली अपना सके।
3: और एकरा में इसके लिए जरूरी है कि मिट्टी भी स्वस्थ रहे,
4: एकदम
3: मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और अभी देखिए क्या है कि खेतों की जो स्थिति है, गेहूं और लगभग कटाई हो गई है या हाँ। कहीं हो रही है, फिर उसके बाद धान में भी समय है, तो इस समय का उपयोग हम कर सकते हैं कुछ करने के लिए। हाँ, खैर बहरहाल आज हम बात करेंगे मूंग की फसल की देखभाल में। अभी हाँ। देखिए मूंग जो है दलहनी फसलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो कि बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, और इसकी खेती दो बार होती है, एक जायद में और एक खरीफ के मौसम में। हाँ। की जाती है। तो अभी जो है जो जायद वाली फसल हाँ। लगी हुई है ग्रीष्मकालीन वाली, तो आवश्यकता है कि हम उसकी देखभाल अच्छे से करें ताकि फसल अच्छी हो।
4: और ग्रीष्मकालीन जैसे मूंग रह ली है, तो मूंग के पहले बता दी फायदा का है। मूंग में प्रोटीन होवे है, फाइबर होवे है, विटामिन होवे है, एकरा के पावर हाउस कहल जा है। ये पाचन सुधारे है, वजन के घटावे है और मांसपेशी के मजबूत करे है। इसमें आयरन भी बहुत मात्रा में है, और ये त्वचा और बाल ला भी बहुत निमन कहल जा है।
3: ये कहा जाता है ना कि सुबह सुबह अंकुरित मूंग एक मुट्ठी भी खा ले तो बहुत फायदा करता है।
4: तो दीदी जैसे ना ग्रीष्मकालीन के मूंग के बात कर ली, तो मूंग के ग्रीष्मकालीन में हमने के तो पहले तो एक मट्टी कैसा रहे के चाहिए, तो एक दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी निमन होवे है। और एक ग्रीष्मकालीन मूंग में सिंचाई की जरूरत पड़े है, पहलका सिंचाई जरा में 4 सिंचाई की जरूरत पड़े है। पहलका सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, फिर 15 दिन के अंतराल पर करे के चाहिए। खासे करके फूल आवे घड़ी और फलियाँ आवे घड़ी सिंचाई जरूर करे के चाहिए और पानी जरूर।

0: का चाहिए।
1: देखिए, जो फसल की देखभाल अगर हम समय समय पर नहीं करेंगे तो जितना हम सोचते हैं उतनी अच्छी फसल नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय पर उचित तरीके से सिंचाई प्रबंधन किया जाए, खरपतवार नियंत्रण किया जाए, उचित खाद का प्रयोग किया जाए
0: हाँ
1: और जो भी फसल में कीट व्याधि आती है उसका नियंत्रण किया जाए। तो अभी सिंचाई के बारे में तो आपने बताया ही कि सिंचाई गर्मी, वैसे देखिए मूंग की फसल में सिंचाई की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि ग्रीष्मकालीन है तो जब तक गर्मी बहुत पड़ती है तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली सिंचाई तो जैसा कि आपने कहा कि 20 से 25 दिन पर, और इसके बाद हर 10 से 15 दिन में मिट्टी की नमी को जांच करते हुए कि अगर मिट्टी
0: हाँ
1: में नमी नहीं है तो, जैसे कि अभी बारिश हो गई है तो ऐसा नहीं कि 10-15 दिन हो गया तो हम
0: तो
1: दे दें,
0: पानी
1: लेकिन
0: बचा
1: देख
0: दिया।
1: करके ही,
0: हाँ
1: इसीलिए
0: यार,
1: कहते हैं कि उसको पहले खेत के देख लेना चाहिए कि फसल को ज़रूरत है कि नहीं है। अलावा इसके खरपतवार नियंत्रण है तो इसके लिए जो है बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद पहली बार, और फिर 40 से 25 दिनों के बाद इसकी निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी में हवा का संचार बना रहता है और फसल अच्छी होती है।
0: हाँ दीदी, देखिए हमने जब मूंग के खेती करी तो एक अलग हमने के जरूरी है कि हमने के उन्नत किस्म के लेवल जाए, जेकरा से हमने के पैदावार खूब निमन मिले। तो उन्नत किस्म में बहुत तरह के जिसम किस्म है, विराट, SML 668, IPM 02 3, IPM 02 14, Star 452। ये सब किस्म जो है कम समय में ज्यादा उत्पादन देवे है, और हमने कोई भी बीज ली ओकरा बीज उपचार जरूर कर लेवे का चाहिए। बुआई से पहले बीज के कार्बेंडाजिम या थायरम के 2 से 3 ग्राम लेके हर किलोग्राम पे बीज पे करे के चाहिए, और फिर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करे के चाहिए। एकरा से का होवे कि पैदावार जो है 10 से 15% तक बढ़ जाए। और हमी के जब सिंचाई के संगे जब फूल आवे लगे तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरोन मिला के छिड़काव करे के चाहिए। एकरा से का हो जाती कि फूल ज्यादा आवे है और वो झड़े ना है। और खाद प्रबंधन ला हमनी के बुआई के समय ही एक हर प्रति एकड़ पे 12 किलोग्राम यूरिया और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट SSP के प्रयोग करे के चाहिए। सल्फर युक्त खाद के प्रयोग दाना की गुणवत्ता के बढ़ावे है।
1: और देखिए मूंग की फसल में जब फूल आने लगते हैं तो उस
0: हाँ
1: समय, यानी कि जब लगभग 35 से 40 दिन की फसल हो जाती है,
0: हाँ हाँ
1: तब यूरिया का हल्का घोल अगर स्प्रे करते हैं तो इससे फलियों की संख्या में वृद्धि होती
0: हाँ
1: है। तो इतनी सारी हमने बातें की, तो देखभाल फसल की करने में एक मुख्य बात जो होती है कीट व्याधि के
0: हाँ
1: बारे में जानना, कौन से कीट लगते हैं और कौन सी व्याधि लगती है और उनका नियंत्रण कैसे कर किया जाता है, इनके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो मूंग की फसल में मुख्य तौर से सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और माहो प्रमुख कीट हैं जो कि इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा, नीम ऑयल का छिड़काव करें या फिर इमिडाक्लोफिर जैसी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।
0: हाँ तो देखिए दीदी, अगर हमने के फसल नहीं मन रहती तो हमने सबके मन हमेशा झूमते रहते, और कृषि में हमने खेती बाड़ी कर रही तो हमने के गीत नाद होते रहे और हमने सब काम करते रहे, चाहे कोई भी काम रहे खेती के। तो हमने सब कहना सुनल जाए ये बेरा भी कृषि गीत
1: सुनते
0: तो
1: हैं ब्रज
0: सुना।
1: किशोर दुबे से ये गीत।

0: वाह,
1: गीत
0: इसी
1: बढ़िया
0: गीत
1: था।
0: रहा ब्रज किशोर दुबे की
1: दुबे
0: आवाज
1: से
0: में।
1: तो सारे गीतों के लिए इनको
0: हाँ
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब
0: धन्यवाद दीदी।
1: समय हो रहा है विदा लेने का, चले हम लोग।
0: हाँ कहा कि हम आज जावे तो कल आईवे दी, चल जाए प्रणाम सुधल दी।
1: नमस्कार निमिषा जी।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का हवाई निरीक्षण किया। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को शीघ्र ठीक कराने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को होगा विस्तार। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। गया एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का हवाई निरीक्षण किया। संवाददाताओं से बातचीत में भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को जल्द से जल्द ठीक कराने का निर्देश दिया है।
1: माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं एरियल सर्वे किया गया है, जो हमारा पुल का जो ब्रिस्ट पार्ट है उसका, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शीघ्र हम लोग काम स्टार्ट करें, आम लोगों के आने जाने के लिए इस मार्ग को हम लोग सुगम बनाएं। पूरी टीम उस पे काम कर रही है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुंगेर में मुंगेर भागलपुर गंगा पथ निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल जाकर कार्यों का निरीक्षण भी किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हों, गिरिराज जी हों, नित्यानंद राय जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: इस बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार पिछली सरकार के लिए तय फार्मूले के आधार पर ही होगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
2: बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। इतना जरूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था, संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर में पार्टी की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम सह महाअभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार और पार्टी के बीच समन्वय बनाकर चलने का आह्वान किया। मुंगेर भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार पौद्दार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है।
3: देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग। इसमें अपने कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं।
0: इससे पहले श्री चौधरी मुंगेर के ज्योति मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुपति बालाजी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री बिहार योग विद्यालय में आयोजित श्रीनिवास कल्याणोत्सव आरती समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को नमन किया। इसके बाद राष्ट्रपति तो लाम वियतनामी मठ पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता की। उनके इस दौरे को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पूर्व गया हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज गया स्थित ऑफिसर्स अकादमी का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सैन्य अधिकारियों और ऑफिसर्स कैडेट्स के बीच सैन्य नेतृत्व की भावना विषय पर व्याख्यान दिया। श्री हसनैन ने ईमानदारी, पेशेवर उत्कृष्टता, निरंतर सीखने की ललक और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की अटूट भावना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय सेना में 4 दशकों के अपने अनुभव भी साझा किए। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। बेगूसराय के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ऋषिक

0: कांत ने लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
1: राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शुलानीय मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू अधिग्रहण, राजस्व बैंक ऋण विवाद, बिजली एवं पानी बिल, माप तौल, वन अधिनियम, साथ ही इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार ट्रैफिक चलान के मामले का भी समाधान होगा। वैसे चलान जो 90 दिन से ज्यादा पुराना, उसका निस्तारण 50% छूट पर किया जाएगा। ट्रैफिक चलान के मामले के निष्पादन के लिए अलग से बेंचों का गठन किया गया है।
0: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या के आंकड़े और चौहद्दी का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। प्रारूप पर 18 मई तक दावा और आपत्ति ली जाएगी। आपत्तियों का निपटारा 22 मई को किया जाएगा, जबकि प्रारूप सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जून तक किए जाने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और अररिया समेत 12 जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट है।
6: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान हाजीपुर में सबसे अधिक 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार कुल 1230 पदों पर नियुक्ति होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा जुलाई महीने में संभावित है। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया है। इस सूची के आधार पर 12 मई तक छात्र आवंटित विद्यालय में नामांकन ले सकेंगे। विस्तृत जानकारी समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने 5,639 शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की है। ये सभी शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से गायब पाए गए थे या फिर विलंब से विद्यालय पहुंचे थे। इन सभी शिक्षकों को 72 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
7: ये एक्चुअली इधर हम लोग मॉनिटरिंग के क्रम में पाया गया कि कुछ शिक्षक जो है ई शिक्षा कोर्स पर महात्मा ड्यूटी करते हुए न तो विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और न ही जनगणना का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना पाने पर

0: जब हम लोगों ने इस शिक्षा कोष में उसका विश्लेषण किया तो पाया गया लगभग 5,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ये लगभग मार्क ऑन ड्यूटी ये की हुई थी।
1: पूर्व मध्य रेल के सरायगढ़ और देवघर के बीच 7 मई से अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। विक्रमशिला सेतु पर यातायात बंद होने के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन सुपौल, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर के रास्ते देवघर तक चलेगी। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत बड़हरवा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस और आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 4 नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से 4 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के सीमा चौकी नरपत पट्टी के पास से एसएसपी और पुलिस की टीम ने 133 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सासाराम समाहरणालय में शाहबाद क्षेत्र के किसान उत्पादक समितियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को आधुनिक विपणन व्यवस्था, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दोहन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए 30 मई तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। भोजपुर जिला नियोजनालय में आज से एक दिवसीय नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में आई कंपनी ने 35 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया। युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छपरा के भिखारी ठाकुर सभागार में 7 मई को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कैमूर जिला प्रशासन ने भभुआ नगर परिषद के सभापति का कार्यभार उप सभापति रविता पटेल को सौंप दिया है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण के मामले में कटिहार जिला राज्य भर में 4th स्थान पर पहुंच गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का हवाई निरीक्षण किया। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को शीघ्र ठीक कराने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को होगा विस्तार। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। गया एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
6: शिवहर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का कार्य संपन्न हो गया। 1 अप्रैल से शुरू यह अभियान 1 मई तक चला। इस दौरान नागरिकों के ने जनगणना की

0: आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भागीदारी सुनिश्चित की। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वगणना के बाद अब जिले में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत 31 मई तक प्रगणक घर घर जाकर स्वगणना के दौरान भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे और जिसकी जानकारी छूट गई है उन्हें भी शामिल किया जाएगा।
1: पहला जो चरण है ये सेल्फ एनुमरेशन का चरण है, इसमें स्वयं करना है। जो दूसरा चरण होगा उसमें लोग घर घर जाकर छूटा हुआ होगा उसकी एंट्री करेंगे और जो लोग अभी इस प्रथम चरण में अपनी एंट्री कर लेंगे उस एंट्री का सत्यापन।
0: काल बैसाखी के प्रभाव से जिले में पिछले एक सप्ताह से आंधी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो गई है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण लीची, आम और सब्जी की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। किसानों की तैयार फसलें प्रभावित हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर जल जमाव एवं कीचड़ की स्थिति बन गई है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को दैनिक कामकाज के लिए आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और शिवहर के उप विकास आयुक्त ब्रजेश कुमार को राज्य सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनकी संपत्तियों पर छापेमारी के लगभग 40 दिनों के बाद की गई है। सरकारी आदेश के बाद जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेधावी को DDC का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। मेधावी ने शनिवार की शाम को प्रभार ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि विशेष निगरानी इकाई की टीम ने 24 मार्च को ब्रजेश कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इनमें पटना स्थित उनका आवास, सीतामढ़ी स्थित ससुराल, पश्चिमी चंपारण का पैतृक गांव और शिवहर स्थित सरकारी आवास शामिल थे। बीते दिनों तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह शिवहर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और उसके समग्र विकास को लेकर अधिकारियों को ठोस पहल करने का निर्देश दिए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध संसाधनों, कनेक्टिविटी तथा आधारभूत संरचना की संभावनाओं का जायजा लिया। इसके बाद श्री सिंह ने तरियानी प्रखंड कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, बिजली पानी की उपलब्धता और निवेश आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिल सके। उन्होंने बताया कि शिवहर जिले के तरियानी अंचल के बेलाही दुल्लह गांव थाना संख्या 141 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि चिन्हित की गई है। यहां कुल लगभग 253 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पश्चिम बंगाल, आसाम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी राजनीतिक दलों ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत से जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। जिले के समरनाले में बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं और संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों एवं प्रखंड स्वास्थ्य समन्वयकों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को बेहतर उपचार करने का निर्देश दिए। बीते दिनों कृषि विभाग की ओर से संयुक्त कृषि भवन परिसर में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में नवाचार गतिविधियों के तहत केला की खेती और केला रेशा प्रसंस्करण के संबंध में जानकारी दी गई। इस शिविर का उद्घाटन जिला कृषि अधिकारी प्रीति कुमारी ने किया। शिविर में प्रगतिशील किसानों और जीविका समूह की दीदियों को केला की खेती और रेशा प्रसंस्करण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिवहर जिले में संविधान शिल्पी बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ के जिला इकाई के तत्वावधान में गांधी नगर भवन में जयंती समारोह आयोजित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम

अभी आप श्रीमती डे के स्वर में गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म से ये प्यारा सा गीत। लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राहुल शर्मा ने।

अगला गीत हमने लिया है हमराज फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। सुधाकर शर्मा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात

21 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है साजन फिल्म से, अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है सड़क फिल्म से, अनुराधा पौडवाल की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म का ये गीत कुमार शानू की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं मेहंदी हसन।

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए बहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

दो शेर नए हैं, अहमद फराज साहब के नहीं है, लेकिन रदीफ और काफिया एक ही है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अहमद फराज साहब ने पहले गजल लिखी है या उन शायर ने पहले गजल कही है, तो उनके शेर हैं।

0: अभी आप मेहंदी हसन के स्वर में गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।

0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शत प्रतिशत ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा

0: सभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को

0: एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fiber, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
1: The scheme aims to develop high-yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests, while promoting the large-scale adoption of modern crop production technologies. The scheme is expected to benefit around 32 lakh cotton farmers and boost

0: it for a record-extending third time in March. With this achievement, India continues to hold the top position in the rankings with 275 rating points. England are second, while Australia are third. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to two more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugar cane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured three internationals. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फराहमी के सिलसिले में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के दो मजीद यूनिटों की मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपए फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में 4 का इजाफा करके 37 कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा पर हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और क्रिकेट में भारत ने आईसीसी मर्दों की टी20 रैंकिंग में अपने पहले मकाम को बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कपास की पैदावारियत के मिशन कपास क्रांति को 5,660 करोड़ रुपए की रकम के साथ मंजूरी दी है, ताकि भारत के कपास के सेक्टर में राह पा जाने वाली रुकावटों, तरक्की में कमी और मेयार से मुतालिक तशवीश को दूर किया जा सके। नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने बताया कि ये मिशन हुकूमत के 5F विजन से मुताबिकत रखता है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: वजीर मौसूफ ने कहा कि इसका मकसद ज्यादा पैदावार वाले मुतनव्वे बीजों को तैयार करना है जो बीमारियों और कीड़ों से मजाहिमत कर सकते हों। साथ ही इसके तहत फसल की पैदावार से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी के वसी पैमाने पर इख्तियार करने पर जोर दिया जाएगा। इन कोशिशों पर रियासती सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और रियासती जरई यूनिवर्सिटियों के जरिए अमल किया जाएगा। मरकजी काबीना ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस स्कीम का मकसद क्रेडिट गारंटी तआवुन फराहम करना है, ताकि कारोबारी इदारे मगरबी एशिया के बहरान के सबब पैदा हो जाने वाली मुख्तसर मुद्दती नकद रकम की फराहमी की कमी को पूरा कर सकें। इस स्कीम के तहत MSMEs को 100% क्रेडिट गारंटी फराहम की जाएगी, जबकि गैर MSMEs और एयरलाइन सेक्टर को 90% गारंटी फराहम की जाएगी। काबीना ने 2026-27 के गन्ने के सीजन के लिए गन्ने की एक मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपए फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है, जो 10.25% की बुनियादी रिकवरी शरह पर मबनी है। जनाब वैष्णो ने बताया कि इस फैसले से गन्ने के तकरीबन 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जबकि चीनी की मिलों और इससे मुतालिक दी دیگر سرگرمیوں سے وابستہ تقریباً 5 لاکھ کارکنوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ مرکزی کابینہ نے بھارت سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت 2 مزید سیمی کنڈکٹر پروجیکٹوں کو بھی

0: मंजूरी दी है, जिसमें मुल्क का पहला कमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले प्रोजेक्ट शामिल है, जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसके साथ सेमीकंडक्टर की पैकिंग की सहूलत भी शामिल है। जनाब वैष्णो ने बताया कि मंजूर शुदा तजावीज के तहत तकरीबन 3,936 करोड़ रुपए की मजमूई सरमायाकारी के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन प्रोजेक्टों से तवक्को है कि तकरीबन 2,230 तरबियत याफ्ता पेशेवर अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट दो प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो एलईडी का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मरकजी काबीना ने आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद के तरमीमी बिल 2026 पेश करने की तजवीज को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा कि इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद एक्ट 1956 में तरमीम की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद में 4 का इजाफा किया जा सके। इस तरमीम के बाद भारत के चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जजों की तादाद में इजाफे से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मौसर और बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा, जिससे मुकदमात के जल्द फैसले और फौरी इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा में किए गए हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा है कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सभी मामलात बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए पुरअमन तरीके से हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने इस जरूरत को उजागर किया कि आबनाए हुरमुज से बिला रुकावट और महफूज जहाजों का गुजरना इलाकाई अमन इस्तेहकाम और आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी के लिए जरूरी है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में असेंबली इंतखाबात के नतीज के ऐलान के बाद हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील और हलफबरदारी की तकरीब के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तवक्को है कि काबीना के नए अराकीन इस माह की 9 तारीख को हलफ लेंगे, जो गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। हलफबरदारी की तकरीब में उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शरीक होंगे। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बने सी जोसेफ विजय की तमिलागा वेटरी कजगम टीवी के रियासत में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जिसने 108 सीटें जीती हैं। पहली मर्तबा इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद टीवीके के 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली ने चेन्नई के करीब पनयूर में पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज पार्टी की मीटिंग में जनाब विजय को बाकायदा अपना लीडर मुंतखब किया। इधर सुबुकदोश होने वाले वजीर आला एम के स्टालिन ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। केरलम में कांग्रेस की क्यादत वाली UDF हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में गैर रस्मी बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। अगरचे कांग्रेस कैंप में हुकूमत साजी से मुतालिक बाकायदा बातचीत जारी है, ताहम कानून साज पार्टी की बाजाबता मीटिंग की तफसीलात का इंतजार है। कांग्रेस की क्यादत वाला UDF, जिसने केरलम के 140 असेंबली हलकों में से 102 में शानदार जीत हासिल की है, कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद हुकूमत की तश्कील के लिए गवर्नर से मुलाकात करेगा। UDF के ज़राए के मुताबिक लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग नई दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नुमाइंदों के आने के बाद ही मुनक़िद होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की फैसला कुन जीत के एक दिन बाद नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सलाह मशवरा शुरू हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।

0: पुदुचेरी में बीजेपी के रियासती सदर वीपी रामलिंगम की सदारत में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर पर आज बीजेपी के नौ मुंतखब शुदा मेंबरान असेंबली की एक मुशावरती मीटिंग हुई। मरकजी वजीर और बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज डॉक्टर मनसुख मांडविया, रियासती इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और दीगर सीनियर लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मन्नादीपेट से मुंतखब एमएलए ए नामसिवियम को असेंबली में बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। मीटिंग में आने वाले दिनों में किए जाने वाले सियासी और इंतखाबी इकदामात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलखसूस मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत की तश्कील पर गौर खौस किया गया। पुदुचेरी से बिबिन एसनाथ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हालिया चुनाव नतीजों के बाद वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनका मानना है कि ताकत के जरिए वोट लूटे गए और पूरे इंतखाबी अमल में धांधली की गई है। आज कोलकाता में नामो निगारों से गुफ्तगू करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में उनकी पार्टी हारी नहीं है। उन्होंने चुनाव कमीशन पर जानबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने भारत की जमहूरी तारीख में एक तारीख बाब रकम किया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान की सख्त नुकताचीनी की है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, मौजूदा असेंबली की मुद्दत कार इस माह की 7 तारीख को खत्म हो रही है। इसके बाद कोई भी इस ऐवान का रुकन नहीं रहेगा। बीजेपी के रहनुमा बिमल शंकर नंदी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जमहूरियत का मजाक उड़ाने और तातुल पैदा करने में कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हमारे आईन में इस तरह की नामुनासिब सूरत हाल से निमटने के लिए दफात मौजूद हैं। ममता बनर्जी के इस इल्जाम पर कि बीजेपी मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पार्टी के दफातर पर कब्जा कर रही है, जनाब नंदा ने कहा कि ये सरासर झूठ है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से भवानीपुर असेंबली हलके में वोटों की गिनती से मुतालिक बेबुनियाद और झूठे इल्जामात को वाजह तौर पर रद्द कर दिया है। साउथ कोलकाता के जिला इंतखाबी अफसर की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक ये वजाहत की गई है कि गिनती का पूरा अमल कमीशन के उसूल और जवाबित के तहत अंजाम दिया गया। DEO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा अमल आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ था और हर कार्रवाई कानून पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए अंजाम दी गई। इस इल्जाम को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया गया कि गिनती के दौरान CCTV कैमरों को बंद कर दिया गया था और अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की कि कैमरे पूरे वक्त काम कर रहे थे। वजीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में बिहार की रियासती काबीना में 7 मई को खातिर ख्वाह तौसी की जाएगी। रियासत के बीजेपी सदर संजय सरावगी ने बताया कि हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबीन, JDU के सदर नीतीश कुमार और NDA के दीगर सीनियर लीडर हिस्सा लेंगे। जनाब सरावगी ने मजीद बताया कि तकरीब के लिए गांधी मैदान का इंतखाब किया गया है। हलफबरदारी की तकरीब के लिए तैयारियां जारी हैं। हाई प्रोफाइल लीडरों की मौजूदगी के तनाजुर में गांधी मैदान में सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त किया गया है। वियतनाम के सदर टो लैम भारत के पहले सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने उनका इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत का खारजा ने कहा कि उनका यह दौरा भारत और वियतनाम के दरमियान कसीर रुखी और मुतहर्रिक बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। वियतनाम के सदर का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसत देने के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इससे कबल वियतनाम के सदर ने बिहार के बोधगया का दौरा किया और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। वो वियतनामी मॉनेस्ट्री भी गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती सरगर्मियों में शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा है कि तरक्याती इश्तराक भारत और जमायका के दरमियान शराकतदारी का एक अहम सुतून है। डॉक्टर जयशंकर जमायका की वजीर खारजा कामिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबीना अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि ये बातचीत जामे और ठोस रही, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया गया और तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए मौकों की निशानदही की गई। रोमानिया के वजीर आजम एले बोलोजान की हुकूमत आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के वोट में शिकस्त के बाद गिर गई है, जिसके सबब मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। सेंसेक्स में आज 252 पॉइंट की कमी आई और ये 77,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 पॉइंट के कमी के साथ 24,033 पर बंद हुआ। भारत ने मर्दों की ICC T20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन

0: पोजीशन हासिल कर ली है, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। भारतीय टीम T20 आलमी कप के खिताब का कामयाबी के साथ दिफा करने वाली पहली टीम बनी और उसने मार्च में रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा ये खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के लिए 156 रन का निशाना दिया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फराहमी के सिलसिले में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमी कंडक्टर की मैनुफैक्चरिंग के 2 मजीद यूनिटों की मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपए फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में 4 का इजाफा करके 37 कर दिया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक।
2: Good evening and welcome to Money Talk.
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक। नाटक का विषय है बंद कमरे की आत्मा। आइए सुनते हैं ये नाटक।
4: मैंने फिर कभी दूसरे बेटे की जान नहीं की। वैसे बेटे को मैंने खो दिया। अंतिम समय में मैं उसे देख तक नहीं सका। कैसा अभागा बाप हूं मैं, कैसा अभागा।
5: सरकार सारी जमींदारी में मातम छाया है। कुंवर जी की मौत से घर घर में शोक उमड़ आया है। उन जैसा मनुष्य विरले ही मिलता है। साक्षात राम थे राम
4: जी। तो पर साल ही तो उसकी शादी हुई थी। कैसी खुशी थी उस वक्त मेरे मन में। लक्ष्मी सी बहू आई घर में, बेचारी संध्या बहू। उसकी याद करते ही मैं तुरंत पूछता हूँ, बुढ़ापे ने मुझे एक दिन में देखना था।
5: सरकार रमेश बाबू क्या कहते हैं?
4: वही पुरानी बात जीतू, रमेश को बुला ला।
6: नमस्कार अंकल।
4: खुश रहो रमेश, कैसे हो?
6: क्वाइट हेल एंड हार्टी।
4: रमेश जरा राज नारायण के मरने की घटना का बयान फिर से करो।
6: आपको तो कई बार बता चुका हूँ, क्यों आप मुझे बार बार सदमा पहुँचाना चाहते हैं? राज नारायण मेरा फर्स्ट फ्रेंड था। कॉलेज के हॉस्टल में हम लोग एक साथ रहते थे। पता नहीं कैसे उसका हार्ट फेल कर गया। हमने आपको उसी समय टेलीग्राम किया, लेकिन अंकल आपको पहुंचने में देर हो गई।
4: रमेश राज नारायण तो काफी स्वस्थ था, उसकी मौत कैसे हो गई?
6: अंकल मौत कैसे हो गई, ये तो बात दिल्ली के सवाल है। इसका जवाब तो राज नारायण ही दे सकता था, और वो जिंदा है नहीं।
4: ईश्वर ने मुझे बेहद सदमा दिया है रमेश। अगर राज नारायण की जगह भगवान मेरे प्राण ले लेता।
6: अंकल हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, हम कभी कह सकते हैं।
4: हाँ रमेश,
6: हमें खुद ताज्जुब है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। लोग कहते हैं कि भगवान के हर काम में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राज नारायण की मौत के पीछे भगवान की कौन सी अच्छाई है। उसकी तो शादी के भी 12 महीने भी नहीं हुए हैं।
4: हाँ रमेश, संध्या बहू की याद आती ही कांप उठता हूँ। हे भगवान।
6: अंकल मैं तो अब नास्तिक होने लगा हूँ, खूब गया हूँ। ईश्वर धर्म ये सब बेकार है, इंसान झूठ मूठ में अपना दिमाग खर्च करता है। मैंने तो
4: लेकिन बेटे तुमने तो अभी अभी कहा है कि गॉड इज ऑलमाइटी, फिर तुम नास्तिक कैसे हो गए?
6: अंकल ये तो आप जानते ही हैं कि संस्कार जाता नहीं, मेरा पुराना संस्कार भी कभी कभी जाग पड़ता है।
4: ईश्वर है बेटे, वरना इतने बड़े संसार को कौन चला रहा है?
6: ये संसार खुद ब खुद चल रहा है, घिरने की तरह नाच रहा है, और हम बेवकूफ भी उसके साथ साथ नाच रहे हैं।
4: ये क्या कहते हो रमेश?
6: मैं ठीक कहता हूँ अंकल।
4: रमेश

0: मुझे अपने दुख को भूल जाने को बाध्य किया। बेटे चाय मंगाओ।
1: ना ना, आप चिंता ना करें, भाभी से भेंट करूंगा, उन्हीं के हाथ की चाय पीऊंगा। अच्छा अंकल, बहुत देर हो गई, चलो भाभी से भेंट करता चलूं।
0: बड़ा जिंदा दिल लड़का है, राज नारायण भी ऐसा ही जिंदा दिल था। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा।
2: गुड इवनिंग
0: भाभी।
2: आइए रमेश बाबू, बैठिए।
0: आप क्या कर रहे थे भाभी?
2: मन नहीं लगा, पत्र लिख रही थी।
0: कहाँ?
2: नहीं है।
0: ओ, तो यही है आपका ये पापा? मैं कौन?
2: ये बुरी बात है रमेश बाबू, दूसरे का पत्र पढ़ना ठीक नहीं।
0: लेकिन मैं पत्र कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो पता पढ़ रहा हूँ। क्या पता पढ़ने पर भी रोक है?
2: हाँ है।
0: वंडरफुल। स्ट्रेंज भाभी, अगर पोस्टमैन बेचारा पता नहीं पड़ेगा तो खत जाएगा कैसे?
2: आप क्या पोस्टमैन है?
0: ओह आई एम सॉरी, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं पोस्टमैन नहीं हूँ, वरना ऐसे खूबसूरत हैंडराइटिंग नमूने के तौर पर रख लेता।
2: खूबसूरत हैंडराइटिंग? रमेश बाबू आप मजाक कर रहे हैं।
0: भाभी मैं 100% ठीक है, लेकिन करेक्ट कर रहा हूँ।
2: आप कहें और मैं यकीन न करूँ, ये कैसे हो सकता है?
0: इस पत्र में आपने क्या लिखा है?
2: आपके मतलब की कोई भी बात नहीं लिखी है।
0: ये तय है कि आपने मेरी कोई शिकायत नहीं लिखी होगी, क्योंकि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, और मैंने शायद ऐसा कोई बढ़िया काम भी नहीं किया है जिसकी प्रशस्ति इस पत्र में आप करें। फिर आपने लिखा क्या है?
2: आपको इतनी चिंता क्यों है?
0: देखिए लिफाफा मेरे हाथ में है, और मेरे खुशकिस्मती से और अपनी बदकिस्मती से आपने इसे खुला रखा है। मैं इसे बड़े मजे में पहुंच सकता हूँ।
2: आप कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं, ये मेरे लिए परेशानी की बात हो जाती है।
0: हाँ, यह शेक्सपियर का एक वाक्य मुझे
2: याद। रमेश बाबू मेरा मन अच्छा नहीं है।
0: मेरा एक छोटा सा सवाल, आपके मन को क्या हो गया है?
2: मन नहीं लगता।
0: सुनिए भाभी, जो बात बीत गई उसे याद करने से क्या लाभ? सारी जिंदगी पड़ी है, शेष जिंदगी को तो आप सुखी बिता सकती हैं।
2: कैसे?
0: शादी करके।
2: शादी?
0: चौंकिए मत भाभी जी, इसमें मेरा क्या है?
2: मैं विधवा हूँ रमेश बाबू, शादी की कल्पना भी मेरे लिए पाप है।
0: पाप है? पाप और पुण्य को आपने कभी देखा है? क्योंकि आज तक किसी ने नहीं देखा है।
2: लेकिन आपने ऐसे सवाल क्यों किया?
0: मेरे मन में पवित्र ख्याल आया कि जो फूल सुंदर है उसे उसकी सुंदरता को बरकरार रखने की पूरी छूट दी जाए। यदि सुंदर फूल को मिला जाए तो दुख की बात है, यदि इसके लिए अंग्रेजी में शेमफुल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
2: आपका मतलब मैं समझी नहीं रमेश बाबू।
0: आप जब इस घर में आई थी तो आपके रूप गुण की चर्चा घर घर में होती थी। लगता था आसमान का ही तारा भूल से पृथ्वी पर आ गया है, स्वर्ग की अप्सरा भूल से।
2: आप तो कविता करने के मूड में है, रात अधिक हो रही है, इस एकांत कमरे में आपका रहना अच्छा नहीं है।
0: वेरी गुड, आप फिक्र न करें, मैं शीघ्र चला जाऊंगा। लेकिन मैं जिस बात को कहने आया था उसका मौका तो आपने दिया ही नहीं।
2: क्या कहने आए थे?
0: आप इधर क्यों देख रही हैं? हाँ, राज नारायण भी इसी तरह सिगरेट पीता था, शायद आपको उसी की याद आ रही है। मैं चाहता था कि आप फिर शादी कर ले और पिछली बात भूल जाए। ठाकुर साहब तुम्हें मना लूंगा, आप चिंता ना करें।
2: फिर आपने वही बात छेड़ दी। आप कैसे समझते हैं कि मैं फिर शादी करना चाहती हूँ?
0: मेरा मन कहता है तभी आपका दुख दूर होगा। आप यदि चाहें तो मैं।
2: आप कहना क्या चाहते हैं रमेश बाबू?
0: आप मुझसे नाराज रहे या खुश, मुझे इसकी परवाह नहीं। सुन लीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं
2: रमेश बाबू?
0: कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है। फिर कहता हूँ फूल मुस्कुराता रहे, मुरझा न जाए, मैं ये चाहता हूँ।
2: भविष्य में मुझसे ऐसी बातें न कीजिए, मेरे कमल भी न आइए।
0: ये मेरा प्रस्ताव है, आप इस पर विचार कीजिए। आपके मना करने पर भी मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरा आना नहीं रोक सकती। अच्छा भाभी, अब मैं जाता हूँ।
2: मैं इस युवक को भला आदमी समझती थी, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला। नहीं, मैं पिताजी से कहूंगी इस आदमी को यहाँ नहीं आने दिया जाए।

0: मैं हूँ।
1: मैं कौन? नाम बताओ।
0: नाम मत पूछो, जान लो मैं हूँ।
1: मैं शोर करूंगी, वरना तुम अपना परिचय दो।
0: मत, मैं हूँ।
1: मैं कौन?
0: राज नारायण।
1: राज? नहीं, तुम राज नहीं हो।
0: मैं राज?
1: तुम झूठ बोल।
0: मैं सच कह।
1: राज मर चुका।
0: राज जिंदा है।
1: राज का दाह संस्कार हो चुका है।
0: हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है।
1: आश्चर्य, तुम क्या उनकी प्रेतात्मा हो?
0: नहीं, मैं राज नारायण हूँ।
1: प्रमाण?
0: मैं स्वयं तुम्हारे सामने।
1: क्या मैं रोशनी करूँ?
0: नहीं,
1: तुम अवश्य प्रेतात्मा हो, तुम मुझे तंग करने आए हो।
0: नहीं, तुमसे मिलने आया।
1: मिलने? क्यों?
0: बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, इसी से चला आया।
1: तुम प्रकाश में क्यों नहीं आते?
0: आऊंगा, फिर कभी आऊंगा।
1: तुम प्रकाश में कभी नहीं आ सकते, तुम प्रकाश को सहन नहीं कर सकते।
0: क्यों?
1: क्योंकि तुम प्रेतात्मा हो, तुम अंधकार में रहते हो, इधर उधर भटकते हो, लोगों को तंग करते हो। मुझे अकेली जानकर तंग करने आए।
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
1: मैं प्रकाश करती हूँ, भागने की कोशिश मत करो।
0: मुझे पहचानती नहीं क्या?
1: मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, ये कैसे प्रवंचना है? क्या तुम सचमुच राज हो?
0: हाँ, मैं राज नारायण हूँ, ठाकुर साहब का बेटा, तुम्हारा पति। एक बात पूछूं?
1: पूछो।
0: कुछ देर पहले इस कमरे में रमेश आया था?
1: नहीं।
0: आया था, तुम छिपा रही हो।
1: तुम कैसे जानते हो?
0: मैं सब कुछ जानता हूँ।
1: अच्छा बताओ, उनसे मेरी क्या बातें हुई?
0: वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुमने इनकार क्यों कर दिया?
1: तुम अवश्य प्रेतात्मा हो, वरना तुम यहाँ नहीं रह करती ये बातें जान कैसे पाए?
0: मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, एक सिगरेट दे सको?
1: मजाक बंद करो, यहाँ सिगरेट नहीं मिलती।
0: उस मेज के दराज में देखो, सिगरेट और सलाई दोनों।
1: अच्छा, चलो मैं देखती हूँ।
0: क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ?
1: बैठ सकते हो।
0: तुम काफी बदल गई हो, इतने दिनों के बाद भेंट होने पर भी तुम प्रसन्न नहीं दिखाई देती, बात क्या है?
1: अगर तुम राज होते तो मैं सिर पर बैठा
0: रहती। राज होते? क्या मतलब?
1: तुम प्रेतात्मा हो, तुम्हें कैसे मालूम था कि इस दराज में सिगरेट और सलाई रखी?
0: मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे हाँ, वो तुमने कई दिनों से रात में भोजन करना छोड़ दिया है, क्यों?
1: तुम नहीं जानते क्या?
0: जानता हूँ, तुम मेरे मरने से दुखी हो, लेकिन शोक करना बेकार है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, यदि चाहो तो रमेश से विवाह कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति न होगी। लगता है तुम्हें नींद आ रही है।
1: क्या मैं तुम्हारा हाथ छू सकती
0: हूँ? नहीं, ऐसा न करो।
1: क्यों?
0: छूने पर मैं गायब हो जाऊंगा।
1: नहीं, मैं तुम्हें बांध कर रखूंगी, तुम भाग नहीं सकते।
0: ऐसा मत करो, फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। क्या मेरा आना तुम्हें बुरा लगा?
1: अच्छा लगा। क्या तुम फिर आओगे?
0: तुम कहोगे तो फिर आऊंगा। तुम्हारी आंखें नींद से भर गई हैं। तुम सो जाओ, मेरे बारे में अधिक न सोचो, मेरा आग्रह है तुम आराम करो।
1: गहरी नींद आ रही है, मुझे सोने दो, देखो भागना नहीं। सुबह हो गई, क्या वो सपना था? सिर दर्द हो रहा है। जीतू
2: आया? ममरानी, आपके लिए चाय लिया?
1: नहीं। जीतू, तू रात भर कहाँ था?
2: बस इसी दरवाजे के पास बाहर सोया था।
1: क्या दरवाजा बंद था?
2: बिल्कुल बंद था।
1: क्या कोई आदमी अंदर आया था?
2: दरवाजा बंद रहने पर कोई अंदर कैसे आ सकता है, और फिर बाहर का फाटक भी बंद था।
1: देखती हूँ तुम इधर कोई काम नहीं करते, बाहर से आदमी इस कमरे में आ जाता है और तुम्हें कुछ मालूम भी नहीं होता।
2: बहुरानी, आप क्या कर रही?
1: मैं ठीक कह रही हूँ।
2: तब वो आदमी नहीं, कोई प्रेत होगा।
1: प्रेत?
2: हाँ, आदमी ऐसा नहीं कर सकता।
1: क्या नहीं कर सकता?
2: बाहर का फाटक बंद रहे, मैं दरवाजे के पास रहूं, तो किसी भी आदमी का इस कमरे के भीतर आना नामुमकिन है।
1: तो क्या वो प्रेत था? नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी।

0: की रूप वही पोशाक, बातचीत में वही अंदाज, सिगरेट सलाई। हे भगवान,
1: आप क्या बोल रही बंगाली? लगता है आप किसी गुत्थी को सुलझाना चाहती हैं, पर वो सुलझ नहीं रही है।
0: अच्छा जी, तुम जाओ, ये सब बातें किसी को ना कहना। अंदर चले आओ, तुम तो दरवाजा बंद रहने पर भी चले आते हो, फिर दस्तक क्यों दे रहे हो?
2: किससे बातें कर रही है भाभी?
0: कौन?
2: मैं रमेश हूँ, आपका रमेश, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। यानी कि
0: दरवाजा नहीं खुल सकता रमेश बाबू, आप लौट जाइए।
2: अभी कुछ तो कीजिए, थोड़ी देर बातें करूंगा फिर चला जाऊंगा।
0: रमेश बाबू, तंग ना कीजिए, चल जाइए।
2: तो फिर मैं इसी दरवाजे के पास सब तैयार करूंगा। आमर आमचन, मैं दूँ। हाँ,
0: आपकी हरकत हद से बाहर जा रही है रमेश बाबू।
1: आप शायद नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, नाराज आदमी को खुश करना मैं जानता हूँ। जानती है ये कला मैंने किससे सीखी है?
0: किससे सीखी है?
1: अपने गुरु और बड़े भाई राज नारायण से। यूं राज नारायण ने अपने को मुझसे कभी बड़ा नहीं माना, लेकिन मैं उसके सूझबूझ का बड़ा कायल था। कभी कभी तो
0: आप कहना क्या चाहते हैं?
1: कुछ नहीं, और बहुत कुछ।
0: आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या दिन में नहीं आ सकते थे?
1: दिन में भला क्यों आता,
0: रात में क्यों आए?
1: नारी से मिलने का समय रात है।
0: पराई नारी से रात में मिलना अक्षम्य अपराध है।
1: पराई नारी? अक्षम्य अपराध?
0: हाँ, अक्षम्य अपराध।
1: आप अनुमति दे तो एक सिगरेट सुन रहा हूँ।
0: इस कमरे में सिगरेट पीना क्या जरूरी है?
1: राज नारायण को तो आपने कभी मना नहीं किया
0: है। अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बात मत कीजिए।
1: मैं तो हूँ।
0: अब आप जा सकते हैं, अन्यथा मुझे जीतू को बुलाना पड़ेगा।
1: और अगर मैं जीतू को कह दूं कि मेन साहब ने मुझे खुदाने का निमंत्रण दिया है, तो
0: आप अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएंगे क्या?
1: भाभी, मैं और सब कुछ हूँ, लेकिन दुष्ट नहीं हूँ, इसे जान लीजिए। मैं आपका आदर करता हूँ।
0: कैसा आदर है? जिसको आपने भाभी कहा उससे प्रेम की भीख मांगना आदर है?
1: प्रेम की नहीं, विवाह की भीख कहिए, वो भी आपके कल्याण के लिए, आपके जीवन में सुख ना।
0: मुझे ऐसा सुख, ऐसा आदर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कौन चिल्ला कर कहूँ?
1: नो नो, चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरे कान बिल्कुल दुरुस्त है, आपका दिमाग संतुलन खो रहा है। सच मानिए, दिमागी बीमारी अच्छी नहीं होती। खैर, मैं जाता हूँ, मेरे प्रस्ताव पर फिर विचार करे। जान लीजिए, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं फिर आऊंगा। गुड नाइट।
3: सरकार, एक बात पूछूं, बहू रानी के बारे में आपने क्या सोचा है?
4: क्या मतलब?
3: सरकार, मैं आपका नौकर हूँ, माफी मिले तो कुछ निवेदन करूँ।
4: जीतू, तुम तो पहेली बुझा रहे हो, क्या कहना चाहते हो, बेझिझक हो?
3: सरकार, बहू रानी को उनके नैहर भेज दें।
4: क्यों?
3: यूं ही।
4: नहीं जीतू, तुम कुछ छिपा रहे हो, बताओ बात क्या है?
3: सरकार, कई दिनों से कहने को सोच रहा हूँ, लेकिन कहा नहीं जाता। बहू रानी के कमरे में कोई पुरुष रोज रात में आता है।
4: नमक हराम।
3: सरकार, मैं नमक हराम हूँ, नमक की लाज रखने के लिए मैं ये सब आपको कह रहा हूँ।
4: कमरे में कौन आता है?
3: ये मैं नहीं कह सकता, मुझे इसका भी पता नहीं कि वो किधर से आता है और किधर से जाता है। द्वार उस समय बंद रहता है।
4: रमेश को जाते मैंने देखा है, कहीं वही तो नहीं रात में वहां जाता है?
3: नहीं, रमेश बाबू को आते जाते मैंने देखा है, लेकिन उतनी रात में नहीं। वो अनजान पुरुष आधी रात के बाद आता है और शायद सुबह के पहले ही चला जाता है। बहू रानी के रहन सहन में भी काफी अंतर आ गया है, लगता नहीं है कि वे विधवा है। रात में कभी कभी बहू रानी और उस पुरुष के अठास भी सुनाई पड़ते हैं।
4: क्या वो पुरुष रोज आता है?
3: जी हाँ।
4: क्या वो देर तक कमरे में रहता है?
3: जी हाँ।
4: जीतू, तुम इस घटना का जिक्र किसी से न करना, आज रात में तुम्हारा इंतजार करूंगा।

जी हूं उस आदमी की आवाज तुम सुनो फौरन मुझे खबर दो। मैं खुद वहां जाकर पता लगाऊंगा कि कौन है वो शैतान जो मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत से खेल रहा है।

0: दुनिया बदल
1: फिले बाबी आई कंग्रेचुलेट यू
2: क्या मतलब
1: श्रृंगार इस महान परिवर्तन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसे मौके पर शेक्सपियर ने खास तौर से कहा
2: बाबू कष्ट कीजिए आपको तो शेक्सपियर के सभी वाक्य याद है।
1: एक बात कहूँ?
2: हाँ हाँ कहिए।
1: कह तुम
2: कहिए ना।
1: आज आप बड़े अच्छे मूड में है सच कह रहा हूँ मैं
2: सच
1: बिल्कुल सच 100% सच।
2: आपने कैसे समझा?
1: ये रंगीन साड़ी ये साज श्रृंगार चेहरे पर प्रसन्नता कमरे का निखरा रंग ये सब आपके मूड बता रहे हैं। भाभी बात क्या है?
2: कुछ नहीं।
1: जरूर कुछ बात है और आप मुझसे छिपा रहे हैं।
2: नहीं रमेश बाबू कोई बात नहीं है।
1: आज क्या यहाँ कोई आने वाला है?
2: कोई नहीं।
1: सोचा था।
2: क्या सोचा था रमेश बाबू?
1: कि भाभी का प्यार मुझे मिलता वो दिन मेरे लिए कितना शुभ होता जिस दिन आप मुझसे विवाह।
2: रमेश बाबू उस दिन की कल्पना मत कीजिए।
1: आज आपको प्रसन्न देखकर मैं इस प्रश्न को दोहरा रहा हूँ जीवन को इस कड़े आग में सुखाने से क्या लाभ?
2: मुझे जो सुख या दुख मिला है उससे अधिक कुछ नहीं मिल सकता।
1: सुख मैं दे सकता हूँ?
2: गलत बात मैं राज को नहीं भूल सकती। आज भी वो सपने में आता है उससे मिलती हूँ बोलती हूँ ये साज श्रृंगार सब उसी के लिए है।
1: क्या आपका सपना इतना मधुर है कि जागृतावस्था में भी आप उसके छलावे में पड़े रहती
2: हैं? मेरा सपना वैसा ही है।
1: भाभी जी सपना सपना है राज मर गया है वो जीवित नहीं हो सकता। आप इस व्यर्थ के मुंह में कब तक पड़े रहेंगे?
2: बाबू मैं इस दुनिया में नहीं हूँ काफी दूर चली गई हूँ। कभी कभी दिमागी संतुलन खो बैठती हूँ लेकिन वही मेरा सुख है।
1: मुझे आपसे सहानुभूति है भाभी जी। मैं आपके दुख को कम करना चाहता था लेकिन लगता है कि मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा। आप अभी भी चाहे तो आपका कल्याण हो सकता है।
2: मेरा कल्याण एक ही तरह से हो सकता है। आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइए मुझे शांति चाहिए मुझे एकांत चाहिए अंधकार चाहिए नींद चाहिए। रमेश बाबू क्षमा कीजिए आप पूरी नहीं है लेकिन मेरी लाचारी है।
1: अभी तो आप भली जंगी थी प्रसन्न होकर बातें कर रही थी फिर ये क्या हुआ? अच्छा मैं जाता हूँ।

0: क्यों?
1: तुम तो नींद में बेखबर पड़ी थी। मैंने पुकारा, तुमने उत्तर तक नहीं दिया।
0: हाँ, मैं नींद में थी, चाहती थी कि तुम आकर नींद को तोड़।
1: वो तो मैंने कर दिया।
0: बत्ती किसने ऑन की?
1: मैंने।
0: तुम बिजली छू लेते हो? ओहो, शायद तुमने अदृश्य शक्ति से रोशनी जला दी।
1: नहीं नहीं, मैं मंत्र नहीं जानता।
0: तुम मंत्र नहीं जानते? नहीं, तुम मंत्र जानते हो, अन्यथा संध्या तुम्हारे चरणों में समर्पित कैसे हो जाती? क्या संसार की कोई शक्ति मुझे झुका सकती है? नहीं, हजार बार नहीं, लेकिन तुमने अपने मंत्र से मुझे बांध लिया है।
1: चाहो तो छोड़ दूं।
0: राज? हाँ, मैं तुम्हें राज ही कहूंगी। तुम प्रेत हो या देवता, मैं तुम्हें राज के रूप में ही देखना चाहती हूँ। जानती हूँ ये मृग तृष्णा है, इससे मन को स्थायी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। इस क्षणिक सुख को पाकर मैं अपने जीवन को जी लूंगी। तुम वचन दोगी?

0: बराबर आओगे?
1: सोच लो संध्या, मैं फिर कहता हूँ।
0: मत कहो, कुछ मत कहो, सिर्फ वचन दो कि बराबर आओगे।
1: हाँ बराबर आऊंगा, लेकिन इससे तुम्हारी बदनामी होगी।
0: वो तो हो रही है, लेकिन मैं डरती नहीं। तुम्हारे प्रेम में मैं इस विष को हंसते हंसते पी जाऊंगी।
1: अच्छी बात है।
0: राज, तुम मरने के बाद काफी गंभीर हो गए हो, क्या तुम हंस नहीं सकते?
1: मैं तो कई बार हंस चुका हूँ।
0: एक बार जोर से हंसो,
1: कोई सुन लेगा तो।
0: सुनने दो, हंसो ना मेरे राज, हंसो ना।
1: अब तो प्रसन्न हो तुम?
0: तुम जब तक मेरे साथ रहते हो, मैं संसार से दूर रहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम्हारे मुख को देखना चाहती हूँ, अपनी पलकों में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहती हूँ। राज, तुम कहाँ हो? राज,
1: मैं यही हूँ।
0: राज,
1: यही हूँ संध्या, होश में आओ। संध्या, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है।
0: रात अभी शेष है, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना।
1: अच्छा, जरा सिगरेट जला लूँ।
0: नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीने दूंगी, इसके धुएं की सुगंध मेरी नशों में बेहोशी ले आती है, मुझे नींद आने लगती है। तुम सिगरेट नहीं पी सकते।
1: मैं मर जाऊंगा संध्या, मर जाऊंगा, मुझे सिगरेट पीने दो।
0: कौन?
1: संध्या, मुझे जाने दो, द्वार पर कोई खड़ा है।
0: तुम्हारे पिता है?
1: मुझे जाने दो संध्या।
0: तुम भाग नहीं सकते राज।
1: नहीं, मुझे छोड़ संध्या।
0: आज मैं तुम्हें नहीं जाने
2: दूंगी।
0: मैं आती हूँ। आज इस रहस्य का उद्घाटन होकर रहेगा कि तुम कौन हो। भागने की कोशिश मत करो राज। राज, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आज किसी तरह से नहीं जाने दूंगी। राज, भागो आज।
2: तुम कौन?
0: एक प्रेत।
2: प्रेत नहीं, ये आदमी है। राज का रूप धारण के कोई आवारा है। बोलो कौन हो तुम? बहुरानी कौन है ये बताओ?
0: मैं नहीं जानती।
2: मैं कोड़ी मारूंगा। तुम दोनों की लाशें यही साथ खाते निकलेंगी। बहू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुमने मेरे मुंह पर ताली फोड़ी है। ठाकुर महेश नारायण की एक एक कोड़ी तुम दोनों के लिए काफी है। बोल बोल बदमाश, कौन है तुम?
1: मैं राजनारायण।
2: बात है,
1: सही बात है।
2: राजनारायण मर गया है।
1: राजनारायण जिंदा है।
2: उसका पाप संस्कार हो गया है।
1: हाँ, लोग ऐसा ही जानते हैं।
2: क्या मतलब?
1: राजनारायण की लाश जलाई नहीं गई।
2: किसकी लाश जलाई थी?
1: किसी और की।
2: विश्वास नहीं होता।
1: विश्वास कीजिए।
2: तुम कहाँ थे?
1: आपके मकान में।
2: मैंने तुम्हें नहीं देखा।
1: किसी ने नहीं देखा।
2: तुम कहाँ रहते थे?
1: इस कमरे के पीछे।
2: उसका द्वार
1: इसी कमरे में
0: कहाँ है?
1: आप लोग इधर आइए।
3: सरकार, ये तो दीवार है।
1: बहुत रोज पहले की बात है, एक दिन अचानक मेरी उंगली स्थान पर पड़ गई। लगा दीवार का कोई हिस्सा हट गया। उस तरफ जाकर देखा, ठीक ऐसा ही एक कमरा बना था। हमारे पूर्वजों ने उसे बनवाया होगा, जिसका पता शायद आपको भी न रहा हो।
2: मैं उस कमरे या इस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर क्या हुआ?
1: ये रहस्य मैंने किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद मेरे मन में एक इच्छा उठी।
0: कौन सी इच्छा?
1: अगर मैं मर जाऊं तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये जानने की उत्कंठा हुई। मैंने उस कमरे में अपने ठहरने के लिए सभी साधन जुटा दिए।
0: फिर
1: मेरा कॉलेज खुल गया और आप लोगों ने समझा कि मैं बाहर चला गया, लेकिन मैं उस कमरे में आ गया था। शहर में मेरे मरने की खबर उड़ा दी गई। इसमें मेरे साथियों का हाथ था। इस योजना में रमेश ने मेरी मदद की।
2: तुम्हारी लाश को जलते मैंने देखा है।
1: वो किसी और की लाश थी जो आपको दिखाई गई। चूंकि लाश जल रही थी, इसलिए आपको देखने का अवसर न दिया गया। लाश जलने के बाद लोगों ने मुझे मरा जान लिया।
0: लेकिन मैंने इस दरवाजे को कभी खुलते नहीं देखा, फिर तुम कैसे आते जाते थे?
1: तुम जब सो जाती थी तो मैं आता था और तुम्हें सुलाकर गायब हो जाता था।
0: सुलाकर?
1: हाँ, सिगरेट के धुएं की सुगंध में नींद लाने की दवा थी।
0: लेकिन उसे तुम्हें नींद क्यों नहीं आती थी?
1: उस दवा के प्रभाव से बचने की एक दवा खाकर मैं यहाँ आता था।
4: हेलो राज,
1: हाउ आर यू?
4: हेलो रमेश,
1: कैसे आए?
4: वंडरफुल। मरा आदमी जिंदा हो जाए, इतने तक ना हो।
1: पिताजी, रमेश ही ऐसा व्यक्ति है जो सारी बातें जानता था।
4: एक्सक्यूज मी अंकल, राज भैया का आदेश था के संबंध में मैं किसी को कुछ न कहूं।
1: रमेश

0: मैं लाचार था।
1: भाभी एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे विवाह करने का प्रस्ताव किया था।
2: आप बड़े दुष्ट है रमेश बाबू, आपने मेरे मन को सताया है।
0: रमेश ने तुमसे विवाह का प्रस्ताव किया था, वो भी मेरे ही आदेश से, इसका कोई दोष नहीं। अच्छा भाई, आपको वो भेद भरी कोठी दिखाई जाए।
3: बेटा तुमने अपनी बुद्धि से सबको स्तंभित कर दिया, लेकिन तुम्हारी मृत्यु का हाल सुनकर इस वृद्ध को क्या हुआ इसका अनुमान नहीं लगा सकते। देखो बेटा, ऐसा भयंकर नाटक अपने जीवन में फिर कभी नहीं दोहराना।
1: गुड लक भाभी। राज, मेरा रोल खत्म हो गया।
0: तुम्हारा रोल बड़ा अच्छा है।
1: और भाभी का?
0: हाँ, अनजाने में संध्या का रोल भी बहुत
2: अच्छा। राज, मरे हुए आदमी के रूप तुम्हारा रोल तो सबसे सुंदर रहा।
4: अभी आप सुन रहे थे बंद कमरे की आत्मा। इसके लेखक थे चतुर्भुज और प्रस्तुति सहयोग सुरेंद्र कुमार उपाध्याय। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं भगवान प्रसाद, प्रभात चंद्र मिश्रा, अशोक प्रियदर्शी, गोपाल सरन और गीता सिंह। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं नमस्कार। हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ अनेक जाति, वेशभूषा, परंपराएं और रीति रिवाज साथ साथ पलते और विकसित होते रहे हैं। धन धान्य से परिपूर्ण यहाँ की जनता में मनोरंजन की भी प्रधानता है। श्रृंगार के बिना जीवन अधूरा और रसहीन हो जाएगा, इसलिए श्रृंगार जीवन के प्रत्येक अवस्था में और अनेक स्थानों पर दिखलाई पड़ता है, क्योंकि प्रकृति और प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी रिश्ता हो, उसका अपना एक भाव अवश्य होता है। जैसे इस गीत में सुनिए, भक्ति भाव के साथ ही माता का श्रृंगार।

रे धरतिया के भार। अरे झुलुर झुलुर बाजे हाय, झुलुर झुलुर बाजे, अरे झुलुर झुलुर।

श्रृंगार की एक अवस्था है, यह कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि व्यक्ति के मन में होती है। जैसे खिले फूलों को देखकर मन का प्रसन्न हो जाना, कोयल की कूक का मधुर लगना या फिर हरियाली और शीतल पवन का बहना, ये सभी को भाव विभोर कर देते हैं और मन बस यही चाहता है कि प्रकृति का ये श्रृंगार बस बना रहे।

प्रकृति जब श्रृंगार करती है तो चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के साथ नदियां भी कलकल करती बहती हैं। उसके किनारे बैठकर आनंद लेना भला कौन नहीं चाहेगा, और यदि ऐसे में कोई अपना सुध बुध खो दे तो फिर क्या होगा। गोरी की बिंदिया, हाय, वो तो मछलियां ले गई नदी।

पर्व त्योहार हो या फिर कोई और मौका, स्त्रियां तो श्रृंगार करने का बस बहाना ढूंढती हैं, और कभी कभी तो उसे बहाने ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हो भी क्यों ना भला, सजना संवरना तो उसका स्वभाव है, वो भला किसी मौके की प्रतीक्षा क्यों करे। लेकिन पुरुष को तो कोई भी ये मौका हाथ नहीं आता, बस उसको मौका लगता है उसके दूल्हा बनने पर। बारात चलने को है और उस समय दूल्हे का जामा जोड़ा, पगड़ी, जूते, भाई वाह, सभी चाहने वाले रिश्तेदार और मित्र बस उसे सजाने में संवारने में जुट जाते हैं। दूल्हे का यह रूप मन को बड़ा लुभाता है।

देखते हैं। हम नहीं चाहते कि मां का आंचल कभी भी मैला हो। माता के सम्मान की रक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। हम तो अपने देश को भी माता के समान मानते हैं, उसे मां के समान सम्मान देते हैं। भला उसका आंचल कोई कैसे छू सकता है।

इसी के साथ आज का गूंजे बिहार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। गायक कलाकार थे भरत सिंह भारती, मनोरंजन ओझा, गोपाल

पासवान और अन्य साथी। संकलन एवं स्वर संजय किशोर, प्रस्तुति सहयोग सुनील सिंह कार्की और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी पासवान।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दो रास्ते। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है आपकी कसम फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। बसंत देव की लिखी इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत।

0: श्रोताओं, समय अभाव के कारण ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके, इसका हमें खेद है। उत्सव फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं, वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने